मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। आज सोमवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 9वीं तिथि तदनुसार 31 अगस्त सन 2026 प्रातः के 5:57 और 20 सेकंड्स हुए हैं। अब आरंभ होती है आज की हमारी प्रातःकालीन सभा। इस सभा में आपके साथ मैं हूं आपका दोस्त अनुराग शर्मा। आप सभी को हमारा नमस्कार। सुप्रभात।

हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6 बजने को है हिंदी में समाचार। अब से कुछ ही समय में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा कल संपन्न हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव की बातचीत के अलावा इस यात्रा की कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां रहीं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा के मायने 11 समझौतों पर हस्ताक्षर से कहीं बढ़कर हैं। महत्वपूर्ण खनिजों और यूरेनियम की सप्लाई से लेकर व्यापार, रक्षा, डिजिटल भुगतान और शिक्षा तक, हिंदी और संस्कृत से लेकर खेल और विरासत संरक्षण तक, इस दो दिवसीय यात्रा ने भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को एक विस्तृत और व्यापक ढांचा प्रदान किया है। व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक संबंधों का बढ़ना, $5 अरब के व्यापार लक्ष्य को 3 साल के भीतर हासिल करने का संकल्प
0: संपन्न हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी और राष्ट्रपति
1: भारत की उज्बेकिस्तान के साथ दोस्ती को एक नई गति मिलने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद।
0: प्रधानमंत्री आज और कल किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे कल राष्ट्राध्यक्षों के सत्र में भी भाग लेंगे। श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर कल बिश्केक पहुंचे। मंत्रिमंडल के अध्यक्ष कासिमालिफ आदिलबेक अलेशोविच ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। उनके स्वागत के लिए पारंपरिक किर्गिज नृत्य का आयोजन भी किया गया। श्री मोदी राष्ट्रपति सादोर जापारोफ के निमंत्रण पर शिखर सम्मेलन के लिए किर्गिजिस्तान की यात्रा पर हैं। आशा है कि शिखर सम्मेलन से अलग श्री मोदी संगठन के कई नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। इससे पहले श्री मोदी ने कहा कि वे सुरक्षा, संपर्क और अवसर पर आधारित इस क्षेत्र के लिए भारत के विजन को आगे बढ़ाने को उत्सुक हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत SCO सदस्यों के साथ मिलकर आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ मुक्त क्षेत्र बनाने की दिशा में काम करेगा। नेपाल में बाढ़ के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 794 हो गई है। राहत और बचाव कार्य जारी हैं। अब भी 2500 से अधिक लोग लापता हैं। आपदा प्रभावित सभी 8 जिलों से शव बरामद किए गए हैं। इस बीच मध्य नेपाल में त्रिशूली नदी में एक और बाढ़ के कारण सस्पेंशन पुल बह गया। विदेश मंत्रालय के अनुसार अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। करीब 50 लापता भारतीय नागरिकों से संपर्क हो गया है, लेकिन 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका में दक्षिण कैरोलिना के एशविले में G20 और इससे जुड़ी बैठकों में हिस्सा लेंगी। इससे पहले वित्त मंत्री ने शिकागो में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए निर्धारित राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों को सफलतापूर्वक हासिल किया है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने सुकमा जिले में

0: नक्सलियों के ठिकाने का भंडाफोड़ कर बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है। सुरक्षा बलों ने बेलपोचा गोमपाड़ के घने जंगल में छिपाकर रखे गए विस्फोटकों का जखीरा बरामद किया। ये संयुक्त अभियान सुकमा जिला बल, जिला रिजर्व गार्ड DRG और बस्तर फाइटर्स ने चलाया। ये कार्रवाई हाल ही में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली कैडरों से मिली विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर की गई। भारत के अभय सिंह ने तुआंकू महरिज स्क्वाश ट्रॉफी जीत ली है। मलेशिया के सेरेम्बन में अभय ने PSA चैलेंजर टूर 15 इवेंट के फाइनल में हांगकांग के हेनरी लेउंग को 3-2 से हराया। ये अभय का 13वां और इस वर्ष का दूसरा PSA टूर खिताब है। इससे पहले उन्होंने मार्च में मुंबई में इंडियन ओपन खिताब जीता था। दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने जीत के साथ शानदार शुरुआत की है। भारत ने थाईलैंड को 94 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 9 विकेट पर 159 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने 64 रन की शानदार पारी खेली। शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप बी में आज बांग्लादेश और इंडोनेशिया आमने सामने होंगे। मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। जर्मनी ने पुरुष हॉकी विश्व कप जीत लिया है। बेल्जियम में फाइनल में जर्मनी ने स्पेन को 1-0 से हराया। जर्मनी की तरफ से मिशेल स्ट्रुथॉफ ने गोल किया। जर्मनी का ये चौथा पुरुष विश्व कप खिताब है। इससे पहले अर्जेंटीना ने नीदरलैंड्स को 2-1 से हराकर कांस्य पदक जीता था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 16.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 6:05 और 10 सेकंड हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सबसे पहले सुनिए समूह स्वर में देशगान।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से। कार्यक्रम में अगला भक्ति गीत सुनिए प्रीति सागर के स्वर में।

0: श्रोताओं, भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। अब समय है कार्यक्रम चिंतन का। आज हम आपको सुनवा रहे हैं सकारात्मक रहे विषय पर तुलिका शर्मा के विचार।
1: जो सकारात्मकता की बातें होती हैं वो कभी भी अपना महत्व नहीं खोती, युग कोई भी हो, दौर कोई भी हो। जी हाँ, मानव जीवन यदि सकारात्मक नहीं रहेगा तो जीना दूभर हो जाएगा। ये कहानी अपने जीवन में आपने कभी न कभी सुनी ज़रूर होगी। एक दिन एक किसान का बैल कुएं में गिर गया। वो बैल घंटों जोर जोर से रोता रहा और किसान सुनता रहा, विचार करता रहा कि उसे क्या करना चाहिए। अंततः उसने निर्णय ले लिया। चूँकि बैल काफ़ी बूढ़ा हो चुका था, इसलिए उसे बचाने से कोई लाभ होने वाला नहीं था। इसलिए किसान ने ये सोचा कि उसे कुएं में ही दफना देना चाहिए। किसान ने अपने सभी पड़ोसियों से मदद मांगी। पड़ोसी इकट्ठा हुए, सभी ने अपने हाथों में एक एक फावड़ा पकड़ा और कुएं के किनारे से मिट्टी ले लेकर कुएं में डालना शुरू कर दिया। कुएं में पड़े बैल को अपने मालिक के ऊपर यकीन था। जैसे ही उसे समझ में आया कि ये क्या हो रहा है, वो और ज़ोर ज़ोर से चीख कर रोने लगा और फिर अचानक शांत हो गया। सब लोग चुपचाप कुएं में मिट्टी डालते रहे। तभी किसान ने कुएं में झांका तो वो आश्चर्यचकित रह गया। अपनी पीठ पर पड़ने वाले हर मिट्टी के ढेर के साथ वो बैल एक आश्चर्यजनक हरकत कर रहा था। वो हिल हिल कर उस मिट्टी को नीचे गिरा देता और फिर कदम बढ़ाकर उसी मिट्टी पर चढ़ जाता। जैसे जैसे किसान और उसके पड़ोसी उस पर फावड़ों से मिट्टी गिराते, वैसे वैसे वो हिल हिल कर उस मिट्टी को गिरा देता और एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ाता। जल्दी ही सबको आश्चर्य में डालकर वो बैल कुएं के किनारे पर पहुंच गया और फिर कूदकर बाहर चला गया। इस कहानी में बैल, जो कि एक जानवर है, उसने अपनी सकारात्मकता से अपनी जान बचाई। ऐसी ही परिस्थितियाँ अक्सर हमारे सामने उपस्थित होती हैं। बहुत सारी नकारात्मक बातें हमें चारों तरफ से सुनने को मिलती हैं। यदि हम उन सभी नकारात्मक बातों के बोझ तले अपने आप को दबा लेंगे तो हमारा जीना दूभर हो जाएगा। हम शायद उनके प्रभाव में आकर स्वाभाविक रूप से जीना छोड़ दें। और यदि आप स्वाभाविक रूप से नहीं जिएंगे तो तरक्की भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन इन नकारात्मक बातों के

0: प्रभाव में न आकर बल्कि इन्हीं बातों को प्रेरणा बनाकर यदि हम आगे बढ़ते रहे तो हमारी तरक्की को, हमारी प्रगति को कोई रोक नहीं सकेगा। हमें आगे बढ़ने से रोकने के लिए लोग बेकार में हमारी आलोचना अवश्य करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि आपकी सफलता दूसरों की ईर्ष्या का कारण बन जाए और लोग बिना वजह आपको बुरा भला कहते रहें। आपसे आगे निकलने के लिए अक्सर लोग ऐसे रास्ते अपनाएंगे, लेकिन आपको अपने मन को अपने काबू में रखना है और ये डिसाइड करना है कि आपको ऐसी परिस्थिति में किस तरह व्यवहार करना है। हतोत्साहित होकर कुएं में पड़े रहना है या साहस करके अपने ऊपर पड़ी हर गंदगी को गिराकर उसी से सीख लेकर और उसी को सीढ़ी बनाकर अपने आदर्शों का त्याग किए बिना आगे बढ़ते जाना है। आलोचनात्मक बातें, नकारात्मक बातें तीखी बहुत होती हैं, हमारे दिल को चुभती हैं और अक्सर ये चुभन हम अपने मन में ले करके पड़े रहते हैं और इस फीलिंग से बाहर नहीं आ पाते। होना यह चाहिए कि यदि कोई आपकी आलोचना कर रहा है, आप उस बात को सुनें, समझें और ये सोचें कि कहीं ये सच तो नहीं कह रहा। अगर उसकी बात में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो उस नकारात्मक गुण को अपने अंदर से निकाल फेंकिए, अपने आप को थोड़ा और पॉजिटिव बनाइए और आगे बढ़ते रहिए। नकारात्मकता हमेशा पाँव की बेड़ी होती है, लेकिन सकारात्मकता हाथ बढ़ाकर आपको आगे खींच लेगी। तय आपको करना है कि आप पाँव में बेड़ियाँ डालकर पड़े रहना चाहते हैं या बढ़े हुए हाथ को पकड़कर अपने आप को आगे की तरफ ले जाना चाहते हैं।
1: अभी आपने चिंतन में सुना सकारात्मक रहें विषय पर तुलिका शर्मा के विचार। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ।

शिव के धनुष भंग और उसके ऊपर लक्ष्मण के कौतुक भरे वचन सुनकर परशुराम जी का क्रोध सीमा पार कर रहा है। उसके ऊपर लक्ष्मण का यह वचन सुनकर कि शूरवीर तो युद्ध में करनी कर दिखाते हैं, मात्र कहकर डींग नहीं मारते, ऋषिवर ने अपना फरसा संभाल लिया। बोले, अब लोग उन्हें दोष ना दें, ये मूर्ख बालक मारे जाने के ही योग्य है। बात बढ़ते देख मुनि विश्वामित्र ने अपने शिष्य के अपराध की क्षमा याचना की। कहा, बालकों के दोष गुण को साधुजन नहीं गिनते। मन ही मन वो हंसे कि परशुराम जी को हरा ही हरा सूझ रहा है। सर्वत्र विजयी होने के कारण वो राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। उन्हें कदाचित ये नहीं मालूम कि ये दो कुमार फौलाद की खांड हैं, ईख की खांड नहीं जो मुंह में लेते ही गल जाएं। परशुराम की धमकियों के प्रत्युत्तर में लक्ष्मण ने एक बार फिर कटाक्ष किया कि माता पिता के ऋण तो मुनिवर चुका ही चुके हैं, अब गुरु के ऋण से भी उऋण हो जाएं, ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा, अब हिसाब करने के लिए यदि किसी को बुला लें तो वो थैली खोल दें। मुनि की क्रोधाग्नि में लक्ष्मण के वचन को आहुति समान जानकर श्री राम ने अनुज को शांत होने का इंगित किया।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है, समय है कार्यक्रम कृषि चर्चा का। आज सुनिए खरीफ फसलों में खरपतवार नियंत्रण, इस विषय पर डॉक्टर हरवेंद्र सिंह से सामयिक चर्चा।
1: खेतों में फसल के साथ साथ अपने आप उगने वाले अवांछित पौधे खरपतवार कहलाते हैं तथा ये बोईगी फसल के साथ काफी स्पर्धा करते हैं और उनके जल के साथ साथ खाद आदि का शोषण करते हैं और ये काफी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। और विशेष रूप से खरीफ फसलों में खरपतवारों के लिए उचित माध्यम होता है और अधिक बर्बाद कर लेते हैं। इसमें कई कारण हो सकते हैं, या तो फसल का समय से न बोया जाना, या कर्षण क्रियाएं सस्य क्रियाएं तरीके से नहीं होना, और इसके साथ ही खरपतवारों द्वारा काफ़ी फसलों के उत्पादन में काफ़ी मात्रा में क्षति पहुंचती है। साधारणतः सिंचित अवस्था में खरपतवार एक हेक्टर से कम 30-40 किलोग्राम नाइट्रोजन व 10 से 15 किलोग्राम फास्फोरस तथा 20 से 40 किलोग्राम पोटाश अवशोषित कर लेते हैं। मुख्य रूप से जो हमारे क्षेत्र में फसलें इस समय पर लगाई जाती हैं उनमें धान है, तो धान में 50-60% नुकसान होता है, मक्का में 20-30% पैदावार में नुकसान की संभावना रहती है। ऐसे ही बाजरा, मूंग, उड़द इन सभी में 15-20% का नुकसान इनकी उत्पादन पर पड़ता है। किसान भाई धान की फसल को दो प्रकार से बुवाई करते हैं, एक तो सीधी बुवाई करते हैं तथा एक रोपित धान जिनकी रोपाई करते हैं। तो जो सीधी बुवाई करते हैं उनमें काफी हद तक खरपतवारों से नुकसान होता है, और जो रोपित धान होते हैं उसमें खरपतवारों के नुकसान की संभावना कम रहती है। तो इस प्रकार जब रोपित धान है अगर उनमें हम समय पर पानी भरे रखें और थोड़ा बहुत खरपतवार होने पर निराई तो नहीं कर सकते, घास को उखाड़ करके उसका उपचार कर सकते हैं और खरपतवारों को नष्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ब्यूटा क्लोर एक दवा आती है, इसकी मात्रा 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टर बुवाई के 7 दिन के भीतर या रोपाई के 7 दिन के भीतर छिड़काव करने से मुख्यतः घास कुल के खरपतवारों से छुटकारा पाया जा सकता है। तथा धान में रासायनिक नियंत्रण के लिए ब्यूटा क्लोर मचेटी जो दानेदार व तरल रूप में मिलता है, ब्यूटा क्लोर मचेटी 50 cc की 5 किलोग्राम मात्रा 600 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें, अथवा 10% दानेदार मचरी की 2 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टर सीधे बुवाई की गई धान की बोनी के तुरंत बाद अंकुरण या रोपा लगाने के तुरंत बाद खेत में बिखेर दें, तो इस प्रकार से धान में घास व खरपतवारों से नियंत्रण पाया जा सकता। वैसे तो खरीफ फसलों में सभी फसलों में निराई का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान है और निराई से फसलों का उत्पादन पर काफी प्रभाव पड़ता है, उत्पादन भी बढ़ता है, साथ ही खरपतवार तो नष्ट होते ही हैं। निराई न संभव हो तो इसमें पैरासूट एक दवा आती है जिसे इमेजाथापर भी कहते हैं, 100 ग्राम दवा प्रति हेक्टर 700 लीटर पानी में बुवाई के 20-25 दिन बाद एक हेक्टर के लिए छिड़काव करें तो इसे खरपतवारों पर नियंत्रण किया जा सकता है। अथवा बासालीन आती है जो 2 किलोग्राम दवा

0: ये बुवाई से पूर्व एक हेक्टर के लिए पर्याप्त होती है। इसके अलावा पेंडी मिथिलीन दवा होती है जो बुवाई के तुरंत बाद एवं अंकुरण से पूर्व इस दवा को लगाना चाहिए, जो 1.5 किलो दवा प्रति हेक्टर के हिसाब से पर्याप्त रहती है। बाजरा की फसल में निराई 20-25 दिन बाद करनी ही चाहिए। अगर समय मिलता है तो इस देसी हल चलाकर इसकी गुर्र करने से, गुर्र को क्रप भी कहते हैं, तो गुर्र करने से भी काफी हद तक खरपतवारों को नियंत्रित किया जा सकता है। साथ ही बाजरा की उत्पादन पर भी काफी असर आता है। और इसमें एक चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं जिसके लिए 2,4-D 0.75 किलोग्राम सक्रिय तत्व का छिड़काव 600 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करने से बोनी के 20-25 दिन बाद करें। छिड़काव करने से इसके रोकथाम की जा सकती है। उर्द, तिल, मूंग, ये जो इनके पौधे 6-7 इंच के हों तब एक बार इनके निराई की आवश्यकता होती है, और निराई करने से इसके निरा नियंत्रण किया जा सकता है। साथ ही इसमें फ्लूक्लोरोनिन 1 किलोग्राम प्रति हेक्टर के उपयोग से बोनी से पूर्व किया जा सकता है, तथा बोनी के तुरंत बाद एलाक्लोर 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टर, जिसे लासू कहते हैं, 2 लीटर, या दानेदार 5% को 4 किलोग्राम प्रति हेक्टर मात्रा को प्रयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है। मूंग में जब पौधा 6 इंच का हो तब एक निराई करनी चाहिए, और यदि बोनी से पूर्व खरपतवार नाशक दवा का प्रयोग नहीं किया गया है तो बोनी के तुरंत बाद व अंकुरण से पहले पेंडी मिथिलीन 1 किलोग्राम दवा प्रति हेक्टर, और जिसको स्टाम्प भी कहते हैं, 3 लीटर दवा का प्रयोग किया जा सकता। इस प्रकार से छिड़काव से खरपतवारों का नियंत्रण किया जा सकता है।
1: कृषि चर्चा में अभी आपने सुना खरीफ फसलों में खरपतवार नियंत्रण विषय पर डॉक्टर हरवेंद्र सिंह से सामयिक चर्चा। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है, समय है सूचना परक कार्यक्रम दर्पण का। श्रोताओं, सबसे पहले कुछ रोजगार सूचनाओं की ओर ध्यान देंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जूनियर एसोसिएट्स यानी क्लर्क के 9,124 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि आज यानी 31 अगस्त 2026 है। आवेदनकर्ता की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष रखी गई है। जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए ₹750 का शुल्क है। एससी, एसटी और पीएच कैंडिडेट्स के लिए ये निःशुल्क है। अधिक जानकारी के लिए आप SBI की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BHU ने यानी IIT BHU ने नॉन टीचिंग के 55 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 सितंबर 2026 है। जो उम्र है वो न्यूनतम 27 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष रखी गई है। अधिक जानकारी के लिए आप IIT BHU की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। भारतीय डाक यानी इंडियन पोस्ट ने GDS के 23,757 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन आज से प्रारंभ हो चुके हैं और अंतिम तिथि 19 सितंबर 2026 है। आवेदनकर्ता के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष रखी गई है। अधिक जानकारी के लिए आप भारतीय डाक यानी इंडियन पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड यानी RBUNL ने जूनियर असिस्टेंट के 2005 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदनकर्ता के लिए कमर्शियल असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट के लिए 18 से 40 वर्ष, जूनियर इंजीनियर के लिए 21 से 40 वर्ष की आयु सीमा रखी गई है। आवेदनकर्ता के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि आज यानी 31 अगस्त 2026 है। अधिक जानकारी के लिए आप RRVUNL की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने LBO यानी लोकल बैंक ऑफिसर के 2,482 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 सितंबर 2026 रखी गई है। न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष है। आवेदनकर्ता को जनरल, ओबीसी और EWS कैटेगरी में ₹850 का शुल्क है। SCST PWD कैंडिडेट्स के लिए 175 और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए ₹175 का शुल्क रखा गया है। अधिक जानकारी के लिए आप बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। मध्य प्रदेश एम्प्लॉयज सिलेक्शन बोर्ड यानी MPESB ने

0: आईसीआरबी और इंजीनियर के 175 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष रखी गई है। अधिक जानकारी के लिए आप इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इसके साथ ही संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने ईपीएफओ और एपीएफसी के यानी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर और उनके सहायक के लिए 80 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 11 सितंबर 2026 है। अधिक जानकारी के लिए आप संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। सूचना परक कार्यक्रम दर्पण समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने को है। संस्कृत में समाचार आपसे कुछ ही समय में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। श्रोताओं, संस्कृत समाचारों के ठीक बाद हिंदी में समाचार भी आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही अनुप्रसारित होंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। भारत उज्बेकिस्तान देशाभ्याम् अद्य खनन आयुर्वेद पर्यटनार्थिक सहयोग पर्यावरण उच्च शिक्षादि क्षेत्रेषु परस्पर सहयोग संवर्धनाय संधिपत्राणि हस्ताक्षरितानि। देशद्वयेन 30+ वर्षं यावत् 5 अरब डॉलर मितं व्यापार लक्ष्यं निर्धारितम्। यदि सांप्रतिक व्यापारस्य 5 गुणितं वर्तते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तानस्य सर्वोच्च सम्माननमपि अलभत। इदं सम्माननं देशद्वयस्य मध्ये सहयोग संवर्धने तदीय योगदानाय उपायनीकृतम्। ताशकंद नगरी उज्बेकिस्तानस्य राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोरेव प्रधानमंत्रिणे नरेंद्र मोदिने सर्वोच्च राजकीय सम्मानेन ऑर्डर ऑफ ओलियल दर्जाली दोस्तलिक इत्यनेन सम्मानितवान्। प्रधानमंत्रिणा एषः सम्माननः भारत उज्बेकिस्तानयोः दृढ़ संबंधेभ्यः समर्पितः।
2: इस वर्ष हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 15 साल हो रहे हैं। इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक $5 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हम मार्केट एक्सेस, कनेक्टिविटी, बैंकिंग और पेमेंट जैसे जुड़े विषयों पर व्यवस्थागत रूप से आगे बढ़ेंगे।
1: श्री मोदी अवोचत यत् सम्मानं प्राप्य असौ गौरवानुभवति अपि च देशद्वयं व्यापक रणनीतिक संरचनायाः अन्तर्गतं निर्णायक लक्ष्य निर्धारणार्थम् अग्रे समेधयिष्यन्ते। राष्ट्रपतिना शावकत मिर्जियोरेव इत्यनेन सह प्रतिनिधिमंडल स्तर वार्तायां श्रीमोदी अवोचत यत् देशद्वयं निज संबंधान् व्यापक रणनीतिक सहभागिता स्तरं यावत् नयतः। अनन्तरं सहयोगस्य समस्त स्तराणां समीक्षायै विदेश मंत्रिणां समन्वय समितेः घटना विधास्यते। नेपाले जलाप्लावनस्य स्थितिः अत्यन्तं चिन्तास्पदा वर्तते। भोटेकोशी नद्याः जलस्तरवर्धनेन प्रशासनेन रसुवा नुवाकोट धादिंग मण्डलेषु सञ्चेतना च प्रसारिता। मध्यनेपाले आकस्मिक जलप्रलयेन मृतकानां संख्या समेध्य 68+ संवृत्ता। अद्यापि मृतवपुंसि सम्प्राप्यन्ते। अस्यां घटनायां 2500 जनाः विलुप्ताः सन्ति। संकटस्य पञ्चमे दिने सहायोद्धार कर्मचारिणः द्रुतगत्या विलुप्तानां अन्वेषणाय कार्यं कुर्वन्ति। 8 अपि प्रभावित जनपदेषु शवाः प्राप्ताः। नेपालस्य नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड

0: मैनेजमेंट अथॉरिटी NDRRMA इत्यनेन उक्तं यत् इदानीं यावत् 88,100+ जनाः सुरक्षापूर्वकं निष्कासिताः। एतेषु 27,200 वैदेशिक नागरिकाः अपि वर्तन्ते। निफ्ट संस्थायाः 18 परिसराणाम् 80% स्नातक छात्रान् सम्बोधयितुम् अद्य राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः नवदेहलीं समायास्यति। एषः दीक्षांत समारोहः छात्राणां शैक्षणिक प्रयासानां सिद्धिरूपेण आयोज्यते। ओडिशा राज्ये नूतनवृष्ट्या जलाप्लावन संकटः अतीव भीषणो जातः। उत्तरक्षेत्रेषु नदीनां जलस्तरः झटिति वर्धते। ऋतुविभागेन बालेश्वर खेजर मयूरभंज क्षेत्रेषु अतिवृष्टिपरा सञ्चेतना प्रख्यापिता। तटवर्ती जनाश्च सावधानतया स्थातुम् उपादिष्टाः। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा कल संपन्न हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव की बातचीत के अलावा इस यात्रा की कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां रहीं।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा के मायने 11 समझौतों पर हस्ताक्षर से कहीं बढ़कर हैं। महत्वपूर्ण खनिजों और यूरेनियम की सप्लाई से लेकर व्यापार, रक्षा, डिजिटल भुगतान और शिक्षा तक, हिंदी और संस्कृत से लेकर खेल और विरासत संरक्षण तक, इस 2 दिवसीय यात्रा ने भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को एक विस्तृत और व्यापक ढांचा प्रदान किया है। व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक संबंधों का बढ़ना, $5 अरब के व्यापार लक्ष्य को 3 साल के भीतर हासिल करने का संकल्प, दीर्घकालिक ऊर्जा सहयोग और राज्य एवं नगर स्तर पर अधिक सहभागिता से भारत की उज्बेकिस्तान के साथ दोस्ती को एक नई गति मिलने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे कल राष्ट्र अध्यक्षों के सत्र में भी भाग लेंगे। श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर कल बिश्केक पहुंचे। मंत्रिमंडल के अध्यक्ष कासिम अलीफ आदिलबेक अलीशोविच ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। उनके स्वागत के लिए पारंपरिक किर्गिज नृत्य का आयोजन किया गया। श्री मोदी राष्ट्रपति सादो जापारोव के निमंत्रण पर शिखर सम्मेलन के लिए किर्गिस्तान की यात्रा पर। आशा है कि शिखर सम्मेलन से अलग श्री मोदी संगठन के कई नेताओं से मुलाकात करेंगे। इससे पहले श्री मोदी ने कहा है कि वे सुरक्षा, संपर्क और अवसर पर आधारित इस क्षेत्र के लिए भारत के विजन को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत SCO सदस्यों के साथ मिलकर आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ मुक्त क्षेत्र बनाने की दिशा में काम करेगा। नेपाल में बाढ़ के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 794 हो गई है। राहत और बचाव कार्य जारी है। अब तक 2,500 से अधिक लोग लापता हैं। आपदा प्रभावित सभी 8 जिलों से शव बरामद किए गए हैं। इस बीच मध्य नेपाल में त्रिशूली नदी में एक और बाढ़ के कारण सस्पेंशन पुल बह गया। विदेश मंत्रालय के अनुसार अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। करीब 50 लापता भारतीय नागरिकों से संपर्क हो गया है, लेकिन 275 भारतीय नागरिक अभी भी लापता हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका में दक्षिण कैरोलिना के एशविले में G20 और इससे जुड़ी बैठकों में हिस्सा लेंगी। इससे पहले वित्त मंत्री ने शिकागो में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए निर्धारित राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों को सफलतापूर्वक हासिल किया है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने सुकमा जिले में नक्सलियों के ठिकानों का भंडाफोड़ कर बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है। सुरक्षा बलों ने बेलपोचा गोमपाड़ के घने जंगलों में छिपाकर रखे गए विस्फोटकों का जखीरा बरामद किया है। ये संयुक्त अभियान सुकमा जिला बल, जिला रिजर्व गार्ड DRG और बस्तर फाइटर्स ने चलाया। ये कार्रवाई हाल ही में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली कैडरों से मिली विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर की गई है। भारत के अभय सिंह ने तुआंकू मुहरीज स्क्वैश ट्रॉफी जीत ली है। मलेशिया के सेरेम्बन में अभय ने PSA चैलेंजर टूर 15 इवेंट के फाइनल में हांगकांग के हेनरी लिंग को 3-2 से हराया। ये अभय का 13वां और इस वर्ष का 2रा PSA टूर खिताब है। इससे पहले उन्होंने मार्च में मुंबई में इंडियन ओपन खिताब जीता था।

0: दुबई में महिला टी20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने जीत के साथ ही शानदार शुरुआत की है। भारत ने थाईलैंड को 94 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 9 विकेट पर 159 रन बनाए। शिफाली वर्मा ने 64 रन की शानदार पारी खेली। शिफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप बी में आज बांग्लादेश और इंडोनेशिया आमने सामने होंगे। भारतीय समय अनुसार ये मैच रात 8 बजे शुरू होगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने श्रीलंका से 2027 में होने वाली पहली महिला चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी छीन ली है। श्रीलंका क्रिकेट प्रशासन में सरकार के हस्तक्षेप के कारण ये फैसला किया गया है। प्रतियोगिता में मेजबान श्रीलंका सहित 6 टीमें हिस्सा लेने वाली थीं। आईसीसी बोर्ड की अगली बैठक में टूर्नामेंट के नए आयोजन स्थल के बारे में फैसला होने की संभावना है। आयोजन स्थल बदलने से श्रीलंका की टीम के इस टूर्नामेंट में खेलने पर भी सवाल खड़ा हो गया है। जर्मनी ने पुरुष हॉकी विश्व कप जीत लिया है। बेल्जियम में फाइनल में जर्मनी ने स्पेन को 1-0 से हराया। जर्मनी की तरफ से मिशेल स्ट्रुथॉफ ने गोल किया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी भोपाल है और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम
2: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा।

सबसे पहले प्रातः 7:10 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। उसके ठीक बाद प्रातः 7:20 पर आप सुन सकेंगे काव्य पाठ। आज हम आपको सुनवाएंगे राजकिशोर वाजपेयी अभय से उनकी कविता। फिल्म संगीत का लुत्फ प्रातः 7:30 से लिया जा सकेगा। श्रोताओं, फिल्म संगीत का एक और कार्यक्रम जिसमें हम आपकी फरमाइश पर गीत सुनवाते हैं, कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश, सुनिए प्रातः 10:05 से। समाचार प्रभात प्रातः 8:00 और उसके ठीक बाद प्रातः 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज़, ये दोनों ही न्यूज़ बुलेटिन आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगी।

प्रातः 8:30 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम सुना जा सकेगा। कार्यक्रम में आज कलाकार होंगे हरिजिंदर सिंह तेजा। हम आपको सुनवाएंगे हरिजिंदर सिंह तेजा के गाए कुछ भजन। आपके साथ तबले पर संगत करेंगे सजग माथुर। प्रातः 8:58 पर इस घंटे की खास खबरें आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले होंगी। सूचना समाचारों और जानकारी पर केंद्रित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर प्रातः 9:00 सुना जा सकेगा। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम प्रातः 9:30 से सुनिए। कार्यक्रम में आज कलाकार होंगे बलराम पाठक। आप सुनेंगे सितार वादन राग कोमल ऋषभ आसावरी में। जिले की चिट्ठी का अनुप्रसारण प्रातः 10:00 आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जाएगा। इस घंटे की खास खबरें प्रातः 10:58 पर आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले होंगी।

श्रोताओं, प्रातः 11 बजे से सभा की समाप्ति तक सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित होंगे। प्रातः 11:58 पर, दोपहर बाद 12:58 पर और 2:58 पर आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें। श्रोताओं, हमारी सायंकालीन सभा भी पुनः आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से ही अनुप्रसारित होगी। सायं 5 बजे आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें। सायं 5:02 पर युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युव वाणी। यह कार्यक्रम आज आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति होगा। सायं 6 बजे NCERT का शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग सुना जा सकेगा। सायं 6:40 पर आप सुनेंगे क्षेत्रीय समाचार एकांश भोपाल आजकल। सायं 7:20 पर ग्रामीण श्रोता सुन सकेंगे अपना

कार्यक्रम चौपाल हमारे केंद्र से। चर्चा के विषय होंगे ग्रामोदय से भारत उदय अभियान और स्वच्छता और हमारा पर्यावरण। इसके साथ ही बुंदेली लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम लोक माधुरी भी सुना जा सकेगा। उर्दू समाचार रात्रि 9:15 पर आप सुन सकेंगे। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी रात्रि 10:30 से सुना जा सकेगा।

आज का कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है, प्रातः के 7:10 होने को हैं। प्रादेशिक समाचार अब से कुछ ही समय में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित होंगे।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय दौरे पर किर्गिस्तान पहुंचे, एससीओ शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान मिलने पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी बधाई। ओरछा में भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक, राम राज्य और सुशासन पर मंथन। और संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का तीन दिवसीय शिवपुरी दौरा आज से, कई विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण और भूमि पूजन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय दौरे पर किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक पहुंचे। वे आज और कल होने वाले 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और राष्ट्राध्यक्षों के सत्र में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत सुरक्षा, संपर्क और अवसरों पर आधारित क्षेत्र के लिए काम करना चाहता है। उन्होंने आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ से मुक्त क्षेत्र बनाने में एससीओ देशों के साथ मिलकर काम करने की बात कही। इस दौरे के दौरान श्री मोदी कई एससीओ नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं और विश्व घुमंतू खेलों के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ओली दराजली दोस्तलिक मिलने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह सम्मान भारत और उज्बेकिस्तान के बीच मजबूत दोस्ती, भरोसे और सांस्कृतिक रिश्तों का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए प्रधानमंत्री मोदी को इस सम्मान के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत की दुनिया में लगातार प्रतिष्ठा बढ़ रही है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से 2 सितंबर तक शिवपुरी के तीन दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे शिवपुरी, कोलारस और पिछोर में कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। दौरे के पहले दिन अचरौनी, बमौरकला और खनिया थाना में स्वास्थ्य केंद्र, सब स्टेशन और उप तहसील समेत कई परियोजनाओं का शुभारंभ होगा। 1 सितंबर को श्री सिंधिया शिवपुरी में छात्रावास, सड़कों और अमृत भारत रेलवे स्टेशन का जायजा लेंगे और कोलारस रेलवे स्टेशन पर उज्जैनी एक्सप्रेस के नए ठहराव की शुरुआत करेंगे। वहीं 2 सितंबर को वे कलेक्ट्रेट में दिशा की बैठक में शामिल होने के साथ साथ प्रधान डाकघर का लोकार्पण और पोस्टल प्रशिक्षण केंद्र का भूमि पूजन करेंगे। ओरछा में भाजपा की 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है। राम राजा सरकार की नगरी में हो रही इस बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव समेत पार्टी के कई बड़े नेता और पदाधिकारी शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भगवान राम राजा सरकार के दरबार में आना उनके लिए सौभाग्य की बात है और राम राज्य की स्थापना भाजपा का लक्ष्य है। वहीं केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ओरछा की पावन धरती पर हो रहे मंथन से संगठन और प्रदेश के लिए सकारात्मक नतीजे सामने आएंगे।

0: बैठक में सुशासन, विकास, जनकल्याण और संगठन को मजबूत करने जैसे मुद्दों पर चर्चा हो रही है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल सतना के चित्रकूट में अतिवृष्टि से प्रभावित इलाकों का जायजा लिया और लोगों से मुलाकात की। उन्होंने जिला प्रशासन को राहत और बचाव कार्य में किसी तरह की कमी नहीं रखने के निर्देश दिए। और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सतना संवाददाता लाल बहादुर तिवारी।
2: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सतना जिले के चित्रकूट पहुंचकर बाढ़ आपदा से उत्पन्न परिस्थितियों का जायजा लिया। उन्होंने आश्रय स्थल पहुंचकर बाढ़ प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनका कुशल क्षेम जाना और राहत सहायता वितरित करते हुए कहा कि सरकार संकट की घड़ी में आपके साथ है। डॉक्टर मोहन यादव ने चित्रकूट के बाढ़ प्रभावित कई क्षेत्रों में प्रभावित घरों तक पहुंचकर नुकसान का अवलोकन किया और प्रभावित परिवारों से चर्चा की, हर संभव सहायता और राहत देने की बात कही। आकाशवाणी समाचार के लिए सतना से मैं लाल बहादुर तिवारी।
0: वहीं अतिवृष्टि को देखते हुए सतना जिले के सभी स्कूलों में 31 अगस्त और 1 सितंबर को छुट्टी घोषित की गई है। प्रभावित लोगों के लिए भोजन, पीने का पानी, कपड़े, दवाइयां और जरूरी राहत सामग्री पहुंचाने को कहा गया है। स्वच्छता में लगातार 8 बार नंबर 1 इंदौर अब हरियाली में भी मिसाल बन रहा है। अगस्त में नगर निगम के पर्यावरण अभियान को शहरवासियों का जबरदस्त साथ मिला। इस अभियान पर पेश है एक खास रिपोर्ट।
3: इंदौर नगर पालिका निगम ने शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कम करने और हरियाली को बढ़ावा देने के लिए अभिनव प्रयोग करते हुए आधा किलो प्लास्टिक लाएं, एक पौधा ले जाएं अभियान चलाया। 20 अगस्त से 30 अगस्त तक चले इस अभियान में लगभग 3,500 नागरिकों और 53 जनप्रतिनिधियों ने 2,000 किलो से अधिक प्लास्टिक का संग्रहण कर नगर निगम के 15 निर्धारित RRR केंद्रों पर जमा किया। अभियान के दौरान चर्चा में महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने आकाशवाणी से कहा,
4: इस अभियान को चलाने का उद्देश्य नगर निगम का क्लीन इंदौर को ग्रीन इंदौर भी बनाना है और प्लास्टिक वेस्ट को हमारे घर से और आसपास से खत्म करने के लिए यह अनूठा अभियान हमने शुरू किया है जिसमें आपकी सहभागिता बहुत आवश्यक है।
3: इंदौर शहर के नागरिक और BSNL से सेवानिवृत्त श्याम यादव इस पहल को शहर के हित में बताते हैं।
5: इससे एक तरफ प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करके पर्यावरण को स्वच्छ रखने में मदद मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ लगाए जाने वाले पौधे वायु प्रदूषण को कम करने और शहर को हरा भरा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
3: अभियान के दौरान नागरिकों ने पौधे के संरक्षण और पेड़ बनाने का संकल्प भी लिया। इतना ही नहीं, पौधे के साथ सेल्फी लेकर इंटरनेट मीडिया पर साझा कर उन्होंने अन्य लोगों को भी अभियान में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। मनिंद्र कुमार दुबे, आकाशवाणी समाचार, इंदौर।
0: प्रदेश में 12वीं में पहली बार 75% या उससे ज्यादा अंक लाने वाले करीब 1,22,000 विद्यार्थियों को लैपटॉप खरीदने के लिए 25,000 रुपए मिलेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 1 सितंबर को भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों के खातों में ये राशि ट्रांसफर करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री डॉ. यादव 2 सितंबर को ग्वालियर में बलराम जयंती महोत्सव सहकारी किसान सम्मेलन में शामिल होंगे। उज्जैन में सावन भादौ मास की परंपरा के तहत भगवान महाकाल की 5वीं सवारी आज निकलेगी। सवारी में बाबा महाकाल 5 अलग अलग स्वरूपों में भक्तों को दर्शन देंगे और शहर का भ्रमण कर अपनी प्रजा का हाल जानेंगे। भोपाल की नरेला विधानसभा में 18 साल से लगातार हो रहा रक्षाबंधन महोत्सव आज से शुरू होगा। मंत्री विश्वास कैलाश सारंग के नेतृत्व में 17 वार्डों में होने वाले इस आयोजन में लाखों बहनों के शामिल होने की उम्मीद है। भारत ने महिला टी20 एशिया कप 2026 में शानदार शुरुआत करते हुए थाईलैंड को 94 रन से हरा दिया। दुबई में पहली बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 159 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने 64 रन की शानदार पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आपको समाचार संक्षेप में। खंडवा में मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत नगर निगम के सिविल लाइन स्थित जोन कार्यालय परिसर में शिविर आयोजित किया गया। कटनी में सनातन संस्कृति, धार्मिक परंपराओं और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बारडोली उत्सव समिति द्वारा 2 दिवसीय कजलिया मेले का समापन हुआ। राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद की जयंती पर आगरमालवा में कल कबड्डी खेल के खिलाड़ियों के बीच

रात्रि मैच आयोजित किया गया। अशोकनगर में स्वास्थ्य विभाग बैक्टीरियाजनित रोगों डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों से बचाव और नियंत्रण के लिए आवश्यक सलाह दी है। धार में नागरिकों को शुद्ध गुणवत्ता युक्त खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिले में सघन निरीक्षण और जांच अभियान चलाया जा रहा है। झाबुआ में गवली समाज द्वारा पारंपरिक रूप से भुजरिया का पर्व मनाया गया। शिवपुरी में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सुरक्षा जवान और सुरक्षा सुपरवाइजर भर्ती कैंप आयोजित किए जाएंगे। बालाघाट के बिरसा विकासखंड के बीमारी प्रभावित ग्राम कुंडेकसा कुरका और बुंदारी सहित आसपास के क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा घर घर स्वास्थ्य सर्वे और उपचार की कार्रवाई लगातार जारी है। बैतूल में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 650वीं जन्म जयंती के अवसर पर समरसता संकल्प अभियान और यात्रा निकाली गई। अनूपपुर में आगामी 3-4 दिन भारी बारिश की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। सीधी जिले में लगातार हो रही वर्षा और बाढ़ को देखते हुए कलेक्टर ने जिले में इससे निपटने की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गान अपना।
1: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन EIR पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 7:20 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए राजकिशोर वाजपेयी अभय से काव्य पाठ।
2: गजल प्रस्तुत है जिंदगी शीर्षक से। काल के हाथों थमी है जिंदगी, भावनाओं की नमी है जिंदगी। सुरमुई सी सांझ छाई बाग में, चित बनों में आज खोई जिंदगी। ख्वाब चाहत प्रेम सभी साथ हैं, ख्वाब चाहत प्रेम सभी साथ हैं, बस इसी का नाम है जिंदगी, बस इसी का नाम है जिंदगी। काम आना भूल जाना आप ही है सुहानी रात रानी जिंदगी। रोज ओढ़ी और बिछाई जिंदगी, काम मेरे रोज आई जिंदगी। था मुसाफिर रोज का भटका हुआ, कौन बनकर पास आती जिंदगी। बात मानी जो अभय की आज तक, सफल दुनिया ने बताई जिंदगी, सफल दुनिया ने बताई जिंदगी। रहमतों का तकाजा है और रहमत जब मिलती हैं तो जीवन कैसा होता है, उसको इस गज़ल में प्रस्तुत किया है। देखें, काम अच्छे करो, नाम अच्छा करो, पास रहमत खुद ही चली आएगी। जान लो सच यही तो सही बात है, जिंदगी आपकी खुद संवर जाएगी। जो सुखों में जिए, जो सुखों में जिए, वे नहीं जानते रहमतों की जुबानी सुनी जाएगी। हो सके तो करो, हो सके तो करो, तुम भला भी कभी, नेकियों की महक खुद गजब ढाएगी। नेकियों की महक खुद गजब ढाएगी। रहमतों का मिला है, रहमतों का मिला है सिलसिला उसे, नेकियां जो करी काम वो आएगी। नेकियां जो करी काम वो आएगी। दर्द पीते रहे, दर्द पीते रहे, प्यार जीते रहे, जिंदगानी मुकम्मल निखर।

निखर जाएगी जिंदगानी मुकम्मल, निखर जाएगी आदमी बन सको तो बने बात भी, आदमी बन सको तो बने बात भी, अभय शोहरत खुद ही निकट आएगी, अभय शोहरत खुद ही निकट आएगी। अगली रचना वाणी शीर्षक से है। वाणी हम सभी के पास होती है, लेकिन उसका प्रयोग हम कब और कैसे करते हैं, उसके परिणाम क्या होते हैं, वो इस रचना में बताया है। जो मीठी वाणी बोलते वो पाते सुख भरपूर, सारा जग उनका हुआ दुख उनसे रहता दूर। कटु वचनों की वानगी रच देती मन संताप, पीड़ा देती और को खुद भी पीड़ित आप। कोयल की वाणी मधुर सबके मन को भाए, कर्कश कागा बोल सुन सब कोई दे भगाए। जिनके मन मिश्री भरे बेरचते स्वर्ग महान, संग जिन्हें उनका मिला धन्य हुआ वरदान। वाणी की सिद्धि जिन्हें बेपारस जीवन रूप, बे सबके अनुरूप हैं सब उनके अनुरूप। वाणी से ही रच रहा भिन्न भिन्न संसार, मीठी वाणी ही सदा खुशियों का आधार। भारत अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना चुका है, शताब्दी वर्ष की ओर बढ़ रहा है। आओ हम भी अब कुछ नया रचाएं। रचना शीर्षक से प्रस्तुत है। तेरी मेरी उसकी अपनी पीड़ाओं की व्यथा निराली, एकांकी जीवन की सहचर स्मृतियां कब होती खाली, त्यागें भूत भविष्य बनाएं, आओ अब कुछ नया रचाएं, आओ अब कुछ नया रचाएं। घुट घुट कर तो खूब जी लिया, ईर्षार द्वेष बहुत था पाला। घुट घुट कर तो खूब जी लिया, ईर्षा द्वेष बहुत था पाला। खुशियां पर पीड़ा में ढूंढी, सदकर्मों को हरदम टाला। समझें इसको और समझाएं, आओ अब कुछ नया रचाएं, आओ अब कुछ नया रचाएं। खंडहर में संगीत नहीं है, खंडहर में संगीत नहीं है, बिना मीत के गीत कहीं है। खंडहर में संगीत नहीं है, बिना मीत के गीत कहीं है। प्रेम सदा जीवन रचता है, सृष्टि की यह रीत रही है। गंध प्यार की हम बिखराएं, आओ अब कुछ नया रचाएं, आओ अब कुछ नया रचाएं। अपने पन की रचकर दुनिया गाएं, आओ अब कुछ नया रचाएं, आओ हम कुछ नया रचाएं। छोड़ें अहम मान कर गलती, छोड़ें अहम मान कर गलती, नहीं कोई फिर कुंठा पलती। सरस भाव जीवन में आता, हर रिश्ता सच्चा सुख लाता। इसी भाव की महिमा गाएं, आओ अब कुछ नया रचाएं, आओ अब कुछ नया रचाएं। और अंतिम बंद जिसके लिए ये पूरी रचना है, देखें कि हम आराधक सदा राम के, हम आराधक सदा राम के, फिर रावण क्यों मन में पाले। हम आराधक सदा राम के, हम आराधक सदा राम के, फिर रावण क्यों मन में पाले। जब कृष्ण हमारे इष्ट देव हैं, तो कंस भाव के क्यों रखवाले। सच पहचाने ज्योति जलाएं, आओ अब कुछ नया रचाएं, आओ अब कुछ नया रचाएं, आओ अब कुछ नया रचाएं। कुछ दोहे प्रस्तुत करता हूं कि हम जब सदकर्म करते हैं तो हमको प्रतिदान अवश्य मिलता है। सदकर्मों की है छटा, सदकर्मों की है छटा, इसका रूप महान। जीवन हो जाता सफल, मिलता है प्रतिदान। वाणी शीर्षक से। वाणी से ही रचत हैं
स्वर्ग।

0: नरक से लोक वाणी में ही बसते हैं अमृत विसंयोग। आह्वान आह्वानों से ही रचा हर युग का इतिहास जन नायक के बोल में बल कुछ होता खास। प्रणाम जैसे जिसके कर्म हैं फल के वैसे नाम, जैसे जिसके कर्म हैं फल के वैसे नाम। दोष न काहू दीजिए ये अपनों परिणाम। उत्सव उत्सव मन का भाव है ईश कृपा से होए, उत्सव मन का भाव है ईश कृपा से होए। अपनापन सब पाइए अहम भाव को खोए, अहम भाव को खोए।
1: श्रोताओं अभी आपने सुना राजकिशोर वाजपेयी अभय से काव्य पाठ। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है, अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत कार्यक्रम में। आज हम आपको सबसे पहले सुनवा रहे हैं फिल्म विजयपथ का ये गीत। इस गीत को संगीत दिया है अनु मलिक ने, गाया कलाकार है अलीशा चिनॉय।

0: रितेश, तुम्हारे पापा की तबीयत कैसी है?
1: डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, ब्लड भी चढ़ाना पड़ेगा शायद, लेकिन मुझे डर है कि हॉस्पिटल का ब्लड सेफ है या।
0: अगर लाइसेंस हॉस्पिटल या लाइसेंस ब्लड बैंक है तो सेफ ही होगा, क्योंकि ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड स्टोर करने की अथॉरिटी सिर्फ लाइसेंस ब्लड बैंक और लाइसेंस हॉस्पिटल के पास ही है। और ये भी सुनिश्चित कर लेना कि ब्लड HIV टेस्टेड है या नहीं, क्योंकि असुरक्षित ब्लड ट्रांसफ्यूजन से HIV एड्स जैसे कई बीमारियों की संक्रमण का भी डर रहता है।
1: अच्छा, अब तो मैं लाइसेंस ब्लड बैंक या हॉस्पिटल से ही ब्लड लूंगा।
2: हाँ, और इस बारे में और जानकारी चाहिए हो तो 1097 पर कॉल कर लेना।
3: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
4: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से। कार्यक्रम में अगला गीत सुनिए, फिल्म कहो ना प्यार से। इस गीत को लिखा है सावन कुमार तक ने, संगीत है राजेश रोशन का, गायक है आशा भोसले।

0: 5 महीने हो गए ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए, नए स्किल सीखने हैं पर पैसे भी कमाने हैं, समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं।
1: तो फिर सोच कि तेरी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई।
0: क्या, कैसे?
1: अरे मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, 12th ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, जहां तुम स्किल्स भी सीख सकते हो और 10,000 तक का स्टाइपेंड भी कमा सकते हो।
0: वाह। अच्छा रजिस्टर कैसे करें?
1: mmsky.mp.gov.in पर। mmsky, सीखो भी कमाओ भी।
2: हर बैंक के अलग अलग KYC पेपर्स, काश एक चाबी होती।
3: एक चाबी है CKYC ID।
2: CKYC मतलब
3: बैंक आपके

0: केवाईसी रिकॉर्ड सीकेवाईसी रजिस्ट्री में अपलोड करता है, जिससे आपको मिलेगा एक यूनिक 14 डिजिट सीकेवाईसी आईडी। ये सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वैलिड है, यानी एक जगह केवाईसी अपडेट तो सब जगह अपडेट।
1: वाह, आरबीआई कहता है
0: केवाईसी सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण। इस समय प्रसारित हो रहा है फिल्म संगीत। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब आपको सुनवाते हैं फिल्म हीरो नंबर वन से इस गीत को। इस गीत को लिखा है समीर ने, संगीत है आनंद मिलिन का, गायक हैं उदित नारायण और पूर्णिया।

श्रोताओं, अभी आपने सुना अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाज़ में, हिमेश रेशमिया का संगीत, सुधाकर शर्मा का लिखा फिल्म दुल्हन हम ले जाएंगे से ये गीत। फिल्म संगीत में आज का अंतिम गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म हद कर दी आपने से। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है आनंद राज आनंद का, गायक कलाकार है जसपिंदर नरूला।

0: बाय द वे तुम्हें क्या करना है?
1: बाय द वे कुछ वादे करने हैं, उन्हें पूरा करना है, संग जीना है संग मरना है,
0: तो कर लो ना जो करना है, डोंट बॉदर मी।
1: रियली?

श्रोताओं, इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्स और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 8 बजने को है, प्रातः 8 बजे समाचार प्रभात और उसके ठीक बाद प्रातः 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज़। दोनों ही न्यूज़ बुलेटिन अब से कुछ ही समय में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगी।

0: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक QR कोड स्कैन करके हो जाती है।
1: UPI के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, DBT सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
3: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। PM जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। सम्मेलन से इतर संगठन के कई नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर 7% या उससे अधिक रहने की संभावना। नेपाल में बाढ़ के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 794 हुई, 2500 से अधिक लोग अब भी लापता। अमेरिकी सेना ने होर्मुज जल डुमरू मध्य में लद्दाख द्वीप पर ईरान के रॉकेट लॉन्चरों पर हमले किए, जवाब में ईरान ने पश्चिम एशिया में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। और दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने अपने आरंभिक मैच में थाईलैंड को 94 से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे कल राष्ट्र अध्यक्षों के सत्र में भी भाग लेंगे। श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर कल बिश्केक पहुंचे।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिश्केक में सबसे पहले फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद करेंगे। इसके बाद वे महात्मा गांधी मेमोरियल पार्क जाकर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इस प्रतिमा का अनावरण श्री मोदी ने वर्ष 2015 की अपनी किर्गिस्तान यात्रा के दौरान किया था। प्रधानमंत्री आज शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के अनेक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इनमें आर्मेनिया, किर्गिस्तान और ईरान के राष्ट्रपति के साथ ही रूस के राष्ट्रपति के साथ होने वाली द्विपक्षीय बैठक भी शामिल है। श्री मोदी आज 6ठे विश्व नॉमेड खेलों के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे। ये आयोजन मध्य एशिया की समृद्ध जीवंत सांस्कृतिक विरासत का उत्सव है। प्रधानमंत्री कल 1 सितंबर को शंघाई सहयोग संगठन की 26वीं बैठक को संबोधित करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए बिश्केक से मैं विकल्प शुक्ला।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा कल संपन्न हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव की बातचीत के अलावा इस यात्रा की कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां रहीं।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा के मायने 11 समझौतों पर हस्ताक्षर से कहीं बढ़कर हैं। महत्वपूर्ण खनिजों और यूरेनियम की सप्लाई से लेकर व्यापार, रक्षा, डिजिटल भुगतान और शिक्षा तक, हिंदी और संस्कृत से लेकर खेल और विरासत संरक्षण तक, इस 2 दिवसीय यात्रा ने भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को एक विस्तृत और व्यापक ढांचा प्रदान किया है। व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक संबंधों का बढ़ना, $5 अरब के

0: व्यापार लक्ष्य को 3 साल के भीतर हासिल करने का संकल्प, दीर्घकालिक ऊर्जा सहयोग और राज्य एवं नगर स्तर पर अधिक सहभागिता से भारत की उज्बेकिस्तान के साथ दोस्ती को एक नई गति मिलने की उम्मीद है। यात्रा का एक शानदार पल तब आया जब राष्ट्रपति शौकत मिर्जियेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राजकीय सम्मान ओली दराजली दोस्तलिक पुरस्कार प्रदान किया। ये पुरस्कार भारत उज्बेकिस्तान संबंधों और सहयोग को मजबूत करने में उनके योगदान को रेखांकित करता है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर 7% या उससे अधिक रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के बाद के वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था ने जिस गति को हासिल किया है वो आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। अमेरिका दौरे पर वित्त मंत्री ने शिकागो में भारतीय समुदाय से कहा कि भू राजनीतिक अनिश्चितताओं और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों के बावजूद भारत अपनी आर्थिक विकास की रफ्तार बनाए रखेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद त्रिशूली 3A सहित कई जल विद्युत परियोजनाओं की सुरंगों में फंसे सैकड़ों लोगों को निकालने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं।
3: भारत और चीन के विशेषज्ञों सहित बचाव दल सुरंग के अंदर फंसे लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। लापता 2500 लोगों में से सैकड़ों लोग नेपाल की जल विद्युत परियोजना के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। बुधवार की इस आपदा में नेपाल में मृतकों की संख्या 794 हो गई है। तिब्बत में आधिकारिक तौर पर मृतकों की संख्या 16 है, जबकि 546 लोग लापता है। त्रिशूली नदी में फिर से बाढ़ के कारण मध्य नेपाल में एक झूलता हुआ पुल बह गया। पुल के बह जाने से गंडकी ग्रामीण नगर पालिका 7 और 8 के निवासियों का पृथ्वी राजमार्ग से संपर्क टूट गया है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: नेपाल में भीषण बाढ़ के कारण बिहार में गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए वाल्मीकि नगर बैराज के सभी 36 गेट और कोसी बैराज के 20 गेट खोल दिए गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है।
4: सोशल मीडिया पर चल रही भ्रामक खबरों के बीच सुपौल जिला प्रशासन ने कहा है कि कोसी नदी के जलस्तर में सामान्य गति से वृद्धि हो रही है और कोसी बैराज पूरी तरह सुरक्षित है। स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। वहीं जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण और गोपालगंज जिलों में प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। जिला संसाधन विभाग ने इंजीनियरों को लगातार तटबंधों की निगरानी के निर्देश दिए हैं। सविता पारीख, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: उड़ीसा में आज एक बार फिर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है, क्योंकि उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बना मौसम राज्य को प्रभावित कर रहा है।
5: IMD ने कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश और कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश का अनुमान लगाया है। आज बरगढ़ के लिए रेड वार्निंग जारी की गई है, जबकि सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, देवगढ़, अनगोल, केंदुझर, सुवर्णपुर, नुआपड़ा, बलांगीर और कलाहंडी के लिए ऑरेंज वार्निंग है। IMD ने चेतावनी दी है कि भारी बारिश से संवेदनशील इलाकों में स्थानीय स्तर पर बाढ़, जल जमाव और नदियों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और उत्तराखंड में भी दिन के समय तेज बारिश होने की उम्मीद है। वहीं असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आज मूसलाधार बारिश हो सकती है। अमेरिका ने कल रात होर्मुज जलडमरू मध्य में लराक द्वीप पर ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमला किया। अमेरिकी सेना ने लराक द्वीप पर 2 ईरानी लॉन्चरों को निशाना बनाया, क्योंकि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के सैनिकों को होर्मुज जलडमरू मध्य में समुद्री बारूदी सुरंगों वाले रॉकेट लॉन्च करने की तैयारी करते देखा गया था। ईरान के सरकारी प्रसारक ने खबर दी है कि इस हमले में कई ईरानी सैनिक और आम नागरिक मारे गए और घायल हुए। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने जॉर्डन में किंग हुसैन और अल अजराक अमरीकी ठिकानों पर हमला किया। भारतीय नौसेना आज मुंबई स्थित निस्तार श्रेणी के दूसरे गोताखोरी सहायता पोत DSV निपुण को शामिल करने जा रही है।
6: विशाखापत्तनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित पोत निपुण रक्षा पोत निर्माण में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

0: एक विशेष पोत है जिसे गोताखोरी और गहरे समुद्र में अभियान सहायता के लिए तैयार किया गया है। यह आधुनिक गोताखोरी प्रणालियों और जलमग्न बचाव क्षमताओं से सुसज्जित है और समुद्र में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम करने वाले गोताखोरों को निरंतर सहायता प्रदान करने में सक्षम है। यह पोत पनडुब्बी बचाव अभियानों में भी भारतीय नौसेना की क्षमता को बढ़ाएगा। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT के संयुक्त दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर देश भर के 18 NIFT परिसरों से पास होने वाले छात्रों को डिग्रियां दी जाएंगी। पश्चिम बंगाल सरकार अभूतपूर्व कदम उठाते हुए जनता की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए सरकारी कार्यालयों में जनता दरबार शुरू करने जा रही है। मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने जिला और ब्लॉक स्तर के जमीनी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे प्रत्येक मंगलवार और गुरुवार को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक जनता से मिलें। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से 2 सितंबर तक मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के दौरे पर रहेंगे। अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान वे शिवपुरी, कोलारस और पिछोर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पहले दिन वे अछरौनी और बामौर कला में स्वास्थ्य केंद्रों, बिजली उप स्टेशनों और एक उप तहसील कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने जीत के साथ शुरुआत की है। भारत ने थाईलैंड को 94 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 9 विकेट पर 159 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने 64 रन की शानदार पारी खेली। थाईलैंड की पूरी टीम 15 ओवर और 3 गेंद में 65 रन पर सिमट गई। शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में कल एक सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार अलीपुरद्वार के रहने वाले 2 लोग मोटरसाइकिल से दार्जिलिंग घूमने आए थे। रास्ते में मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ गया और उसने सड़क पर चल रहे एक स्थानीय व्यक्ति को टक्कर मार दी। बाइक पर पीछे बैठे व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चलाने वाले और स्थानीय व्यक्ति को गंभीर चोटें आईं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बैंकिंग और क्रेडिट तक पहुंच के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने पर ज्ञानवर्धक परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0111-2331-4444। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं। नंबर है 9289094044। सवाल #AskAIR के साथ एक्स पर भी पोस्ट किए जा सकते हैं। ये आकाशवाणी है।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIR News हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है विशाल शर्मा।
3: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा के दौरान कई समझौतों पर हस्ताक्षर की खबर आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित की है। अमर उजाला लिखता है, लंबे समय तक भारत को यूरेनियम देगा उज्बेकिस्तान, 2030 तक सालाना द्विपक्षीय कारोबार $5 अरब पहुंचाने का लक्ष्य। रूस को पेट्रोल निर्यात करने वाला प्रमुख देश बना भारत, जनसत्ता की खबर है। पत्र लिखता है, भारतीय रिफाइनरी ने की पिछले 2 माह में रूस को करीब 10 लाख बैरल पेट्रोल की आपूर्ति। भारत द्वारा नेपाल को राहत सामग्री पहुंचाने से जुड़ा समाचार दैनिक जागरण ने सचित्र दिया है। पत्र लिखता है, नेपाल का सबसे भरोसेमंद मददगार बना भारत, 4 विमानों से 68.5 टन राहत सामग्री पहुंची, सुरंग बचाव विशेषज्ञ और फॉरेंसिक टीमें भी युद्ध स्तर पर जुटी। नक्सल मुक्त बस्तर को अब हथियार और विस्फोटक डंप फ्री करने में जुटी फोर्स, नारायणपुर के जंगल में राइफल बैरल ग्रेनेड लॉन्चर BGL विस्फोटक का डंप जब्त, राजस्थान पत्रिका की खबर है। देहरादून की गुनगुन ने कैंसर को हराकर सौंदर्य का ताज जीता। अहमदाबाद में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की सौंदर्य प्रतियोगिता P&I इंडिया 2026 का खिताब जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र के अनुसार 2027 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व।
1: धन्यवाद विशाल। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। सम्मेलन से इतर संगठन के कई नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर 7%

0: या उससे अधिक रहने की संभावना। नेपाल में बाढ़ के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 794 हुई, 2500 से अधिक लोग अब भी लापता। अमेरिकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में लराक द्वीप पर ईरान के रॉकेट लॉन्चरों पर हमले किए। जवाब में ईरान ने पश्चिम एशिया में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया। और दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने अपने आरंभिक मैच में थाईलैंड को 94 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi arrives in Bishkek on a two-day visit to Kyrgyzstan to attend SCO summit and meet several SCO leaders on the sidelines. Finance Minister Nirmala Sitharaman says India is likely to sustain economic growth rate of 7% or more in financial year 2026-27. Death toll in Nepal flash flood rises to 794, while more than 2,500 people still missing. U.S. forces strike Iranian rocket launchers on Larak Island in Strait of Hormuz. Iran attacks U.S. bases in West Asia in retaliation. And in women's cricket, India beat Thailand by 94 runs in their opening match of T20 Asia Cup 2026 in Dubai. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has arrived in Bishkek on a two-day visit to Kyrgyzstan. He was received at the airport by Kasymaliev Adilbek Alishovich, the chairman of the Cabinet of Ministers. A traditional Kyrgyz dance performance was also organized to welcome him.

0: in financial year 2026-27. Death toll in Nepal flash flood rises to 794, while more than 2,500 people still missing. U.S. forces strike Iranian rocket launchers on Larak Island in Strait of Hormuz. Iran attacks U.S. bases in West Asia in retaliation. And in women's cricket, India beat Thailand by 94 runs in their opening match of T20 Asia Cup 2026. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR पर, साथ ही FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 8:30:25 हुए हैं। अब प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं हरिजिंदर सिंह तेजा से उनके गाए कुछ भजन। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं सजग माथुर।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से। कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं हरिजिंदर सिंह तेजा से उनके गाए कुछ भजन। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं सजग माथुर।

0: सुगम संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। श्रोताओं, अभी आप सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुन रहे थे हरिजिंदर सिंह तेजा से उनके गाए कुछ भजन। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे सजग माथुर। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 8:58 होने को है। इस घंटे की खास खबरें आपसे कुछ ही समय में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित होंगी। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक पहुंचे हैं। वे आज और कल होने वाले 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और राष्ट्राध्यक्षों के सत्र में भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ओली दराजली दोस्तलिक मिलने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सम्मान भारत और उज्बेकिस्तान के बीच मजबूत दोस्ती, भरोसे और सांस्कृतिक रिश्तों का प्रतीक है। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कल सतना के चित्रकूट में अतिवृष्टि से प्रभावित इलाकों का जायजा लिया और लोगों से मुलाकात की। उन्होंने जिला प्रशासन को राहत और बचाव कार्य में किसी तरह की कमी नहीं रखने के निर्देश दिए। ओरछा में भाजपा के 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है। रामराजा सरकार की नगरी में हो रही इस बैठक में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव, पार्टी के कई बड़े नेता और पदाधिकारी शामिल हुए। उज्जैन में सावन भादो मास की परंपरा के तहत भगवान महाकाल की 5वीं सवारी आज निकलेगी। इस बार सवारी की खास थीम 84 महादेव पर आधारित है, जिसमें भविष्य का केंद्र रहेंगी। प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण अब तय समय सीमा में निपटारे जाएंगे। देरी होने पर संबंधित अधिकारी कर्मचारी की जवाबदेही तय होगी। और भारत ने महिला T20 एशिया कप 2026 में शानदार शुरुआत करते हुए थाईलैंड को 94 रन से हरा दिया। दुबई में पहली बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 159 रन बनाए। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR पर, साथ ही FM बैंड 101.8 MHz पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 9 बजे हैं। लीजिए, प्रस्तुत है सूचना, समाचारों और जानकारी पर केंद्रित आपका पसंदीदा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर।

श्रोताओं, कार्यक्रम लेकर उपस्थित हूं मैं आपका दोस्त अनुराग शर्मा। आज कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक बेहद ही खास जानकारी के साथ, जो हम सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वो जानकारी है भारतीय रेल से जुड़ी हुई। फरीदाबाद रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य के चलते ग्वालियर से दिल्ली की ओर जाने वाली जो ट्रेन्स हैं, उन 20 ट्रेन्स का जो स्टॉपेज है वो फरीदाबाद स्टेशन पर निरस्त कर दिया गया है और लगभग 43 ट्रेनों के इस दौरान प्लेटफॉर्म को चेंज किया जाएगा फरीदाबाद पर। तो इससे निश्चित ही थोड़ी बहुत परेशानी तो होगी, लेकिन डेवलपमेंट है, थोड़ी बहुत परेशानी उठाई जा सकती है। आप अब जब भी सफ़र करें फरीदाबाद की तरफ, या आपका स्टॉपेज यदि फरीदाबाद है, तो NTES पर ट्रेन की सही जानकारी देखकर ही ट्रैवल करें, क्या वो ट्रेन फरीदाबाद रुक भी रही है या नहीं। उसमें काफ़ी सारी ट्रेनें हैं जिनका स्टॉपेज खत्म गया है, जिसमें से दिल्ली की तरफ से आने वाली पंजाब मेल, श्री माता वैष्णो देवी कटरा साप्ताहिक एक्सप्रेस, श्री माता वैष्णो देवी कटरा जबलपुर एक्सप्रेस, अंडमान हिमसागर, ये फरीदाबाद स्टेशन पर नहीं रुकेंगी। वहीं अमृतसर इंदौर एक्सप्रेस, कुरुक्षेत्र खजुराहो, हरिद्वार बांद्रा टर्मिनस, मालवा फिरोजपुर नांदेड़, हरिद्वार बांद्रा टर्मिनस, ऊना हिमाचल इंदौर एक्सप्रेस 1 सितंबर से 15 अक्टूबर तक फरीदाबाद नहीं रुकेंगी। तो असुविधा से बचने के लिए अच्छा है कि पहले आप ये सारी जानकारी ठीक से भारतीय रेल की वेबसाइट पर चेक कर लें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज आपको बताते हैं आज का दिवस विशेष। आज भारत के पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न स्वर्गीय श्री प्रणब मुखर्जी की पुण्यतिथि है। आपका जन्म 11 दिसंबर 1935 को ग्राम मेराती वीरभूम जिला, यानी ब्रिटिश इंडिया का जो टाइम पीरियड था उसमें हुआ था। आपने कलकत्ता विश्वविद्यालय से इतिहास, राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ कानून की डिग्री भी हासिल की है। आप बंगीय साहित्य परिषद के ट्रस्टी और अखिल भारतीय भारत बंग साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष भी रह चुके थे। 1969 में राज्यसभा के सदस्य के रूप में आप पहली बार निर्वाचित हुए और 1982 में वित्त मंत्री रहे। आप 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में आपने कार्य किया। 8 अगस्त 2019 को भारत रत्न से आपको नवाजा गया। 31 अगस्त 2020 को आपकी मृत्यु हुई। आपकी पुण्यतिथि पर हम आपको शत-शत नमन करते हैं। श्रोताओं, इसी के साथ ही आज विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति दिवस मनाया जाता है। ये क्या होता है, आइए आपको बताते हैं। 1952 के उस दिन को ये चिन्हित करता है जब औपनिवेशिक काल के आपराधिक जनजाति अधिनियम के तहत गैर अधिसूचित जनजातियों पर आपराधिक ब्रांडिंग और प्रतिबंधों को औपचारिक रूप से निरस्त कर दिया गया था। दरअसल ये क्या कहना चाहते हैं कि 1952 में हमने एक ब्रिटिश इंडिया का वो एक्ट समाप्त किया जिसमें विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जो जनजातियां होती थीं वो उनको क्रिमिनलाइज करती थीं। मतलब ब्रिटिश इंडिया ने उनको अपराध की श्रेणी में डाला और जब भारत आज़ाद हुआ तो हमने 1952 में उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया, यानी अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया। इसलिए ये जो दिवस है वो इसकी याद दिलाता है। आज के दिन हाशिए पर स्थित जनजातियों को मुख्य धारा से जोड़ना, शैक्षिक और आवास सहायता प्रदान करना और उनके सामाजिक योगदान को सम्मानित करना विशेष महत्व है। मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य आज के दिन कल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन भी करते हैं।

श्रोताओं, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको हम बताने जा रहे हैं पद्मश्री श्रीमती राहीबाई सोमा जी के बारे में। पद्मश्री श्रीमती राहीबाई सोमा जो हैं, आपके परिवार के लोग ना कुछ वर्ष पहले तक लगातार बीमार पड़ रहे थे। आपने सोचा कि हम सब तो घर का बना ही भोजन करते हैं, बाहर का कुछ भी नहीं खाते, फिर भी इतना सब करने के बाद, डाइट सही लेने के बाद, ठीक प्रकार से भोजन करने के बाद भी ऐसा क्यों है कि पूरा परिवार लगातार बीमार पड़ता जा रहा है। तब आपको आपके पिताजी की एक बात याद आई, जिसमें आपके पिताजी ने आपको सिखाया था कि किस प्रकार से जो फसल के बीज हैं उनको संरक्षित किया जाता है, यानी कि बीजों को प्राकृतिक रूप से बिना हाइब्रिडाइजेशन

0: और केमिकल प्रोसेस के कैसे संरक्षित कर सकते हैं आपने अपने पिताजी से सीखा था। आपने अपने पिताजी की बताई तकनीक से बीजों को संरक्षित करना प्रारंभ किया। शुरुआत में तो जैसा आपको पता है, कोई भी नया काम शुरू करते हैं तो लोग आलोचना ही करते हैं। शुरुआत में आपकी बहुत आलोचना आपके आसपास के लोगों ने की, आपको कई बार तानों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन आपने हार नहीं मानी और आपने बीजों को संरक्षित किया। और वो जो बीज आपने संरक्षित किए थे, उन्हीं बीजों से आपने अपनी फसल उगाना शुरू की। उसका परिणाम ये निकला कि 3 साल तक तो जो पक्षी आते थे और दाना चुग के चले जाते थे, 3 साल तक ऐसा हुआ कि आपने जो बिना हाइब्रिडाइजेशन वाले बीज का इस्तेमाल किया था, उस पर एक भी पक्षी दाना चुगने के लिए नहीं आया। आपने फिर भी हिम्मत नहीं हारी, लगातार आप खेती करती रहीं और चौथे वर्ष अचंभित आप रह गईं जब आपका सारा का सारा जो बाजरा था वो पक्षी आकर खा गए और उसके ठीक बाजू में खड़ी हुई जो हाइब्रिड फसल थी उसका एक भी दाना उन पक्षियों ने नहीं खाया। पारंपरिक और केमिकल लेस तकनीक वाले बीजों की फसलों से आपका परिवार लगातार स्वस्थ रहने लगा और इस तकनीक को आपने अपने आसपास के 3,500 से अधिक किसानों को ट्रेनिंग दी और एक सिंपल सा रूल बनाया। अब वो नियम क्या बनाया कि यदि कोई आपसे 1 किलो बीज लेगा तो फसल के बाद वो 2 किलो बीज वापस लौटाएगा। निःशुल्क आप बीज उपलब्ध कराती थी, 1 किलो बीज लीजिए, फसल होने के बाद 2 किलो बीज वापस लौटा दीजिए, ताकि और यदि किसी व्यक्ति को उन बीजों की आवश्यकता पड़े तो वो उसका इस्तेमाल कर सकें। देखते ही देखते आपने 116 वैरायटी के 54 फसलों की बीज बैंक बनाई। आपको भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। साथ ही आपको लोग सीड मदर ऑफ इंडिया यानी भारत की बीज माता कहकर भी संबोधित करते हैं।
1: आपकी चाय।
2: EMI किराया कैसे मैनेज करूं?
3: एक जुगाड़ है, अच्छा पैसा मिलेगा।
2: कैसे?
3: अपना बैंक डिटेल्स दो, कुछ लोग पैसे भेजेंगे, उनके बताए अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, कमीशन मिलेगा।
2: इतना इजी?
1: काहे का इजी, ये तो मनी म्यूल है।
2: इल्लीगल पैसा घुमाते हैं दूसरे के अकाउंट से, अपराध है, जेल हो सकती है।
1: ना भाई ना।
4: अपने बैंक अकाउंट को सेफ रखें, किसी को यूज ना करने दें, RBI कहता है।
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: श्रोताओं, आपने नोटिस किया होगा कि यदि कहीं कोई पानी की जो पाइपलाइन है उसमें लीकेज हो या वो खुली रह जाए, तो उसके लीक होते रहते पानी के कारण उसके आसपास पेड़ पौधे जो है वो स्वतः उगना शुरू हो जाते हैं। हम उनका कहीं रोपण नहीं करते, लेकिन वो फिर भी उस पाइपलाइन के आसपास अपने आप हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? एक बार रिसर्च की गई तो पाया गया कि कैटरपिलर पेड़ों की पत्तियां खाता है, और यदि इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली जाए, मतलब कैटरपिलर यदि पेड़ों की पत्तियां खा रहा हो और अपने फ़ोन से आप यदि उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर लें और अन्य पेड़ों के पास जाकर उस वीडियो को प्ले कर दें, तो आप हैरान रह जाएंगे कि पेड़ जो है वो स्वतः ही ऐसे केमिकल रिलीज करने लगता है जिससे पत्तियां जो हैं वो कड़वी हो जाती हैं, ताकि कैटरपिलर उन्हें खा ना पाए। तो क्या पेड़ों के पास भी सेंस और ब्रेन होता है? बॉटनिस्ट ने रिसर्च की और उन्होंने ये पाया कि प्लांट इंटेलिजेंस नामक एक चीज़ है जो एग्जिस्ट करती है। मतलब पेड़ों के पास भी सेंस होता है और उनके पास भी इंटेलिजेंस होती है। अब उनके पास 15 से 20 तरह के अलग अलग सेंसेस होते हैं, बस उसके डिज़ाइन को प्रोसेस करने के लिए एक सिंगुलर ब्रेन नहीं होता। जैसे सेंसेस हमारे पास है, मनुष्य के पास भी सेंसेस हैं, लेकिन उसको सेंट्रलाइज्ड करने के लिए हमारे पास एक ब्रेन काम करता है, लेकिन पेड़ पौधों के पास एक सिंगुलर ब्रेन नहीं होता, सेंसेस होते हैं। होता ये है कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स ऑफ डिसीजन मेकिंग पेड़ पौधों के अंदर काम करता है। इसका मतलब है कि उनके पास एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम और सेंस होते हैं। अब इसको थोड़ा आसान भाषा में समझाऊं तो जैसे मनुष्य के पास एक ब्रेन है जो हमारी सारी क्रियाओं को, हमारे सारे क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है, सारी भावनाओं को, और हमें ऑर्डर देता है कि हमें क्या करना चाहिए किस सिचुएशन में, उसी प्रकार से पेड़ों के पास हर डाली का एक खुद का ब्रेन होता है जो सेंस को जनरेट करता है, अडॉप्ट करता है और बताता है कि पेड़ को फिर क्या करना

0: चाहिए, इसे हम कह सकते हैं डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम।
1: भूख लगी जोरों की भूख लगी, मुर्गे की बांग हमें कोयल की भूख लगी।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। CSIR, आपने ठीक सुना श्रोताओं, काउंसिलिंग ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान ने हिमाचल प्रदेश के पालमपुर जिले में नीदरलैंड के एक पौधे को लगाया है। अभी जानना इसलिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि ये जो पौधा है ये भारत में पहली बार लगाया गया, मतलब हिमाचल में पहली बार लगाया गया। भारत में लगातार इसको लगाने का प्रयास हो रहा था और इसमें पहली बार जो है वो फूल खिला है। 20 से 25 सालों तक ये पौधा जीवित रह सकता है और हर साल इसमें फूल आते हैं जो काफ़ी महंगे होते हैं, जिससे वहाँ रहने वाले किसानों को बहुत फ़ायदा हो सकता है। इसी को देखते हुए CSIR ने हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ ये जो इनोवेशन है वो किया है। सफ़ेद और पिंक कलर का इसका एक फूल होता है। साइंटिस्ट ने लद्दाख, लाहौल और नैनीताल में कोशिश की लेकिन वहाँ सफलता नहीं मिली और पालमपुर, हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में ही सफलता वैज्ञानिकों को हाथ लगी है। यह जो फ्लावर है वो ऑर्नामेंट फ्लावर इसको कहा जाता है और यह बुके और लग्जरी वेडिंग्स में इसका उपयोग किया जाता है। हर साल नीदरलैंड से हम इसे इम्पोर्ट करते हैं और इतना महंगा हमें ये पड़ता है कि एक फूल की कीमत विद वन स्टेम, यानी एक जो स्टेम है उसकी एक जो शाखा है उस पर एक ही फूल लगता है। और बहुत सरल भाषा में कहूँ तो आपने सूरजमुखी का फूल देखा होगा, सूरजमुखी कैसे एक डंडी पर एक ही फूल खिलता है, उसी प्रकार से ये होता है कि एक स्टेम के ऊपर एक ही फूल होता है। तो इस प्रकार से उसकी एक स्टेम और एक फूल की कीमत जो नीदरलैंड से इम्पोर्ट करना पड़ता था तब हमें 300 से 400 रुपये पड़ती थी और जब ये भारत में ही इसका प्रोडक्शन होने लगेगा तो इसकी कीमत 100 से 150 रुपये पर स्टेम तक आ जाएगी, जिससे भारत की बहुमूल्य जो विदेशी संपदा है उसकी बचत होगी। 3-4 साल में ये पौधा तैयार हो जाता है और उसके 20-25 साल तक इसमें फ्लावर्स आते हैं। श्रोताओं, फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है और हिमाचल जैसे प्रदेश जहाँ की इकोनॉमी जो मुख्यतः टूरिज्म और टूरिज्म पर डिपेंडेंट है, वहाँ ये खेती बेहद ही कारगर साबित हो सकती है, इसलिए हिमाचल प्रदेश का चयन सबसे पहले इसके लिए किया गया है।

श्रोताओं, अब जाते जाते हम आपको एक और जानकारी देना चाहते हैं, वो है एक रोजगार सूचना। यूपीएससी ने यानी संघ लोक सेवा आयोग ने एपीएफसी यानी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के 80 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदनकर्ता के लिए न्यूनतम आयु, न्यूनतम ग्रेजुएट होना आवश्यक है, और न्यूनतम आयु जो रखी गई है आवेदनकर्ता के लिए वो 18 वर्ष है। ये टेंटेटिव है, इसमें बदलाव करने का यूपीएससी पूरा अधिकार रखती है। और जो अधिकतम आयु है वो 35 से 40 वर्ष, अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग रखा गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 11 सितंबर 2026 है। यदि आप चाहें तो यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। अब श्रोताओं, समय हमें अनुमति नहीं दे रहा कि आपके साथ चर्चा को आगे जारी रखा जाए। कार्यक्रम में आपके साथ मैं था आपका दोस्त अनुराग शर्मा। कल आपसे पुनः मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे सूचना समाचारों और जानकारी पर केंद्रित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज हम आपको सुनवा रहे हैं बलराम पाठक से कोमल ऋषभ असावरी राग में सितार वादन।

श्रोताओं, अभी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे बलराम पाठक से सितार वादन राग कोमल ऋषभ असावरी में।

0: फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुनते हैं रविवार से शुक्रवार तक सुबह 10:05 से सुबह 11 बजे तक। यदि आप भी अपनी फरमाइश पर कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9425702768। एक बार फिर से सुनिए 9425702768। तो कार्यक्रम सुनिए और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी फरमाइश भी हम तक पहुंचाइए।
1: प्रदूषित पानी पीने से हम हो सकते हैं बीमार,
2: फैल सकती है महामारी, खतरे में पड़ सकती है जिंदगी,
1: छीन सकती है खुशियाँ हमारी, इसलिए पानी के स्रोत को रखें हम साफ,
2: फैलाएं नहीं गंदगी उसके आसपास।
1: पानी
3: आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है, प्रातः के 10 बजने को है। जिले की चिट्ठी का अनुप्रसारण अब से कुछ ही समय में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जाएगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है नर्मदापुरम जिले की चिट्ठी। आलेख तनुज तिवारी, वाचन स्वर दीपा सिंह। नर्मदापुरम जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान की। इस अभियान के तहत जिले में हर शुक्रवार जन संवाद और समाधान शिविर लगाए जा रहे हैं, जिसमें लोगों की समस्याएं सुनी जा रही हैं। अभियान के तहत अधिकारियों ने स्कूल, आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य केंद्र और सहकारी समितियों का भी निरीक्षण किया। इसी कड़ी में संत रविदास जी की 650वीं जयंती के मौके पर नर्मदापुरम में कलश वंदन और समरसता संकल्प अभियान शुरू हुआ। काशी से आई

कलश का पूजन कर उसे रथ के जरिए जिले के अलग अलग इलाकों के लिए रवाना किया गया। ये कलश रथ 10 सितंबर तक गांव-गांव पहुंचेगा और लोगों को संत रविदास जी की समानता, सेवा और भाईचारे का संदेश देगा। वहीं दूसरी तरफ जिले में बारिश का दौर रुक रुक कर जारी है। इस सीजन में अब तक औसतन 27 इंच बारिश हुई है, जो पिछले साल की तुलना में करीब 16 इंच कम है। प्रशासन ने बाढ़ और जल भराव वाले इलाकों पर नजर रखने के साथ राहत और बचाव की तैयारियां भी पूरी कर रखी है। वहीं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में रक्षाबंधन पर चलाए गए बाघ रक्षा सूत्र अभियान में करीब 11,000 लोगों ने हिस्सा लिया। ग्रामीणों और स्कूली बच्चों ने बाघ वाली राखी बांधकर वन्य जीवों की सुरक्षा का संकल्प लिया। तकनीक की बात करें तो नर्मदापुरम के शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में 4 सप्ताह की रोबोटिक्स और इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंटर्नशिप पूरी हुई। इनमें 54 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया और रोबोट बनाने से लेकर माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग तक का प्रैक्टिकल प्रशिक्षण लिया। किसानों के लिए अच्छी खबर है, इटारसी में हुए बलराम कृषि महोत्सव में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सहकारिता विभाग की नई कवच योजना की जानकारी दी। इससे करीब 5,000 ऐसे किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिनके ऋण खातों में गड़बड़ी के कारण वे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे थे। धान और सरसों को भावांतर योजना में शामिल करने के साथ शेडनेट और पॉलीहाउस के लिए 50% तक अनुदान की जानकारी भी दी गई। बारिश के बीच सोहागपुर के ग्राम मगरिया के 75 एकड़ में फैली गौशाला में निराश्रित गोवंश के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। यहां 250 से ज्यादा गोवंश की देखभाल हो रही है और सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे और वॉच टावर लगाए गए हैं। प्रशासन ने इसे ग्रामीण और गौ आधारित पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की तैयारी कर रहा है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर नर्मदापुरम में विश्व स्तनपान सप्ताह के दौरान जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए। अस्पतालों और आंगनबाड़ी केंद्रों में माताओं को बच्चे के जन्म के बाद 6 महीने तक सिर्फ स्तनपान कराने की सलाह दी गई। साथ ही कंगारू मदर केयर और बच्चों के बीच उचित अंतर रखने की जानकारी भी दी गई। जिले में सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का समय पर निराकरण करने वाले अधिकारियों को कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने सम्मानित किया। 85% से ज्यादा वेटेज स्कोर हासिल करने वाले अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र दिए गए। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस पर बांद्रा भान के वृद्धाश्रम में विधिक साक्षरता शिविर लगाया गया। इसमें वरिष्ठ नागरिकों को उनके कानूनी अधिकार, भरण पोषण से जुड़े कानून और मुफ्त कानूनी सहायता की जानकारी दी गई। इटारसी के 2 सरकारी कॉलेजों में विद्यार्थियों के लिए डिजिटल स्किल्स, व्यक्तित्व विकास और पर्यावरण से जुड़े कार्यक्रम हुए। कन्या महाविद्यालय में छात्राओं को डिजिटल और कम्युनिकेशन स्किल्स की जानकारी दी गई। वहीं गांधी स्मृति कॉलेज के एनसीसी कैडेट्स ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधे लगाए और उनकी देखभाल का संकल्प लिया। भारत निर्वाचन आयोग की विशेष टीम ने नर्मदापुरम जिले में 3 दिन रहकर मतदाता सूची से जुड़े कामों की समीक्षा की। टीम ने पिपरिया, सुहागपुर और सिवनी मालवा में बीएलओ के साथ बैठक कर निर्वाचक नामावली के काम की जानकारी ली। इटारसी के शासकीय आदर्श आवासीय विद्यालय तवानगर ने स्वच्छ और हरित विद्यालय सर्वे में प्रदेश में 5वां स्थान हासिल किया। आदिवासी बहुल केसला विकासखंड का ये जिले का इकलौता चयनित स्कूल है। स्वतंत्रता दिवस के जिला स्तरीय कार्यक्रम में स्कूल के प्राचार्य और अधीक्षक को इसका प्रमाण पत्र दिया गया। एचआईवी और एड्स को लेकर जिले में सघन जागरूकता अभियान 3.0 शुरू किया गया है। 12 अगस्त से शुरू हुआ यह अभियान 12 अक्टूबर तक जिले के अलग अलग इलाकों में चलेगा। अभियान में लोगों को एचआईवी संक्रमण से बचाव और इससे जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने की जानकारी दी जा रही है। और आखिर में बात पर्यटन की। नर्मदापुरम में बूझो तो जानो, फिर देखो अपना प्रदेश 2026 जिला स्तरीय पर्यटन क्विज आयोजित हुई। इसमें कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों ने प्रदेश के इतिहास, संस्कृति और पर्यटन से जुड़े सवालों के जवाब दिए। बेहतर प्रदर्शन करने वाली टीमों का चयन अब राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया गया है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्ज़ और मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR पर, साथ ही FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः 10:05:15 हुए हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। श्रोताओं, यदि आप भी हमें अपनी फरमाइशें व्हाट्सएप के जरिए भेजना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए। हमारा नंबर है 9425702768। एक बार फिर से सुनिए, 9425702768। कार्यक्रम का पहला फरमाइशी गीत है फिल्म जिस देश में गंगा बहती है से। इस गीत को लिखा है शैलेंद्र ने, संगीत है शंकर जयकिशन का, गायक हैं मुकेश कुमार और लता मंगेशकर। फरमाइश करता हैं आप सभी, आप हैं दिल्ली से शिवारानी शर्मा,

अतुल, आभा, प्रनीमा, अर्नेश, पीयोषा, कॉस्मो आनंदा ग्वालियर से डॉक्टर सीमा शर्मा, निकिता, डॉक्टर ब्रिजेश शर्मा, अनिमेश, ईशान, सुनील, पिंकी, बलजीत, सुमिता, गणेश और भाविका। तो आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म जिस देश में गंगा बहती है से ये गीत।

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, फिल्म आर पार से। इस गीत को लिखा है मजरूह ने, संगीत है ओपी नैयर का, गायक कलाकार हैं गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी। फरमाइश करता है आप सभी, आप हैं बद्दी हिमाचल प्रदेश से जयंत गुप्ता, गांधीनगर ग्वालियर से जय कुमार गुप्ता, रजनी गुप्ता, साथ ही पुष्पा सिसोदिया, डॉक्टर ज्योति कुशवाहा, अनुभव और अनुभूति सिसोदिया, प्रेमनगर ग्वालियर से। आप तो आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म आर पार का ये गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ग्वालियर का प्रसारण। इस समय प्रसारित हो रहा है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। श्रोताओं, यदि आप भी हमें अपनी फरमाइशें व्हाट्सएप के जरिए भेजना चाहते हैं तो हमारा नंबर नोट कीजिए। हमारा नंबर है 9425702768। पुनः सुनिए, 9425702768। इस नंबर पर आप हमें अपना नाम, अपना पता, फिल्म और गीत का नाम लिख भेजिए। कार्यक्रम की अगली फरमाइश आई है आप सभी की। आप हैं ग्राम संदलपुर आतरी से कालीचरण यादव, चांदनी यादव, दीपक यादव और उर्मिला यादव, नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डाबर खुश नसीब, अब्दुल हक डाबर, जियाउल हक, मोहम्मद उमर डाबर, राजेंद्र कटारे, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, पायल जोशी, रिंगिनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता, एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट और अंकित कांगड़ा, सहाबर रोड गंज डुंडवारा से मोहम्मद उस्मान अंसारी, कलीम अंसारी, शमशुल कमर राही, पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगला और राजेंद्र शाह। तो आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद पर मोहम्मद रफ़ी, सुमन कल्याणपुर का गाया, शंकर जयकिशन का संगीत, शैलेंद्र का लिखा, फिल्म ब्रह्मचारी का ये गीत।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म गाइड से ये गीत। इस गीत को लिखा था शैलेंद्र ने, संगीत था एस डी वर्मन का, गायक थी लता मंगेशकर। पसंद करता थे आप सभी, आप हैं रोहिदास चौक पंढरपुर सिटी से प्रशांत शिंदे, सुनीता शिंदे, यशराज शिंदे, ऋषि शिंदे और कृष्णा घुटके, हरदोई रोड लखनऊ उत्तर प्रदेश से खिल्लू परवेज, इमरान अनाज, नवाजिश शेख, दानिश शेख, अमन अफरीदी, शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकर, अमर ताम्रकर, दिलीप वर्मा, संजय सोनी, अरुण कनौजिया, पवन यादव, संजीव वर्मा, विपिन गुप्ता, रज्जन रजक, लालू, सोना, मोना, हनी और यश, झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया, गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी और मनीष पवार, रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल, खलीफों की बावड़ी से वक्ष खलीफा।
1: सो योर प्लेस और माइन।
2: उसके पहले ये बताओ, तुम्हारे पास कॉन्डम है?
1: कॉन्डम?

0: लेकिन हम
1: तो क्या हुआ, ओरिएंटेशन चाहे जो भी हो, असुरक्षित यौन संबंध से एचआईवी एड्स और बाकी यौन संक्रमणों का खतरा हर स्थिति में बराबर ही रहता है, खासकर जब एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ यौन संबंध कर रहे हो।
0: अरे तुम जानते हो मैं वैसा नहीं हूँ, लेकिन हाँ सुरक्षा इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं समझ गया हूँ।
2: आप भी ये बात याद रखें, संयम, वफादारी और कॉन्डम अपनाएं, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से। कार्यक्रम में अगली फरमाइश है आप सभी की। आप हैं भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छिंपा, ईशान छिंपा, पूजा परिहार। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, रॉबिन राणा। आदर्श नगर मलौट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा और निवान शर्मा। आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही, महराज जहां। सतना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक और महेश मलिक। मजनू कटीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा। राजकोट गुजरात से रश्मि झरना और भरत कुमार। भटिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नागर, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लकी नारंग, तानिया नारंग। जिला कासगंज गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर, लुबना और आलिया। कुम्हारहेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, साइना हसन, अक्सा अदीब, नाजिया आफिया, इब्राहिम सद्दाम। गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी। बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता बमारकंडे, संजय बमारकंडे और किट्टू। डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर, कुमार गौरव मंदूरकर। आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं फिल्म ड्रीम गर्ल का ये गीत। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, गायक हैं किशोर कुमार।

होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म सीता और गीता से ये गीत। इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीत था राहुल देव वर्मन का, गायक थी आशा भोसले और लता मंगेशकर। फरमाइश करता थे आप सभी, आप हैं जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा, राजकुमार वोडाना, सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदनी, रोहित, रितु और मुकेश जगताप, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सीटो दीवाना, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार, नांदेड़ जिला ये ताला महाराष्ट्र से शंकर लाल जायसवाल, गणेश लाल, शुभम प्रसाद, अर्णव, राखी, दुर्गेश्वरी और तृप्ति जायसवाल, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविक सिक्का, खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा, नानक चंद मल्होत्रा, मालवा रेडियो श्रोता संघ ग्राम हिंगड़ी आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से जगदीश धाकड़ नायमा, रंजुबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़, शिवांगी धाकड़, विदर्भ श्रोता क्लब जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले, प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन, मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज, नवेद हसन, सुहेल हसन, अनव यशफ, रसीद वारसी, किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से जुबैर अली, सबीहा अंजुमन, करणवीर हाउस भुचो कैंचियां भटिंडा पंजाब से परम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, कुलदीप, सिमू, एकम, दमन और अभिजोत। आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम, व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी।

के ग्वालियर केंद्र से। श्रोताओं, कार्यक्रम की अगली फरमाइश है आप सभी की। आप हैं लाल माता सुदामा नगर रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से, हर्षिता रामेश्वर परमेश्वर मीनाक्षी कान्हा मनोहरबाई बागरी प्रभुलाल बागरी, बागरी मोहल्ला रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से ही, मन भावन नैना सत्यनारायण कपिल शोभा फुनदीबाई बागरी, हिंगोली महाराष्ट्र से साजी बोटखे नंदा बोटखे हनुमान बोटखे उत्तम जमताड़े, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव ज्योति यादव ओजस्वी यादव, अनारकली बाजार जगराव पंजाब से सुनील पाठक कमल पाठक दीपिका मल्होत्रा गाव्या मल्होत्रा सुच्चा सिंह पाठक विनोदपुरी जयपाल यादव, गोवर्धन कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन वीना मस्कीन आशीष राजा चैतन्य मस्कीन मेघा मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना रचिता खुराना केशु रिधान खुराना, गंज डुंडवारा से फैजान खान अनु खान, धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी नौशाद सलमानी, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा ऋतिक मल्होत्रा प्रतीक मल्होत्रा अनिल शर्मा जयवीर सिंह डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। आप सभी सुनना चाहते हैं अपनी पसंद पर आशा भोसले को, वप्पी लहरी का संगीत, अनजान का लिखा, फिल्म नमक हलाल में।

0: फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुनते हैं रविवार से शुक्रवार तक सुबह 10:05 से सुबह 11 बजे तक। यदि आप भी अपनी फरमाइश पर कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9425702768। एक बार फिर से सुनिए 9425702768। तो कार्यक्रम सुनिए और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी फरमाइश भी हम तक पहुंचाइए।
1: अरे क्या बात है, आज तो तुम बड़ो ही नोनो गीत गा रही हो। और जो तो वही गीत है जाकी हम फरमाइश की चिट्ठी लिखकर भेजा था थे और हमारी पसंद को लोक गीत हमारी जीजी हमें लोक माधुरी में भी सुनवा देती थी।
2: हाँ, खूब ही सही चीनो तुमने, जो वही लोक गीत है और आज हम जी को जासे गा रहे कि आज हमारा मन बहुत ही हुलास में है।
1: काय ऐसो का होगा जीजी?
2: अपना जो पसंदीदा कार्यक्रम लोक माधुरी को हम सभी सुन सकते हैं हर सोमवार शाम 7:21 से 8 बजे के बीच।
1: जीजी जाके लाने अपने को चिट्ठी कैसे भेजनी होगी?
2: अरे चिट्ठी विट्ठी छोड़ो, अब हम हो गए डिजिटल, सो अब हम लिख के भेजेंगे अपनी फरमाइश व्हाट्सएप पे।
1: तो जीजी जाको व्हाट्सएप नंबर का है?
2: डायरी तनक खोलो और जल्दी से लिख लो 9425702768। तो याद भाव कि नहीं, तनक बताओ तो जल्दी से
1: 9425702768।
2: तो आप अपनी पसंद को लोकगीत के बोल और कलाकार को नाम हमें जा नंबर पे व्हाट्सएप करो को आपकी पसंद को लोकगीत लोक माधुरी कार्यक्रम में जरूर ही सुनवाएं।
1: तो सुनना न भूलें हर सोमवार शाम को 7:21 से 8 बजे के बीच लोक माधुरी।
0: पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल न करें। क्या आप जानते हैं कि पॉलीथीन की ये थैलियां कभी नष्ट नहीं होती, जमीन में गाड़ने पर भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट करती हैं और यदि इन्हें जलाया जाए तो इनसे निकलने वाला जहरीला धुआं न केवल वायु को प्रदूषित करता है बल्कि ओजोन परत को भी नुकसान पहुंचाता है। तो अभी से करें पॉलीथीन बैग्स को टाटा बाय बाय खरीदारी के

श्रोताओं, फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 10:58 होने को हैं। इस घंटे की खास खबरें अब से कुछ ही समय में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित होंगी। श्रोताओं, प्रातः 11 से सभा की समाप्ति तक सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया कार्यक्रमों की प्रतीक्षा करें।

गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्व राष्ट्रपति डॉ प्रणब मुखर्जी की पुण्यतिथि पर अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि पूर्व राष्ट्रपति एक बेहतरीन प्रशासक और विद्वान थे जिन्होंने सार्वजनिक जीवन में अपनी दशकों लंबी यात्रा के दौरान देश और उसके संवैधानिक मूल्यों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का उदाहरण पेश किया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से 2 सितंबर तक शिवपुरी के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे शिवपुरी, कोलारस और पिछोर में कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। नेपाल में आई भीषण बाढ़ के कारण बिहार में गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए वाल्मीकि नगर बैराज के सभी 36 गेट हैं और कोसी बैराज के 20 गेट खोल दिए गए हैं। प्रदेश में 12वीं में 75% या उससे ज्यादा अंक लाने वाले विद्यार्थियों के खातों में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल लैपटॉप खरीदने के लिए 25,000 रुपये की राशि ट्रांसफर करेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने श्रीलंका क्रिकेट में प्रशासन में सरकार के हस्तक्षेप के कारण 2027 में होने वाली पहली महिला चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी का अधिकार श्रीलंका से वापस ले लिया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब सुनते हैं अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे जी राघवेत राघवेंद्र प्रसथ का कर्नाटक वोकल।
1: ये आकाशवाणी है। आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में लीजिए प्रस्तुत है जी राघवेंद्र प्रसाद का वायलिन वादन। जी राघवेंद्र प्रसाद कर्नाटक वायलिन वादक हैं और ये आकाशवाणी और दूरदर्शन के ए ग्रेड कलाकार हैं। दिल्ली में जन्मे जी राघवेंद्र प्रसाद ने कर्नाटक वायलिन वादन की बारीकियां अपने गुरु कलैमा मणि श्री वीएस के चक्रपाणी जी के मार्गदर्शन में सीखी हैं। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से कर्नाटक संगीत में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है, जहां आप रजत पदक विजेता रहे हैं। राघवेंद्र प्रसाद एकल वादन के साथ साथ एक सिद्धहस्त संगतकार के रूप में भी संगीत जगत में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए आपको युवा कलाकार छात्रवृत्ति से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त आपको सन 2010 में CCRT छात्रवृत्ति, 2019 में युवा पुरस्कार और युवा उभरते कलाकार का खिताब, 2022 में नाद लय शिखामणि तथा 2023 में संस्कृति मंत्रालय एवं आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा संयुक्त रूप से गंधर्व विज्ञ सम्मान से नवाजा गया है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी कला का परचम लहराते हुए आपने रूस में आयोजित फेस्टिवल ऑफ इंडिया में भाग लिया और स्विट्जरलैंड के रीटबर्ग संग्रहालय में प्रस्तुतियां

0: देश के प्रतिष्ठित मंचों जैसे इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, जालंधर का प्रसिद्ध हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन, राष्ट्रपति भवन, टीटीडी नाद नीराजनम, वाराणसी का श्री संकट मोचन मंदिर स्पिकमेके तथा तिरुवैयारू में त्यागराज आराधना महोत्सव में भी इनकी प्रस्तुतियां सराहनीय रही हैं। एक कुशल संगीतकार के रूप में राघवेंद्र ने पद्मभूषण श्री टीएन शेष गोपालन, मल्लाडी ब्रदर्स, नेवेली श्री संथान गोपालन, श्री ओएस अरुण, मामलम सिस्टर्स तथा डॉक्टर के वागीश जैसे संगीत जगत के शीर्ष दिग्गजों के साथ सफलतापूर्वक वायलिन संगत की है। आइए सुनते हैं जी राघवेंद्र प्रसाद का कर्नाटक वायलिन वादन। आपके साथ मृदंगम पर यशवंत हम्पीहोली और घटम पर श्री वरुण राजशेखरन संगत कर रहे हैं। जी राघवेंद्र प्रसाद अपने कार्यक्रम का आरंभ राग मणिरंगू से कर रहे हैं। रचना के बोल हैं जय जय पद्मनाभानुजेशा। इसके रचनाकार हैं महाराजा स्वाति तिरुनाल। ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
1: दिस इज आकाशवाणी। टुनाइट इन रवि वासरी अखिल भारतीय संगीत सभा वी ब्रिंग यू अ वायलिन रिसाइटल बाय जी राघवेंद्र प्रसाद। जी राघवेंद्र प्रसाद is an A-grade violin Carnatic artist of Akashvani and Doordarshan. He has done his master's in Carnatic music from Delhi University. He has learnt basics of violin recital by Kalaima Mani Shri V.S.K. Chakrapani. He is recipient of scholarship to young artist awarded in the year 2019-20 by Ministry of Culture for Carnatic Instrumental Violin. He was awarded scholarship by Center for Cultural and resources training in the field of Carnatic music instrument violin in 2010. Awarded Gandharva Vignaya jointly by Ministry of Culture, Government of India and Art of Living Bengaluru in January 2023, he has performed violin concerts in India International Center, Harivalla Festival Jalandhar, Rashtrapati Bhavan Delhi, Tamil Sangam, Lok Kala Manch, Bharati Vidya Bhavan Chennai, and many places in Delhi and Chennai. He has been a part of prestigious Festival of India in Russia, performed in Redberg Museum, Switzerland, and has performed in various countries all over the world. He has also accompanied leading artists like Padma Bhushan and Sangeet Kalanidhi, Shri T.N. Shesh Gopalan, Malladi Brothers, Shri Vishnu Dev, Neveli Shri Santhan Gopalan, Shri O.S. Arun, Mambalam Sisters, Dr. Manda Sundarani, Dr. K. Vagish, Dr. T. V. Manikandan, Dr. Kanna Kumar, and other renowned artists. Accompanied in various places like Sangeet Natak Academy, Sri Sankat Mochan Hanuman Temple in Varanasi, Spikmake, IGNCA, Andhra Bhavan, India International Center, India Habitat Center, Chinmay Mission, Telugu, and Malayali associations, etc. Today, he is accompanied on Mridangam by Yashwant Hampiholi and on Ghatam by Varun Rajashekharan. G. Raghavendra Prasad begins his violin recital with Rag Manirangu, composition Jai Jai Padmanabhanu Jesh, composed by Maharaj Swati Tirunal and is set to Adi Talam.

0: ये था जी राघवेंद्र प्रसाद का वायलिन पर बजाया गया राग मणिरंगु। कार्यक्रम को जारी रखते हुए जी राघवेंद्र प्रसाद अब प्रस्तुत करेंगे राग वराली। रचना के बोल हैं शेषाचल नायकम। इसके रचनाकार हैं मुत्तुस्वामी दीक्षितर। ये रचना रूपकम ताल में निबद्ध है।
1: That was राग मणिरंगु। Continuing his recital, G. Raghavendra Prasad now presents another composition based on Rag Varali. Composition is Shesha Chalinayakam, composed by Muthuswami Dikshitar and is set to Rupakam Talam.

0: अभी आप सुन रहे थे जी राघवेंद्र प्रसाद का वायलिन पर बजाया गया राग वराली। अपने कार्यक्रम का समापन जी राघवेंद्र प्रसाद राग बिलहरी इसे कर रहे हैं। रचना के बोल हैं श्री चामुंडेश्वरी पालय माम। इसके रचनाकार हैं मैसूर वासुदेवाचार। ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
1: जी राघवेंद्र प्रसाद कंक्लूड्स हिज वायलिन रिसाइटल विद रागम बिलहरी। कंपोजिशन श्री चामुंडेश्वरी पालय माम, कंपोज्ड बाय मैसूर वासुदेवाचार एंड इज सेट टू आदितालम।

0: आज के कार्यक्रम में आपके साथ मृदंगम पर यशवंत हम्पी होली और घटम पर वरुण राजशेखरन संगत कर रहे थे। इसी के साथ आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा अब यहीं संपन्न होती है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: He was accompanied on Mridangam by Yashwant Hampi Holi and on Ghatam by Varun Rajashekharan. With that, we conclude tonight's Ravivasriya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha. This program was earlier recorded in the studios of Akashvani Delhi and was broadcast from the Delhi station of Akashvani.
2: अभी आप सुन रहे थे अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनते हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश के लिए ये पहली फरमाइश भेजी है हमारे इन सभी श्रोता साथियों ने, और ये हैं ग्राम बठेना से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, रेखा धनेश्वरी वर्मा, सारा गांव से सुजान वर्मा, सुहद्रा वर्मा, आयुषी कृत वर्मा, सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, अलकमा खत्री, अल्तमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री, और ये साथी हैं इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस, तपस्या, करिश्मा कामले। इन सभी साथियों ने सुनना चाहा है फिल्म जन्नत का ये गीत, जिसके लिए आवाज़ है केके की और गीतकार है सैयद कादरी और संगीत दिया है प्रीतम ने।

अगली फरमाइश भेजी है सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका, रॉबिन, और डबवाली हरियाणा से जे के बोकाल्टा, श्रीमती सुनीता बोकाल्टा, संजय, अनिल, मीनू, और भोपाल से ही मनीष श्रीवास्तव, हर्षिता, लाली श्रीवास्तव, विमल, आशा, राधिका श्रीवास्तव। इन सभी श्रोता साथियों ने सुनना चाहा है तुम मिले इस फिल्म का गीत, जिसके लिए आवाज़ है नीरज श्रीधर की, गीतकार है कुमार और संगीत है प्रीतम का।

अगली फरमाइश है बक्सर से ज्योत गुप्ता, आशीष गुप्ता, सतीश गुप्ता, आयुष, आयुषी, सानवी, और ये हैं राजस्थान कवाई 12 से सतीश श्रीवास्तव, प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी, हर्षिता, अभिषेक श्रीवास्तव, ग्राम सनोतिया, जिला गुना से मांगीलाल चंदेल, अरविंद, अशोक कुमार, राजकुमार, हिमांशु, और ये साथी हैं खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मिति पंचोलिया। इन साथियों ने सुनना चाहा है राज थ्री इस फिल्म का गीत, जिसके लिए आवाज़ है जावेद अली की। गीतकार हैं राशिद खान और संगीत भी राशिद खान का है।

अगली फरमाइश है हमारे इन सभी साथियों की, ये है छाबड़ा जिला 12 से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी, शमीम बानो, राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती पूजा जास्मिन, प्रयागराज भट्ट, और ये साथी हैं रिंगनी से, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। इन सभी श्रोता साथियों ने सुनना चाहा है फिल्म गैंगस्टर का गीत, जिसके लिए आवाज़ है के की। गीतकार है सैयद कादरी और संगीत दिया है प्रीतम ने।

इसके साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब समय है अंतराल का।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: इसके साथ ही अंतराल का समय हुआ पूरा।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब प्रस्तुत है संग्रहालय से इस कार्यक्रम में धारावाहिक जमुनिया की 13वीं कड़ी।

0: भैया।
1: अभी तक आपने सुना है कि जमुनिया अपने पति के साथ सुखी थी। खेती के लिए रतन के भाई करण ने गांव के जमींदार दीवान से 10,000 रुपए का कर्ज दिला दिया। बाद में छल पूर्वक कर्ज की राशि 25,000 करवा दी। रतन को जब इस बात का पता चला तो वो इसे सह नहीं पाया और उसने आत्महत्या कर ली। उसी समय जमुनिया ने एक बच्ची को जन्म दिया जिसे उसने नाम दिया चिरैया। इसी समय करण ने जमुनिया को घर से निकाल दिया। छल पूर्वक उसने जमुनिया का बेटा भी हत्या लिया। पास के एक गांव के सहृदय झुल्लन ने उसे आसरा दिया। गांव के ही एक गुरुजी के पास जाकर उसने शिक्षा प्राप्त की। करण के पास कुछ भी नहीं बचा था। आखिरकार दीवान ने करण की पत्नी और गोलू को बंधुआ मजदूर बनाकर अपने पास रख लिया। इसी बीच गांव के सरपंची का चुनाव आया। अभी तक दीवान ने अपनी पत्नी से पर्चा भरवा दिया। उधर गांव के लोगों ने जमुनिया से भी सरपंची का पर्चा भरवा दिया। चुनाव प्रचार जारी था। दीवान छल बल प्रलोभन के भरोसे जीतना चाहता था और जमुनिया अपनी सच्चाई, लोगों के प्रति हमदर्दी और गांव के विकास के भरोसे जीतना चाहती थी।
2: नमस्ते शिल्पी बहन, क्यों बुखार आ गया?
3: अरे आओ जमुनिया, आओ, थोड़ी हरारत है, ठीक हो जाएगी।
4: अरे हाँ, तुम बैठो, मैं कागज भूल आया हूँ, अभी लेकर आता हूँ।
2: कैसा कागज, क्यों जयंत भैया?
4: ये लो, इसे ठीक से पढ़ लेना और कोई गलती हो तो बताना।
2: जी
4: अरे इतनी जल्दी मत पढ़ो, आराम से बैठकर एक एक नाम पढ़ना। जिनके नाम होने चाहिए ना हो तो अलग से नोट कर लेना, और जिनके नाम नहीं होने चाहिए वो हो तो उन्हें भी अलग से नोट कर लेना।

0: जी कोशिश करूंगी। तो फिर चले?
1: हाँ चलो।
2: चलिए चल।
3: राग है यार, देखो जीवन के चलते तो अंग्रेजी मिल गई, नहीं तो ये सारी देसी भी नसीब नहीं होती यार।
1: चमुनिया, ये कौन है जो शराब के नशे में गिरा पड़ा है?
0: इसी गांव का है, चुनाव से पहले दीवान ये भी पिलाता खिलाता है ना,
2: पर ये तो ठीक नहीं है।
1: हाँ, ऐसे तो खुलेआम चुनाव के आचार संहिता का उल्लंघन है। चमुनिया, हमें कुछ करना चाहिए।
2: हाँ चमुनिया,
0: हम क्या कर सकते हैं? दीवान को जाकर कहें कि इनको दारू मत पिलाओ, तो क्या वो मान जाएगा?
1: अरे नहीं, हमें दीवान से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं इसकी शिकायत चुनाव अधिकारी से करूंगा।
2: मगर ये तो बताओ, हम साबित कैसे करेंगे कि दीवान दारू पिला रहा है?
1: हम ये कहां कहेंगे कि दीवान पिला रहा है, चुनाव अधिकारी भी तो कुछ पता करेगा ना।
2: अरे दीवान उसे मिला लेगा।
1: मेघा, इस तरह तो हम पहले ही हार बैठेंगे, कुछ तो कहीं भरोसे लायक होगा, हम हार कर क्यों बैठे? शिकायत से दीवान को यह तो लगेगा कि चुनाव में हर बार की तरह दारू पिलाने का उसका तरीका चुपचाप स्वीकार नहीं कर लिया जाएगा। हमें उसे ये तो बताने का हक है कि हम जागरूक हैं।
2: एक काम मेरी समझ में और आ रहा है।
1: वो कौन सा?
0: वो क्या मेघा दीदी?
2: देखो, गांव वालों को हम रोज समझा रहे हैं, उन्हें एक तरह से प्रशिक्षित कर रहे हैं कि वो जाने कि वोट का मतलब क्या है, उसकी ताकत क्या है।
0: वो तो है, ये खाली कागज का टुकड़ा नहीं है जिसे भेड़ बकरी की तरह बिना सोचे समझे ही डब्बे में डाल दिया जाए।
2: है, तो आज हम एक काम करते हैं।
0: क्या?
2: आज औरतों की एक सभा करते हैं, छोटी मोटी, उन्हें समझाएंगे कि वोट में कितनी ताकत होती है ना? उनसे आग्रह करेंगे एक दिन के लिए।
0: वाह दीदी, बात मेरी समझ में भी आ रही है। कुछ कुछ
2: कुछ कुछ क्या समझ में आ रहा है? कुछ कुछ
0: देखो भाई लोग, ये जो दारू की लत है, एक दिन में तो जाएगी नहीं। ऐसा तो होगा नहीं कि हमने कहा और वो लोग दारू पीना छोड़ दें।
1: तो फिर
0: हम बहनों से इतनी विनती करेंगी कि वोटिंग वाले दिन से पहले की रात वो अपने आदमियों से एक वादा ले कि कम से कम एक दिन दारू न पिए। इसके लिए वो खुद एक रात जागे, अपने अपने आदमी की निगरानी करे कि वो दारू न पिए, ताकि वोट डालने वाले दिन वो होश में रहे। जिसे भी वोट डालना है वो सोचने समझने लायक हो। नशे में वोट डालने की आदत रोकनी होगी।
1: वाह जमुनिया, ये हुई ना कुछ बात।
2: हाँ, पर एक आदर्श स्थिति है ये, अगर हो जाए तो।
0: चलो मान लेते हैं कि सभी लोग ऐसा नहीं करेंगे, पर कुछ तो होगा। बिल्कुल कुछ ना करने से भी तो अच्छा है कि कुछ किया जाए।
1: हाँ, तो फिर हो जाए आज शाम महिला सभा।
0: हो जाए।
4: तो आई तो है, पर वो तो आई नहीं आज की बात है। अपन और का नहीं तो का, इसीलिए तो आए हैं।
5: तो बोलेंगे
4: वो तो आई नहीं
2: बहनों।
4: अरे चुनाव शुरू हो रहा है।
5: हां, वो तो बोल रही
2: है। सुन बहनों,
5: हां
2: हमने जानबूझकर यह सभा आप बहनों के लिए बुलाई।
4: अरे वाह,
2: यह बताने के लिए कि आने वाले समय में इस गांव का विकास हो, हमारी जिंदगी बेहतर हो और इसमें महिलाओं की बड़ी भूमिका हो। इसके लिए हमें क्या करना है, है ना, और कैसे करना है, ये आपको जमुनिया जी बताएंगी।
5: ये तो जानने आया
0: था। बहनों, हम आपके ही बीच के हैं, थोड़ा बहुत पढ़े तो जे बात हमारी समझ में आई वो आप लोगों को बताना चाहते हैं। ये ठीक है, मर्द इस समाज के अगुआ हैं, अपना घर बार चलाने, अपनी इज्जत बचाने में उनकी बड़ी जिम्मेदारी है।
5: जमुनिया दीदी बिल्कुल ठीक बोल रही।
0: पर परिवार दो पहियों की गाड़ी से चलता है, हमारी जिम्मेदारी भी कम

0: अपने आदमियों की दारू पीने की लत से तो हम सब वाकिफ हैं। ये बुराई रातों रात तो जाएगी नहीं, पर आप लोग दिल से कहिए, क्या शराबी पति किसी को अच्छा लगेगा? तो हम कोशिश तो कर ही सकते हैं, कल के बजाय आज से और फिर अभी से अपने अपने आदमियों से वादा लेना है कि कम से कम एक दिन के लिए वे दारू न पीने की कसम खाएं। आप अपनी कसम दीजिए कि वो वोट डालने से पहले वाली रात वे दारू ना पिए, ताकि जब वोट डाले तो होश में हो, उन्हें पता हो कि वे क्या करने जा रहे हैं। बल्कि आप खुद निगरानी करिए कि वे दारू ना पिए। मैं ये नहीं कहती कि वोट मुझे दीजिए, जिसे भी दे बस सोच समझ कर दे।
1: पर जमुनिया दीदी, आपकी बात तो चलो मान लेते हैं, पर इसमें हमारा क्या फायदा होगा?
2: जे लो, जे तो फायदा और नुकसान लेकर उड़ गई। अरे जमुनिया बहन ने इतना अच्छे से समझाया है, पर इनकी समझ में ही नहीं आया।
1: बात नहीं कर रही
2: तो क्या, गलत तो कह रही तुम।
0: बहन, फायदा नुकसान तो बात की बात है, पर आप ये बताइए कि ऐसा न करके आपको क्या फायदा मिल रहा है?
2: तो वही तो,
0: वही जिल्लत भरी जिंदगी।
2: सही है,
0: जब तक हम कुछ अलग करेंगे नहीं, अलग होने वाला भी नहीं। बहनों, ये बात मैं बहुत सोच विचार कर कह रही हूँ। मुझे पक्का भरोसा है कि अगर यह करने में आप कामयाब रही, आने वाले दिन आज से बेहतर होंगे।
1: उसी दिन का तो इंतजार कर रहे हैं हम सब।
0: अपने आप को, अपनी ताकत को पहचानिए।
3: आपकी बात हमारी समझ में आ रही है।
0: एक बात और समझना जरूरी है।
1: वो क्या?
0: जैसे अभी एक बहन ने पूछा कि हमारा क्या फायदा होगा, तो जब तक हम सामूहिक फायदे की नहीं सोचेंगे, तब तक किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला।
2: सब इकट्ठे होके सोचो।
0: हम अलग अलग फायदे की सोचते हैं, इसी कमजोरी का फायदा उठाकर लोग हमारा ही इस्तेमाल कर रहे हैं। हम समझ ही नहीं पाते। गौर से देखिए, क्या ऐसा नहीं है?
2: ऐसा ही है।
0: एक अच्छी शुरुआत की कोशिश करके तो देखिए।
1: जरूर करेंगे। पर जमुनिया दीदी, मेरा आदमी तो दारू पीता नहीं, पर हाँ अब मुझे भी कुछ कुछ समझ में तो आ रहा है।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है बहन। आप तो दूसरी औरतों से भाग्यशाली हैं।
1: हाँ जी जी,
0: तो क्यों ना आप दूसरी बहनों की मदद करती हैं?
1: ठीक है जमुनिया बहन।
2: हाँ, हम ये करके देखेंगे और आपको वचन भी देते हैं, है ना? हाँ, सब लोग करेंगे, है ना?
0: तो हम भी आप लोगों को वचन देते हैं कि ईश्वर ने चाहा तो आने वाला समय हमारा होगा।
4: अरे अरे अरे जंदी फंदी, क्या सुन रहे हैं हम? ये
5: जी मालिक
4: कर रहे हो? अरे जई, ये जमुनिया ससुरी लोगों की शराब छुड़वा रही है।
5: सुना तो हमने भी यही है मालिक।
4: अरे सुना तो हमने भी यही है। अरे कमबख्तो, सुनते ही रहोगे या कुछ करोगे भी हैं? अरे चुनाव सिर पर चढ़ता आ रहा है और तुम लोग खाली सुन रहे हो।
5: अब ये तो है मालिक।
4: सुनो जी, लोगों में दारू की लत अभी से बढ़ा दो।
5: आओ मालिक, आओ।
4: दारू को दरिया की तरह बहा दो। कुछ भी करो, मुझे ये चुनाव जीतना ही है।
5: आओ मालिक, बिल्कुल
6: बिल्कुल मालिक।
4: अरे पहले मुझे लग रहा था कि ये जमुनिया कहाँ ठहरेगी, दीवान के सामने, मालकिन के सामने, पर बात तो ससुरी गंभीर होती जा रही है।
5: हाँ मालिक।
4: अरे अब तो नाम का सवाल होता जा रहा है। अरे अरे तुम लोग अगर कुछ नहीं कर पाए तो सबसे पहले तुम लोगों को ही मार डालूंगा।
5: नहीं मालिक।
4: अरे आग तो गांव में भी लगाऊंगा, पर तुम लोगों को मार डालने के बाद
6: इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मालिक।
7: हम लोग आपको भी जानते हैं और गांव वालों को भी।
6: और क्या?
4: चुप! खींची खींची खींची बंद कर। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, इसे गंभीरता से लेना। किसी भी कीमत पर मुझे ये चुनाव जीतना ही है।
6: हाँ मालिक।
4: अरे पहले तो सोचता था ये जमुनिया फमुनिया मेरा क्या बिगाड़ लेगी। चुनाव लड़ना चाह रही है, लड़ ले। अरे जीतना तो मालकिन को ही है, पर धीरे धीरे ये जमुनिया विषैली नागन बनती जा रही है। अरे इसके फन को कुचलो जल्दी।
6: आप तो बेहद नाराज हो रहा है मालिक, देखिए तो सही नागिन को हम कैसे नचाते हैं।
7: अच्छा बेटा सवेरे उठो, नहीं तो मालिक और नाराज हो जाएंगे।
4: मुझे रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट। सोच लो।
6: सोच विचार कर ही जा रहे हैं मालिक।
4: हाँ तो जाओ जल्दी।
0: अरे चिरैया।
1: हाँ माई।
0: बाबा कहाँ गए रे?
1: अभी तो यही थे, लगता है कि कहीं बांस खरीदने तो नहीं चले गए।
0: तू ठीक कह रही है रे, कई दिनों से काम धाम कुछ कर नहीं पा रही हूँ। चुनाव प्रचार का भूत सिर पर सवार है, बाबा बेचारे अकेले ही काम कर रहे हैं, क्या करूं।
8: अरे जमुनिया।
0: बाबा।
8: कुछ करने की जरूरत नहीं है बिटिया, तू जो कर रही है वही बहुत है, सब लोग तो अपने अपने के लिए कर रहे हैं। अरे एक तू ही है जो सबके लिए कर रही है। अरे बिटिया कुछ दिनों की बात तो है, फिर तो मैं संभाल लूंगा, बाद में तो इस गांव की तस्वीर बदलेगी, ऐसा मुझे लगा है।
0: इसमें तुम्हारा भी तो साथ बहुत खास है बाबा।
8: हे ये तुम्हारे हाथ में कागज कैसा है बेटा?
0: ये हमारे गांव की वोटर लिस्ट है, जयंत शहर से लाए थे, मुझे दिया है देखने को। बाबा
8: हाँ?
0: तुम सबको जानते हो ना इस गांव में?
8: हाँ हाँ बिटिया जानता हूँ, पर शायद कुछ नौजवानों के नाम याद ना आए, चेहरे से तो सभी को पहचानता हूँ, क्यों पूछ रही हो बिटिया?
0: बाबा थोड़ी देर मेरे साथ बैठो ना।
8: हाँ।
0: मैं नाम पढ़ती जाती हूँ।
8: हाँ।
0: तुम बताते जाना कि ये सब लोग अपने गांव के हैं कि नहीं।
8: अच्छा ठीक है चल पूछ।
0: धुल्लन।
8: हाँ।
0: फुलवा।
8: हाँ बिटिया ये तो सब सही है।
0: रतन। अरे ये तो अपना ही आदमी है पापा था। चलो पापा बाद में देखेंगे।
8: हाँ बिटिया तेरी लिस्ट तो बड़ी लंबी है।
1: माई क्या हुआ तुझे, एकदम से रोने रोने को क्यों हो गई?
0: कुछ नहीं हुआ, तू अपना काम कर।
8: अच्छा ठीक है बिटिया मैं बांस चीरता हूँ।
0: शारदा का नाम ढूंढ रही हूँ, वो भी है, ये लिस्ट तो बेकार है बाबा।
9: नमस्ते जमुनिया, और क्या कर रही हो?
0: ये झुनझुना थमा दिया है, उसे ही बचा रही हूँ।
9: अच्छा तो वोटर लिस्ट देख रही हो?
0: हाँ पर बेकार है ये लिस्ट। मेरे आदमी का नाम है, शारदा बहन का नाम है, जबकि ये दोनों इस दुनिया में है ही नहीं। अब ठीक करवाओ इस लिस्ट को।
9: ये सब इतना आसान नहीं है, बस हम सब ये जानते हैं कि ये काम सरकार का है और उसे ही ठीक करना चाहिए।
0: तो फिर कौन करेगा?
9: हम सबकी जिम्मेदारी है अपना अपना योगदान देने की, और एक दिन में भी ये सब नहीं होता, बल्कि जब तक सब लोग भागीदारी नहीं करेंगे कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए कहता हूं जन्म के लिए बच्चे के बारे में जितना जरूरी है सूचना देना, उतना ही जरूरी है मृत्यु की जानकारी देना। तभी आवश्यकता के हिसाब से योजना बनती है। विकास के लिए जरूरी चीजें इसी के आधार पर बनती हैं।
0: इसे भी ठीक करवाना पड़ेगा, तभी तो वोटिंग इसी के आधार पे होगी। इसमें जिसका नाम नहीं है वो वोट नहीं डाल पाएगा।
9: बिल्कुल। और हाँ जमुनिया, वोटिंग के दिन हमें ध्यान रखना है कि जो लोग नहीं है इस दुनिया में पर उनका नाम इस लिस्ट में है, उनकी जगह कोई दूसरा वोट ना डाल दे।
0: अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं था।
9: अच्छा चलो, अब देखें कि कल की बात का गांव वालों पर क्या प्रभाव पड़ा है।
0: हाँ चलो। अरे ये दोनों कहाँ आ रहे हैं?
9: ये तो दंदी फंदी हैं।
0: इधर कैसे आ रहे हैं?
10: नमस्ते जमुनिया जी, प्रचार कैसा चल रहा है?
0: क्यों, क्या करेंगे जानकर?
10: भैया लगता है जमुनिया जी नाराज हैं हम लोगों से। हैं?
7: हमसे कोई खुश भी तो नहीं रह सकता।
10: हाँ भैया।
0: चलो अच्छा बताओ तो सही, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? मेरे भले के लिए तो तुम लोग आने से रहे।
10: जीजी, हमारा जन्म पता है किस लिए हुआ है?
0: अब आप ही बता दीजिए।
7: हम सच्चे को कहते हैं सजग रहो और मक्कार को कहते हैं लूट लो।
10: हाँ।
0: ये क्या बात हुई?
10: अरे यही बात तो समझने की है जीजी। अच्छा आप नारद मुनि को जानती हैं ना, वही घर घर में कलह पैदा करने वाले।
7: फिर भी उनको ऋषिवर नारद मुनि कहते हैं।
10: नारायण नारायण।
9: अरे ऋषिवर नहीं, ऋषिवर कहते हैं। ऋषिवर
7: हाँ, वो एक ही बात है।
10: कई बात है,
7: ये जो आप दारू ना पिए का प्रचार कर रही हैं ना, उससे दीवान जी बहुत नाराज हैं। आप लोग लोगों के खाने पीने पर भी पाबंदी करेंगी?
10: अभी तक तो सब कुछ सह रहे हैं हमारे मालिक। हाँ, लेकिन लड़ाई बहुत गहरी होती जा रही है। हम बताए दे रहे हैं, थोड़ा सोच समझ कर रहिए।
0: आप लोग हमें समझा रहे हैं कि धमका रहे हैं?
7: आपको क्या लग रहा है?
0: हमें तो लग रहा है कि आप धमका रहे हैं।
10: अरे नहीं जीजी, बात यह है कि हम किसी की लड़ाई खुद नहीं लड़ते। अरे सबको अपनी अपनी लड़ाई खुद लड़ना होती है। अब वो तो बात यह है कि बात बहुत ज्यादा न बढ़े इसलिए आ गए। क्यों भैया?
11: बता गए, इस चुनाव को दीवान अपनी नाक का सवाल मानता है, बाकी आप जानो।
10: हाँ जी जी।
0: अच्छा तो आप लोग यहाँ से सिधारो, हमें समझाने और राय देने के लिए धन्यवाद। जयराम जी की। नारायण नारायण
10: नारायण नारायण।
12: अरे जमुनिया, आज गुरुजी की याद कैसे आ गई तुम्हें?
0: प्रणाम गुरुजी।
12: प्रणाम प्रणाम, जीती रहो बेटा जीती रहो। आजकल तो धुआंधार चुनाव प्रचार हो रहा है, इसीलिए इधर आने का अवसर नहीं मिला होगा ना।
0: ये तो सही है गुरुजी, पर आप ही ने इस जमुनिया को इस लायक बनाया है कि आज सरपंची का चुनाव लड़ने की हिम्मत जुटा पाई हूँ।
12: भाई तुम्हारे अंदर वो जो जमुनिया है, अगर उसमें इतना साहस ना होता तो अकेले गुरुजी क्या कर लेते बेटा। ज्ञान परस्पर दोनों की इच्छा पर ही निर्भर करता है, पाने वाला और देने वाले का साझा होता है। ये तुम्हारे हाथ में कैसा कागज है बेटा? भाई मेरी कोई सहायता की जरूरत हो तो जरूर कहना।
0: आपने ठीक पहचाना, ये इस गांव की वोटर लिस्ट है।
12: अच्छा, अच्छा।
0: बहुत से लोगों का नाम मुझे पता नहीं है। हाँ। आप ज्यादातर लोगों को जानते हैं।
12: हाँ।
0: इसलिए लाई हूँ कि एक बार आप देख ले। सरसरी तौर पर बताते हैं कि अभी कोई गलती हो भी तो ठीक नहीं हो पाएगी, उसमें समय लगता है।
12: अच्छा, अच्छा।
0: पर कम से कम उन लोगों के फर्जी वोट ना डलने पाए जो इस समय हमारे बीच में नहीं है। हम चुनाव में इस बात पर नजर रखेंगे कि कहीं वो अगर ऐसा करेंगे तो उसका विरोध कर सके।
12: ये बिल्कुल ठीक होगा बेटा, बिल्कुल ठीक। ठीक है, ये तुम इसे मेरे पास छोड़ जाओ, मैं इसे आराम से देख लूंगा। है और इतना तो फिर बाद में मैं तुम्हें बता ही सकता।
0: अच्छा गुरुजी, आशीर्वाद दीजिए, चलती हूँ, प्रणाम।
12: विजयी हो जमुनिया, तुम्हारे लिए मेरा आशीर्वाद हमेशा रहेगा।
2: अरे हम कह रहे हैं, बस एक दिन की खातिर हमारी बात मान लो।
7: ये क्या मजाक है, मत पियो की रट लगा रखी है। अरे एक दिन नहीं पीने से क्या हो जाने वाला है भाई, कौन सा बड़ा आसमान फट पड़ेगा बता।
2: अरे हम हमेशा के लिए छोड़ने की बात तो कर नहीं रहे हैं। अरे बस चुनाव से एक दिन पहले मत पियो, बस बस। हाँ
7: बाद में पूछेगा कौन दारू के लिए, वो तो चुनाव की होने की खुशी में दीवान जी पिला रहे है, और तू कहती है वही ना पियो।
2: अरे अभी तुम ठीक बात बोले हो, तुम्हारी वोट की औकात एक बोतल दारू ही ना है। अरे वोट के बाद तुम्हें पूछेगा कौन,
7: क्या
2: और का?
7: देख तू फालतू मेरा दिमाग मत खराब कर, चल।
2: अरे जरा सोचो तो सही, अरे दीवान के लिए तुम हो क्या?
7: क्या?
2: अरे एक बोतल दारू ही ना, और क्या? अब इतने सस्ते में क्यों बिक रहे हो?
7: अरे
2: अरे जब तक हम अपना सम्मान नहीं करेंगे ना, दूसरे को क्या पड़ी है? अरे मान लो ना, बस इतनी सी बात मान लो। और सुनो सुनो, हमारे सिर पर हाथ रख कर कहो, हाँ कहो ना कि ठीक है तुम्हारी एक दिन वाली बात मानता हूँ, बोलो।
7: अरे
2: बोलो ना।
7: अरे हाथ खींच रहे।
2: अरे बोलो ना।
7: अच्छा ले मान मान गए, ले मान गए। अच्छी भाई ये हो रहा जात, चाहे तो आदमी की एक ना चलने पाए। चल मान ली, तेरी बात भी मान ली, पर ये बता, जो कसम वसम का चक्कर के पूरे गांव की औरतों ने चला रखा है
2: और क्या?
7: अरे
2: हाँ हाँ, हम सब बहनों ने किसी से वादा किया है।
7: अरे?
2: कि वोट किसी को भी दो, पर पूरे होश हवास में दो। अरे ये वोट बड़ी कीमती चीज है, इसे बेहोशी में मत गवाओ, बस। हाँ
7: अच्छी बात है भवानी, अच्छी बात है। चल पीना छोड़ देंगे, खाना तो देगी।
2: अरे अरे खाने को किसने मना किया है, ये लो चोखा और लिट्टी भकोसो।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक जमुनिया की 13वीं कड़ी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
1: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना,
4: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
2: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
1: शाम सुहानी हो,
2: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
1: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
2: सफर में
1: आपके साथ
2: आकाशवाणी।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12:58 होने को हैं।

0: इसके साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से 2 सितंबर तक शिवपुरी के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान वे शिवपुरी, कोलारस और पिछोर में कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 2 सितंबर को ग्वालियर में बलराम जयंती महोत्सव और सहकारी किसान समागम में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम मेला मैदान परिसर में आयोजित किया जाएगा। उज्जैन में भगवान महाकाल की 5वीं शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये शोभा यात्रा शाम 4 बजे मंदिर से शुरू होकर महाकाल घाटी, गुदरी, बक्शी और कहारवाड़ी से होते हुए रामघाट पहुंचेगी। रात लगभग 8 बजे महाकालेश्वर मंदिर में ये यात्रा संपन्न होगी। भोपाल के रविंद्र भवन में 7 दिवसीय रासलीला समारोह का आयोजन किया जा रहा है। ये समारोह में आज शाम 6:30 बजे कुमार विश्व एवं साथी प्रस्तुति देंगे। प्रवेश निःशुल्क रहेगा। और अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पहले ही दौर में सर्बिया के नोवाक जोकोविच हारकर बाहर हो गए हैं। जोकोविच को कड़े और निर्णायक मुकाबले में अर्जेंटीना के मारियानो नावोन से हार का सामना करना पड़ा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: मीडियम वेव डीटीएच का ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण।

स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का स्वास्थ्य विशेष कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण में। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त नेहा जैन। आप सभी को मेरा प्यार भरा अभिवादन, नमस्कार। श्रोताओं, किसी भी व्यक्ति के जीवन में बदलाव हमेशा धीरे धीरे आता है। सबसे पहले व्यक्ति की आदतें बदलती हैं, फिर दिनचर्या बदलती है, और फिर ये एहसास होता है कि हमारी तो पूरी जीवन शैली ही बदल चुकी है। श्रोताओं, आज हमारे दिन की शुरुआत से लेकर रात को सोने से पहले तक ऐसी अनेक गतिविधियां हैं जिनमें तकनीक हमेशा साथ रहती है। पढ़ाई, मनोरंजन, खरीदारी के साथ साथ अपनों से बातचीत में भी डिजिटल माध्यम हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। श्रोताओं, तकनीक ने निश्चित रूप से हमारे जीवन को आसान और सुविधाजनक बनाया है, लेकिन हर सुविधा अपने साथ एक जिम्मेदारी लेकर आती है। तकनीक का प्रयोग करने के साथ आवश्यक है कि हम अपने स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक रहें, क्योंकि हमारी डिजिटल जीवन शैली हमारे शरीर के साथ हमारे मन को भी प्रभावित करती है। श्रोताओं, लंबे समय तक स्क्रीन देखने से आंखों में जलन, सिर दर्द, गर्दन और कमर में दर्द जैसी समस्याएं बढ़ सकती है। देर रात तक मोबाइल चलाने से नींद भी प्रभावित होती है। मोबाइल लैपटॉप की स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी शरीर की प्राकृतिक जैविक घड़ी को भी प्रभावित कर सकती है। साथ ही लगातार सोशल मीडिया पर बने रहने से तनाव, चिंता और बार बार फोन देखने की आदत हो जाती है। श्रोताओं, इन आदतों का हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रख हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर रख सकते हैं। हर 20 से 30 मिनट के बाद स्क्रीन से नज़र हटाकर कुछ देर तक दूर देखें। सोने से कम एक घंटे पहले मोबाइल लैपटॉप का उपयोग ना करें। रोज योग, व्यायाम, प्राणायाम करें या पैदल चलें। भोजन करते समय स्क्रीन से दूरी रखें। संभव हो तो परिवार और दोस्तों से आमने सामने ही बात करें, यानी तकनीक का प्रयोग करें, लेकिन सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। हम स्क्रीन को समय दें, लेकिन अपने स्वास्थ्य, परिवार और वास्तविक जीवन को अधिक महत्व दें, क्योंकि जब जीवन में संतुलन आता है तो जीवन में खुशियों की मीठी मीठी चाशनी अपने आप ही घुलने लगती है।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण। श्रोताओं, हमारी रसोई में हमारे आसपास कई ऐसे बीज मौजूद हैं जो आकार में भले ही छोटे हों, लेकिन पोषण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन बीजों में क्या खास है, किस तरह हम अपने भोजन में इन्हें शामिल कर सकते हैं, इन सभी सवालों के जवाब देती वार्ता हम आपको सुनवा रहे हैं। वार्ताकार हैं डॉक्टर निधि पांडे।
1: नमस्कार, मैं निधि पांडे हूँ। मैं आहार एवं पोषण विशेषज्ञ हूँ। अक्सर जब आहार और पोषण की बात होती है तो बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन में आती हैं। क्या खाना चाहिए, मोटापा कैसे कम होना चाहिए, पैरों का दर्द कैसे कम होना चाहिए, बच्चे को यदि फीड करा रहे हैं तो क्या खाना चाहिए। आज हम बात करेंगे सीड्स की, यानी कि बीजों की। हमारे खाने में या हमारे भोजन में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो पोषक तत्वों में गिनी जाती हैं, पर सीड्स जो हैं इनका जो महत्व है ये पिछले कुछ वर्षों से बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो आइए जानते हैं कुछ इंडियन सीड्स के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूंगी अलसी के बारे में, जिसको कि लिनसीड भी कहा जाता है। अलसी आज से कुछ दशक पहले वेस्ट मटेरियल के तौर पे फेंक दी जाती थी, पर अब इसके जो न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स हैं ये बहुत सारे हैं। अलसी में रेशे की मात्रा बहुत अच्छी होती है, ओमेगा 3, अल्फा लिनोइक एसिड, लिग्निन, कुल मिलाके ये सारे तत्व आपकी हड्डियों को मजबूत रखने का काम करते हैं, आपके हार्ट की जो फंक्शनिंग है इसको सही रखने का काम करते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को ये लगता है कि उनको जॉइंट्स की थोड़ी बहुत दिक्कत है, घुटने में परेशान है या कमर दर्द से पीड़ित हैं, वो लोग भी यदि अलसी का नियमित सेवन करते हैं तो वो अपनी इन छोटी मोटी परेशानियों से निजात पा सकते हैं। अलसी को कैसे कंज्यूम करना चाहिए, इसके दो तरीके हैं। या तो आप इसको तुरंत पीस के और फिर यूज करें, और या फिर आप इसको भूंज के रख लें और फिर उसके बाद इसको कंज्यूम करें। अलसी की जो ऊपर की परत होती है ये बहुत मोटी होती है, इसीलिए इन दोनों तरीकों से जब आप इसको खाते हैं तब ये आपके शरीर में ज्यादा फायदा पहुंचाने के काबिल हो जाती है। दूसरी चीज है राई। प्रायः राई बघार में यूज की जाती है, पर क्योंकि हम लोग बचपन से ये चीज खाते आ रहे हैं हम शायद इसको इतना महत्व नहीं देते हैं। क्या आप जानते हैं कि राई जो है ये दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेड करने वाली स्पाइस है। इसमें अमाइनो एसिड्स यानी कि प्रोटीन्स की मात्रा बहुत अच्छी होती है। थोड़ी थोड़ी मात्रा में यदि राई हम लेते रहते हैं तो ये पेट में जो कृमि बनती है इसको नाश करने में बहुत कारगर साबित होती है। इसके अलावा एंटी एजिंग के लिए, आपकी जो स्किन है ये सुंदर दिखे, आपकी अतड़ियों की स्किन है ये भी अंदर से साफ रहे और आपकी हड्डियों में मजबूती बनी रहे, इन सारी चीजों के लिए जो तत्व जरूरी हैं ये राई में बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। यदि बच्चों को कृमि से संबंधित कोई परेशानी है तो राई पीस के उनके खाने में यदि मिलाई जाती है तो बहुत जल्दी ही इससे वो निजात पा सकते हैं। अब हम आते हैं कद्दू के बीज पे। कद्दू के बीज आज से कुछ दशक पहले लोग छील के रखते थे खाने के बाद या बीच में कभी खाते थे, अभी कद्दू के बीज जो है ये बहुत इन ट्रेंड आ चुके हैं। इसमें मूफा यानी कि मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और लगभग सारे मिनरल्स जैसे कि मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन, जिंक, प्रोटीन, ये सारी चीजें बहुत अच्छी मात्रा में उपलब्ध रहती हैं। पर हम कद्दू को यूज करके उसके बीज फेंक देते हैं। यही बीज यदि हम कंज्यूम करते हैं तो हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं जानते हैं। ये एंटी एजिंग के लिए यानी चेहरे की स्किन और आपके पूरे शरीर की स्किन और मांसपेशियों के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी चीज है। मासिक धर्म के दौरान यदि नसों का खिंचना या पेट में दुखना या कमर दर्द होना जैसी परेशानियां हैं तो कद्दू के बीज को भूंज के उसमें थोड़ा सा हल्दी, काला नमक वगैरह डाल के आप रख लें और इसको नियमित 1 से 2 चम्मच यदि आप लेते हैं तो आपकी ये परेशानी भी दूर हो सकती है। आजकल मोटापा बहुत बड़ा परेशानी का कारण है, तो जिन लोगों को लगता है कि उन्हें मोटापे से दूर रहना है या उन्हें अपना वजन कम करना है, उनके लिए भी भूंजे हुए कद्दू के बीज दिन में 2 चम्मच खाना खाने के पहले बहुत अच्छा इफेक्ट दे सकते हैं। इसके अलावा जिन्हें लगता है कि उनका डायबिटीज कंट्रोल में नहीं रहता है, कद्दू के बीज का जो फाइबर है ये आपके ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने का बहुत अच्छा काम करता है। तो रेगुलरली खाना खाने के पहले 1 चम्मच या 1.5 चम्मच, जितनी आपकी शुगर है उसके हिसाब से, यदि बहुत ज्यादा है तो 2 चम्मच भी ले सकते हैं। इस चीज का रेगुलर सेवन करने से आपका ब्लड शुगर नियंत्रित हो सकता है। अब हम आते हैं खसखस पे। खसखस है बहुत ही छोटा सा दाना, लेकिन ये पावर हाउस है न्यूट्रिशन का। इसमें आयरन, कैल्शियम और रेशा, ये तीन चीजें बहुत भरपूर मात्रा में पाई जाती हैं। यही वजह है कि जब महिलाएं बच्चों को स्तनपान कराती हैं उस समय उन्हें खसखस का पाउडर बना के या खसखस का हलवा बना के या फिर खसखस को किसी भी तरह से हरीरा में या लड्डू में शामिल करके दिया जाता है। स्तनपान कराने वाली महिलाओं में कैल्शियम की कमी हो सकती है, उस कमी को दूर करने के लिए खसखस से कारगर कोई और बीज हो ही नहीं सकता। और हाँ, यदि आपको लगता है कि आपको बच्चों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रखना है तो हर ठंड में उन्हें खसखस का हलवा आधा चम्मच ही सही रोज खिलाएं। इससे उनकी हड्डियों का डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा होगा, उनकी मांसपेशियों के अंदर ताकत भी बहुत अच्छी रहेगी। और यदि हड्डियों का डेवलपमेंट सही है तो उन बच्चों में विटामिन डी की कमी नहीं पाई जाएगी। इसके अलावा जिन महिलाओं को मेनोपॉज आ रहा है या अगले 6-7 साल में 10 साल में आने वाला है या जिनको आ चुका है, इनको भी खसखस का नियमित सेवन करने से बहुत फायदा हो सकता है। और जो बोन्स ऑस्टियोपोरोटिक हो चुकी हैं, वो अब इससे ज्यादा उनमें से कैल्शियम का लॉस नहीं होगा। किडनी से संबंधित परेशानियों में भी खसखस का सेवन जैसा बताया जाए उस हिसाब से यदि लिया जाता है तो उसमें राहत मिल सकती है। इसके बाद हम आते हैं सफेद तिल पे। हमारे यहाँ त्योहारों में अक्सर सफेद तिल यूज होता है, खासकर की संक्रांति में। सफेद तिल और काला तिल दोनों ही न्यूट्रिशन का पावर हाउस है। सफेद तिल और काले तिल दोनों में लोहा, कैल्शियम, तेल और रेशा, ये तीन चीजें बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती हैं। सबसे पहले बात करेंगे कैल्शियम की। बहुत आसान तरीका है, जिन लोगों को तिल का कंजम्पशन नहीं हो पा रहा है जिनसे, वो यदि रात में 1 चम्मच पिसा हुआ तिल पानी में भिगो के रख देते हैं 1 ग्लास पानी में, और सुबह उसको छान के यदि लेते हैं, उससे शरीर में कैल्शियम का अब्सॉर्प्शन भी बहुत अच्छा हो जाता है और इससे उन्हें कैल्शियम भी प्रचुर मात्रा में मिल सकता है। यही चीज काले तिल के साथ भी कर सकते हैं। इस चीज का नियमित सेवन करने से नर्व संबंधी परेशानी यानी नसों का खिंचना या जिनके परिवार में पैरालिसिस या अल्जाइमर्स या पार्किंसंस की परेशानी है, वो लोग इस चीज को, अगर वो 40 के ऊपर हैं, तो तिल का कंजम्पशन उनके खाने में किसी न किसी तरह होना चाहिए। बच्चों की हड्डियों को यदि मजबूत रखना है तो आपका जो रोटी का आटा है, इसमें आप यदि 1 चम्मच तिल पीस के मिला लेते हैं तो ये रोटी कैल्शियम का इतना अच्छा सोर्स हो जाएगी कि इसके अलावा कुछ और चीज आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हम वेट वॉचिंग की बात करते हैं यानी कि मोटापा घटाने की बात करते हैं, तो सौंफ, अजवाइन, अलसी और तिल, इसका एक मिक्सचर बना के आप रख लीजिए और इसको दिन में 3-4 बार आप लेते रहिए। यदि आप इसको भूंज के रखेंगे तो इसको खाना जरा सरल हो जाएगा। तिल के लड्डू यदि गुड़ के साथ बनते हैं तो ये आयरन और कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स रहते हैं और आपकी हड्डियों में जितना कैल्शियम निकल चुका है, बाकी के कैल्शियम को रोकने में भी बहुत कारगर साबित हो सकते हैं। यदि

0: तिल का लड्डू शक्कर के साथ रहता है तो इसके फायदे थोड़े कम हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप तिल का लड्डू गुड़ के साथ खाएं, कभी कभी सफेद तिल का और कभी कभी काली तिल का। अब हम आते हैं सूरजमुखी के बीज पे, यानी कि सनफ्लावर सीड्स। ये चीज जो है ये वेस्टर्न कंट्रीज से अब धीरे धीरे भारत में आ रही है। सनफ्लावर सीड्स भी प्रोटीन का यानी कि एसेंशियल फैटी एसिड्स और अमाइनो एसिड्स का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं। ये किन लोगों को यूज करना चाहिए? पहले तो ये बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में लिया जाना चाहिए। 40-45 के ऊपर यदि हो गए हैं महिलाएं और पुरुष तो उनके लिए सनफ्लावर सीड्स का कंजम्पशन उनके पूरे स्वास्थ्य को बहुत अच्छा रख सकता है। ब्रेन फंक्शनिंग को यानी आपके दिमाग की सोचने समझने की जो शक्तियां हैं इसको बहुत अच्छा करने में ये इफेक्टिव साबित हो सकता है। इसमें मैग्नीशियम, मैंगनीज, पोटेशियम, आयरन, सेलेनियम, जिंक यानी कि वो सारे तत्व जो आपके दिमाग को, आपके हृदय को, आपके सांस लेने वाले तंत्र को और आपकी अंतड़ियों को स्वस्थ रखते हैं, ये सारे तत्व इसमें बहुत अच्छी मात्रा में मौजूद हैं। इसको कैसे कंज्यूम किया जाना चाहिए, इसको भी भूंज के आप रख लें और आते जाते 1-2 चम्मच खा सकते हैं। किसी भी तरह के सीड्स को यदि आप खाने के आधे घंटे पहले खाते हैं तो खाने में यदि आपको 4 रोटी की भूख थी तो वो भूख कम होके 2-2.5 रोटी तक आ सकती है और उसी नरिशमेंट में आपका शरीर बहुत अच्छे से फंक्शन कर सकता है। इससे पहले भी मैंने बताया था कि यदि परिवार में पार्किंसंस, पैरालिसिस या अल्जाइमर से संबंधित किसी भी तरह की परेशानियां हैं तो उसमें सूरजमुखी के बीज देना भी बहुत कारगर साबित हो सकता है। यदि आप 40-45 के ऊपर हैं तो इसको हफ्ते में एक दिन छोड़ के रोज 1-1.5 चम्मच खाने के आधा घंटा पहले जरूर लें। इसके बाद हम आते हैं मेथी दाना पे। मेथी दाना जो है हम बघार में यूज करते हैं और शायद हर कोई अपने अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से खाता है या यूज करता है, पर हमें ये जानना जरूरी है कि इसके फायदे और नुकसान क्या है। मेथी को यदि पानी में भिगो के रखते हैं रात भर 1 गिलास पानी में और सुबह लेते हैं तो ये बादी हटाने का यानी कि मोटापा घटाने का बहुत अच्छा काम करता है। यदि मेथी को थोड़ा सा दरदरा पीस के खाने के 20-25 मिनट पहले आप 1-2 चुटकी ऐसी मेथी लेते हैं तो ये आपके ब्लड शुगर को नियंत्रित करने का बहुत अच्छा काम कर सकता है। जिनको ऐसा लगता है कि उन्हें कब्ज से संबंधित किसी भी तरह की परेशानी है तो वो मेथी के अंकुरित बीज यदि लेते हैं रोज खाने में सुबह, दोपहर, शाम तो ये उनकी कब्ज की परेशानी पूरी तरह से मिटाने में कारगर साबित हो सकता है। ठंड के दिनों में मेथी के लड्डू या मेथी से बनने वाली अलग अलग मिठाई बहुत इफेक्टिव चीज है और इसको जरूर लीजिए। लेकिन मेथी आपका ब्लड शुगर बहुत तेजी से कम करने का काम करता है तो जिन लोगों को शुगर की बिल्कुल भी परेशानी नहीं है मेथी उनके लिए नहीं है। उन लोगों के लिए सिर्फ यदि बघार में आप थोड़ी बहुत मेथी यूज करते हैं उतना आपके लिए काफी है। आप उसके अलावा यदि बहुत ज्यादा मेथी यूज करते हैं किसी भी कारणवश तो वो आपका ब्लड शुगर बहुत लो लेके आ सकता है और आपको लो बीपी की समस्या भी लेके आ सकता है। तो मेथी एक ऐसी चीज है जिसको थोड़ा सा सोच समझ के यदि आप यूज करते हैं तो आप इसके फायदे ले सकते हैं।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पोषण बीज विषय पर डॉक्टर निधि पांडे से वार्ता और अब सुनते हैं ये सुंदर सा गीत।

श्रोताओं आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पण। श्रोताओं, हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी सेगमेंट में आज हम बात करेंगे बिग डेटा और स्वास्थ्य अनुसंधान की। श्रोताओं, आज के समय में अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों, लैब रिपोर्ट, टीकाकरण, स्वास्थ्य सर्वेक्षण और पहनने योग्य स्मार्ट उपकरणों से हर रोज बड़ी मात्रा में स्वास्थ्य संबंधी जानकारी एकत्रित होती है। जब इस विशाल जानकारी का वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण किया जाता है तो इसे बिग डेटा कहा जाता है। ये बिग डेटा डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को नई बीमारियों को समझने, बेहतर उपचार खोजने और लोगों को स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए नई नई योजनाएं बनाने में भी मदद करता है। श्रोताओं, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ मिलकर बिग डेटा स्वास्थ्य अनुसंधान को और भी सटीक बना रहा है। इससे रोगों की पहचान जल्दी हो सकती है, उपचार को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है और भविष्य में बीमारी के जोखिम का अनुमान लगाने में भी सहायता मिलती है। इसीलिए स्वास्थ्य संबंधी डेटा का उपयोग हमेशा सुरक्षित, जिम्मेदारी पूर्वक और निर्धारित नियमों के अनुसार ही करना चाहिए। और अब रुख करते हैं मौसम की ओर और सुनते हैं ये सुंदर सा गीत।

0: श्रोता, हमारी हर दिन की भोजन की थाली सिर्फ हमारी भूख को मिटाने या पेट भरने का जरिया नहीं, बल्कि स्वस्थ और लंबी जिंदगी की नींव भी है। सही मात्रा में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, मिनरल्स, वसा शरीर को ऊर्जा देने के साथ साथ इम्यूनिटी भी देती है, दिल, दिमाग, हड्डियों और पाचन तंत्र को भी मजबूत करती है। इसीलिए कोशिश करें कि हमारी थाली में सभी प्रकार के पोषक तत्व शामिल हों। और अब कार्यक्रम में वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अनुमति दीजिए आपकी रेडियो दोस्त नेहा को। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य दर्पणम। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1:30 होने को हैं। लीजिए प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं देवीदास कुशवाहा और साथ ही इनसे आप सुनेंगे बुंदेली लोकगीत।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे देवीदास कुशवाहा और साथियों के गाए बुंदेली लोकगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति थी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण और हम आपको सुनवा रहे हैं सुगम संगीत के कार्यक्रम में भारती विश्वनाथन की गाई गजलें। ये कार्यक्रम भी आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत के कार्यक्रम में भारती विश्वनाथन की गाई गजलें। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत।

ये गाना था फिल्म लोफर का, आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी की, आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। अब हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में फिल्म गहरा जख्म का एक गीत। विठल भाई पटेल ने इस गाने को लिखा है, आर डी बर्मन का संगीत है। सुनते हैं ये गीत कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में 2:10 होने के हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार कुछ ही पल में।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सर्वोच्च न्यायालय ने आज उस जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया जिसमें केंद्र सरकार और अन्य संबंधित पक्षों को ये निर्देश देने का अनुरोध किया गया था कि देशभर के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल में मौजूद एथेनॉल की सटीक मात्रा अनिवार्य रूप से बताई जाए। अधिवक्ता नरेंद्र गोस्वामी द्वारा दायर याचिका में एथेनॉल मिश्रित ईंधन के गाड़ियों में इस्तेमाल की अनुकूलता के बारे में अधिक पारदर्शिता देने के निर्देश की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति M.M. सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। हालांकि पीठ ने उन्हें अपनी शिकायत लेकर संबंधित उच्च न्यायालय जाने की छूट दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज निवाड़ी जिले के ओरछाधाम में श्री रामराजा मंदिर परिसर और श्री रामराजा लोक के निर्माण एवं विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से प्रगति की जानकारी लेकर सभी कार्य गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ओरछा की प्राचीन धरोहरों को संरक्षित और संवर्धित करते हुए इसे धार्मिक पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है।
2: मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के माध्यम से ये धार्मिक पर्यटन का अद्भुत केंद्र बना रहे हैं। ऐसे में गौरवशाली अतीत राजा राम लोक का उस समय का भगवान राम के मंदिर बनाने के साथ यहाँ के शासकों ने जो अपने निवास बनाए स्थापत्य के अद्भुत ये उदाहरण है। वातानुकूलित आज ऐसी है लेकिन उस काल में भी ठंडे में गर्म गर्म से ठंडे रहने के लिए मौसम को रहने लायक बना करके रहना ये जो अद्भुत नमूने हैं ये प्राचीन धरोहर हमारे लिए हमारे गौरवशाली अतीत से सदैव जोड़ती है।
1: उज्जैन में भगवान महाकाल की भाद्रपद माह की पहली और इस वर्ष की 5वीं सवारी आज शाम 4 निकलेगी। पूजन अर्चन के बाद बाबा महाकाल पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण करेंगे। सवारी के दौरान श्रद्धालुओं को भगवान के 5 स्वरूपों के दर्शन होंगे। रामघाट पर क्षिप्रा के जल से भगवान का अभिषेक और पूजन किया जाएगा। इस बार सवारी में पहली बार सामाजिक संस्थाओं की ओर से एक रोबोट को भी शामिल किया जा रहा है। मंदिर समिति की अनुमति से शामिल इस रोबोट के रामघाट पहुंचने पर शिवधुन सुनाई जाएगी और आरती में भी यह रोबोट शामिल होगा। इसे सवारी के साथ कुछ दूरी तक चलाया जाएगा। उमरिया जिले में छात्राओं से छेड़छाड़ के मामले में प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई की है। सुल्तानपुर गांव के शासकीय प्राथमिक विद्यालय के सहायक शिक्षक कोमल चंद्र गुप्ता के खिलाफ पुलिस ने विभिन्न धाराओं में FIR दर्ज की है। आरोप सही पाए जाने पर शिक्षक को तत्काल निलंबित कर मानपुर के विकासखंड शिक्षाधिकारी कार्यालय से अटैच किया गया है। मंत्रालय स्थित वल्लभ भाई पटेल पार्क में कल सुबह राष्ट्रगीत वंदे मातरम और राष्ट्रगान जनगणमन का सामूहिक गायन होगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने वल्लभ भवन, विंध्याचल और सतपुड़ा भवन के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सुबह 10 अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में बारिश का दौर फिर तेज हो गया है। मौसम विभाग ने सोमवार को रीवा, मऊगंज, मैहर, सीधी, उमरिया के साथ शहडोल, डिंडौरी, अनूपपुर, मंडला और सिवनी तथा बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं भोपाल सहित कई जिलों में बारिश के आसार हैं। शहडोल में बाणसागर बांध के 6 गेट खोले गए हैं। प्रदेश में अब तक 27.2 बारिश हुई है जो सामान्य से 9% कम है। वहीं क्रिकेट की खबर में महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट के ग्रुप बी मुकाबले में आज बांग्लादेश का सामना इंडोनेशिया से होगा। दुबई में ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8 से शुरू होगा। प्रतियोगिता में कल भारत ने थाईलैंड को 94 से हराकर अपने अभियान की शुरुआत की थी। शेफाली वर्मा को 64 की शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था। कुछ समाचार अब संक्षेप में। शिवपुरी जिले के 196 तीर्थयात्री मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत 7 को रामेश्वरम के लिए रवाना होंगे। इच्छुक बुजुर्ग कल शाम 5 तक आवेदन कर सकते हैं। और सतना जिले में हो रही बारिश के चलते कलेक्टर डॉक्टर सतीश कुमार S ने पूरे जिले में आपदा प्रबंधन टीम और सभी अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:15 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। सरकार ने 1,27,000 करोड़ रुपए के व्यय के साथ सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के दूसरे चरण के सभी 6 स्तंभों को अधिसूचित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निफ्ट के विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। भारतीय नौसेना ने गोताखोरी और गहरे पानी के नीचे के अभियानों में सहायता के लिए INS निपुण को बेड़े में शामिल किया। नेपाल में अचानक आई भीषण बाढ़ के बाद राहत और बचाव अभियान तेज। मृतकों की संख्या बढ़कर 903 हुई, 4,000 से अधिक लोग अब भी लापता। और फुटबॉल में भारत आज ताशकंद में AFC अंडर 20 एशियाई कप क्वालिफाइंग अभियान में आज सीरिया से मुकाबला करेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान में आज शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इनमें रूस, ईरान और किर्गिस्तान के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बैठकें शामिल है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा के पहले दिन आज राजधानी बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद किया।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिश्केक में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ आत्मीय संवाद किया। प्रधानमंत्री ने भारत और किर्गिज गणराज्य के बीच मैत्री संबंधों को मजबूत करने में भारतीय समुदाय की ऊर्जा, उत्साह और महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। अपनी किर्गिस्तान यात्रा के दौरान श्री मोदी ने आज बिश्केक स्थित महात्मा गांधी स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। यह श्रद्धांजलि महात्मा गांधी के विचारों की प्रासंगिकता और उनकी सार्वभौमिक स्वीकार्यता को दर्शाती है। प्रधानमंत्री कल शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: इससे पहले उज्बेकिस्तान की 2 दिन की राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कल ताशकंद में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ बातचीत की। दोनों नेता भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उज्बेकिस्तान में भारत की संस्कृति, इतिहास, भाषाओं और विचारों के प्रति लोगों का लगातार बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने तमिल भाषा और संस्कृति में बढ़ती रुचि के साथ तिरुक्कुरल के महत्व का भी जिक्र किया।
2: सैकड़ों साल पहले तमिल भाषा में एक तिरुक्कुरल जो लिखा गया है, आज भी जीवन के सब क्षेत्रों में वो बहुत ही प्रेरणा देने वाला और अध्यात्म भी है, फिलोसॉफी है, व्यवहारु ज्ञान भी है। जब आप 80 साल मना रहे हैं तो क्या ये कल्पना कर सकते हैं कि उज्बेक में तिरुकुरल का यहाँ के लैंग्वेज में अनुवाद हो? सचमुच में वो यहाँ आपके ज्ञान के अंदर संवर्धन करेगा।
0: सरकार ने देश में चिप विनिर्माण तंत्र को बढ़ावा देने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए के व्यय के साथ सेमिकॉन कार्यक्रम के दूसरे चरण को अधिसूचित किया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आगामी वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में भारत की हिस्सेदारी करीब 10% हो सकती है। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में बड़ी भूमिका निभाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। श्री वैष्णव ने सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम के दूसरे चरण के सभी 6 स्तंभों

0: की अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि सरकार का जोर भारत को वेफर निर्माण से लेकर चिप उत्पादन तक वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने पर है।
1: वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग को भरोसा है कि आने वाले दशकों में भारत बड़े निवेश के लिए एक प्रमुख केंद्र बनेगा। इसका प्रमाण हमें सेमिकॉन 1 के तहत मंजूर की गई परियोजनाओं से मिलता है। इनमें कई इकाइयों ने भूमि पूजन के केवल 13 महीने के भीतर व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया है। इसी तेज गति ने वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग का भारत पर भरोसा और मजबूत किया है।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: अपडेट रहे, आगे रहें। expert@airnews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि वस्त्र और परिधान क्षेत्र न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि ये लाखों लोगों को रोजगार और आजीविका भी प्रदान करता है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि फैशन और वस्त्र प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की वैश्विक उपस्थिति बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं।
3: फैशन टेक्नोलॉजी भी ऐसा क्षेत्र है जिसमें विश्व स्तर पर भारत की भूमिका बढ़ाने को अपार संभावना है। आपको इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। इस प्रयास में आप स्मरण रखें कि आपकी सोच वैश्विक हो, लेकिन आपकी जड़ें अपने मिट्टी की विशिष्टता और जीवन मूल्यों से जुड़े। इस तरह आप न केवल सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनेंगे, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन में भी अपना योगदान दे सकेंगे।
0: वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प में युवाओं से योगदान देने का आह्वान करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को रोजगार देने वाला बनने का प्रयास करना चाहिए।
3: आप ऐसे समय में फैशन टेक्नोलॉजी के विभिन्न विधाओं के स्नातक बन रहे हैं, जो भारत आत्मनिर्भरता के अनेक आयामों पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे देश पहले की तुलना में कहीं अधिक आत्मविश्वास के साथ विश्व पटल पर अपनी भूमिका को विस्तार दे रहे हैं। मुझे बताया गया है कि 20 साल पहले महिलाओं की संख्या केवल 20% था। अभी 4000 करीब जो बच्चे यहाँ उपस्थित है, उनमें से 85% महिलाएं हैं।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी 3M से भारत में अनुसंधान और विकास, उन्नत विनिर्माण और स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला में निवेश बढ़ाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि भारत तेजी से प्रौद्योगिकी, नवाचार और वैश्विक विनिर्माण के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर रहा है और वैश्विक कंपनियों के लिए यहाँ व्यापक अवसर हैं। एक रिपोर्ट।
4: वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वित्त मंत्री ने अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में आयोजित G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक से इतर 3M के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलियम ब्राउन के साथ वार्ता की। बैठक में इस बात पर विचार किया गया कि भारत अब केवल बड़े उपभोक्ता बाजार तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्नत विनिर्माण, प्रौद्योगिकी विकास और नवाचार आधारित उत्पादन का वैश्विक मंच बनता जा रहा है। श्रीमती सीतारामन ने 3M से स्थानीयकरण बढ़ाने, अनुसंधान और विकास गतिविधियों का विस्तार करने तथा नई प्रौद्योगिकियों के विकास में अधिक निवेश करने का आग्रह किया। 3M के चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलियम ब्राउन ने भारत में उपलब्ध विशाल प्रतिभा संसाधन की सराहना की। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: भारतीय नौसेना ने आज मुंबई के नौसेना गोदी में निस्तार श्रेणी के दूसरे डाइविंग सपोर्ट पोत INS निपुण को अपने बेड़े में शामिल किया। समारोह में नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने कहा कि INS निपुण पानी के नीचे चलाए जाने वाले विशेष अभियानों में महत्वपूर्ण साबित होगा।
4: आज हम तेजी से बदलती रणनीतिक परिस्थितियों के दौर से गुजर रहे हैं। समुद्री क्षेत्र में चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। भविष्य के खतरों का सटीक अनुमान हमेशा संभव नहीं है, लेकिन संभावित खतरों के लिए तैयार रहना और उनसे प्रभावी ढंग से निपटने की क्षमता विकसित करना आवश्यक है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि खतरा कहीं भी और कभी भी सामने आए, हम उसका समय पर प्रभाव

0: प्रभावी ढंग से सामना करें।
1: इसे विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR के बाद मसौदा जारी कर दिया है। सूची के अनुसार 97 लाख से अधिक मतदाता इसमें शामिल हैं, जबकि 47 लाख से अधिक मतदाताओं का नाम सूची से हटाया गया है। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया है कि जिन मतदाताओं के नाम सूची में नहीं है, वे 30 सितंबर तक Form 6 और आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने दावे दाखिल कर सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची नवम्बर में जारी की जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि इस वर्ष दिसंबर में बांग्लादेश के साथ समाप्त हो रहे 30 वर्षीय गंगा पद्मा जल बंटवारे समझौते के नवीनीकरण से पहले राज्य के हितों की तरफ ध्यान दिया जाए। राज्य सरकार ने नए समझौते में पर्यावरण संरक्षण और भविष्य की जल आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने की मांग की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
1: नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है। 4,247 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। सभी 8 प्रभावित जिलों में राहत और बचाव अभियान तेजी से जारी है। एक रिपोर्ट।
3: नेपाल में 5 से अधिक जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़े ढांचों में 900 से अधिक श्रमिकों के फंसे होने की आशंका है। भारत और अन्य देशों के विशेषज्ञों के सहयोग से बचाव दल त्रिशूली 3A सहित कई जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़ी सुरंगों में तलाश की जा रही है। तिब्बत में मृतकों की संख्या 16 हो गई है, जबकि 546 लोग लापता है। भारतीय बचाव दल चिली में और लांगटाक में पनबिजली संयंत्रों पर नेपाल की सेना के साथ मिलकर काम कर रहा है। नेपाली सेना के प्रवक्ता राजा राम बसनेट ने बताया कि अत्यधिक मलबे के कारण सुरंगों तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। लगभग 21,000 सुरक्षाकर्मी राहत और बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: इस बीच नेपाल में भीषण बाढ़ और जल ग्रहण क्षेत्रों में तेज बारिश के कारण बिहार में गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए वाल्मीकि नगर बैराज के सभी 36 गेट और कोसी स्थित बीरपुर बैराज के 56 में से 25 गेट खोल दिए गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है। मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर बाढ़ की स्थिति ने हालात को जटिल बना दिया है। एक रिपोर्ट।
4: पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। शहडोल में बाणसागर डैम में पानी बढ़ने से कुछ समय के लिए डैम के गेट खोलने पड़े। गोरगी बांध फूटने से कई इलाकों में पानी भर गया, जबकि तेज बहाव ने रामघाट के बड़े पुल को भी नुकसान पहुंचाया। मौसम विभाग ने आज रीवा, मऊगंज, मेहर, सीधी, उमरिया, शहडोल, डिंडोरी, अनूपपुर, मंडला, सिवनी और बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: इस बीच मौसम विभाग ने आज ओडिशा और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। कल तक बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड और सभी पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश का अनुमान है। फुटबॉल में भारत की अंडर-20 टीम आज ताशकंद में AFC अंडर-20 एशियन कप चीन 2027 क्वालिफायर अभियान की शुरुआत सीरिया के साथ मुकाबले से करेगी। मेजबान उज़्बेकिस्तान और बांग्लादेश के साथ ग्रुप बी में शामिल भारतीय टीम 2006 के बाद पहली बार AFC अंडर-20 एशियन कप में वापसी के उद्देश्य से क्वालिफायर में उतर रही है। महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट के ग्रुप बी मुकाबले में आज बांग्लादेश का सामना इंडोनेशिया से होगा। दुबई में ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में एक बड़े उलटफेर में सर्बिया के नोवाक जोकोविच पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। उन्हें अर्जेंटीना के मारियानो नावोन से हार का सामना करना पड़ा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बैंकिंग और क्रेडिट तक पहुंच के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 0112331 0481 और 2371 1117। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय

0: बैठकें करेंगे। सरकार ने सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के दूसरे चरण के सभी 6 स्तंभों को अधिसूचित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निफ्ट के विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। भारतीय नौसेना ने गोताखोरी और गहरे पानी के नीचे के अभियानों में सहायता के लिए INS निपुण को अपने बेड़े में शामिल किया। नेपाल में अचानक आई भीषण बाढ़ के बाद राहत और बचाव अभियान तेज, मृतकों की संख्या बढ़कर 903 हुई, 4000 से अधिक लोग अब भी लापता। और फुटबॉल में भारत आज ताशकंद में AFC Under-20 एशियाई कप क्वालिफाइंग अभियान में सीरिया से मुकाबला करेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश लेकर हाजिर हूं मैं जावेद खान। सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म त्रिशूल का एक गाना। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। साहिर लुधियानवी ने इस गाने को लिखा है और खय्याम का संगीत है। और इस गाने की फरमाइश गाने के बाद।

त्रिशूल के इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश थी धामड़ी मनोरा से, लिखने वाले हैं तुलसीराम डेरे, मायावती डेरे, संदेश डेरे, आदेश डेरे, किरण डेरे, उज्जवल डेरे और अनुत्तर डेरे ने पसंद किया था। और इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई दतरंगी से छत्तीसगढ़ से, लिखने वाले हैं भागवत वर्मा, लेवई से गुलाब दास मणिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, चर डोंगरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू। और इसी गाने के लिए फरमाइश आई है घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सम्मति पंचोलिया ने। अगला गाना लिया है हमने फिल्म नूर महल से, आवाज़ें सुमन कल्याणपुर की और साथियों की हैं। बाबा अफगानी ने इस गाने को लिखा है और जानी बाबू कव्वाल ने इसे संगीत से सजाया है। सुनते हैं ये गीत।

नूर महल के इस गाने को पसंद किया था सरोचोक अमरावती महाराष्ट्र से, कमर लठे केदार नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, अस्मा, सालिया, शोएब, साइमा, मुश्तबा, आफिया खान, रऊफ भाई, शाहिद भाई, और गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई थी जय राज प्लॉट राजकोट से, मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जासमीन और प्रयागराज भट्ट। गाने की फरमाइश, इसी गाने की फरमाइश भेजिए पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से। लिखने वाले हैं मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। अब अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, फिल्म का नाम है मौसम, आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी के साथ में लता मंगेशकर और साथियों की भी है। गुलजार ने इस गाने को लिखा है, मदन मोहन का संगीत है और ये फिल्म 1975 में रिलीज़ हुई थी। सुनते हैं ये गीत और इस गाने को किसने पसंद किया है, फरमाइश बाद में।

मौसम फिल्म में अभी आपने सुना है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर को। इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई थी छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, शीतल राजेश। और इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है गौतम नगर ज़िला नादेड़ से प्रभाकर जौंदले, आरती जौंदले और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। इसी गाने को पसंद किया था जय किसान रेडियो श्रोता संघ कोटड़ा, बहादुरपुर जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से। लिखने वाले हैं तूफान डांगी पटेल, नेपाल डांगी, राहुल डांगी, पप्पूलाल डांगी और विक्रम डांगी ने। और अगला गाना हमने लिया है चंबल की कसम से, आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के। साहिर लुधियानवी ने इस गाने को लिखा है और खय्याम का संगीत है।

चंबल की कसम फिल्म के गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है, ये पत्र है। स्टार रेडियो श्रोता संघ रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से लिखने वाले हैं जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार ने इस गाने को पसंद किया है। और इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश है अंबेडकर चौक खुरई से राम सखी परमानंद सौरव गौरव एल पी रोहित लल्लू राम पूरन रोहित छोटू और समस्त उनका परिवार। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी, डुमराव बिहार से डॉक्टर बबलू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा, डॉक्टर डब्लू अंसारी और दानिश अंसारी, सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी और असमा खातून अंसारी, जेल रोड नई दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और दिव्या भारती ने इस गाने को पसंद किया था। अगला गाना हमने लिया है, फिल्म का नाम है जीवन मृत्यु। आवाज़ हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। सुनिए ये गीत।

फिल्मी जीवन मृत्यु के इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई थी रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, आदर्श नगर मलोड से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंटी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा ने पसंद किया था। और इसी गाने के लिए फरमाइश आई थी गोला बाजार बक्सर से, लिखने वाले थे श्रद्धानंद आर्य, अभिनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित और उनके परिवार के सभी सदस्य। इसी गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

0: इस समय आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। हमारी स्टूडियो की घड़ी में 2:58 होने को हैं। लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज निवाड़ी जिले के ओरछा में श्री राम राजा मंदिर परिसर और श्री राम राजा लोक के निर्माण एवं विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से प्रगति की जानकारी लेकर सभी कार्य गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। सर्वोच्च न्यायालय ने आज उस जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें केंद्र सरकार और अन्य संबंधित पक्षों को ये निर्देश देने का अनुरोध किया गया था कि देश भर के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल में मौजूद एथेनॉल की सटीक मात्रा अनिवार्य रूप से बताई जाए। उज्जैन में भगवान महाकाल की भाद्रपद माह की पहली और इस वर्ष की 5वीं सवारी आज शाम 4 बजे निकलेगी। पूजन अर्चन के बाद बाबा महाकाल पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण करेंगे। सवारी के दौरान श्रद्धालुओं को भगवान के 5 स्वरूपों के दर्शन होंगे। मंत्रालय स्थित वल्लभ भाई पटेल पार्क में कल सुबह राष्ट्रगीत वंदे मातरम और राष्ट्रगान जनगणमन का सामूहिक गायन होगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने वल्लभ भवन, विंध्याचल भवन और सतपुड़ा भवन के सभी अधिकारी और कर्मचारियों को सुबह 10 बजे अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं।

महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट के ग्रुप बी मुकाबले में आज बांग्लादेश का सामना इंडोनेशिया से होगा। दुबई में यह मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से शुरू होगा और मौसम विभाग ने आज रीवा, मऊगंज, मैहर, सीधी

कालीन की सभा सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले आज के मुख्य कार्यक्रमों के बारे में हम आपको बता दें। युवा साथियों का नियमित कार्यक्रम युवाणी रोज की तरह है 5:02 पर होगा और आज का युवाणी कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति होगी। फिल्म संगीत का आप आनंद ले सकते हैं 5:33 पर। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम होगा 6:00। फिल्म संगीत आप सुनेंगे 6:30 पर। कार्यक्रम आजकल 6:40 पर प्रसारित किया जाएगा और प्रदेश समाचार प्रादेशिक समाचार दर्शन आप सुन सकते हैं 6:45 पर। किसान भाइयों का कार्यक्रम ग्राम सभा 7:21 पर होगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किया जाएगा। 8:00 का समय है कार्यक्रम सुर्खियों में आप सुन सकते हैं और फिल्म संगीत हम आपको सुनवाएंगे 8:15 पर। पब्लिक स्पीक ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 9:30 पर। यह कार्यक्रम हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। आपकी फरमाइश 10:00। और शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में आज 10:30 पर रात में हम आपको सुनवाएंगे डॉक्टर सुमती मोटाटकर का ध्रुपद धमार गायन, राग होगा खमाज। ये थे आज की शाम की सभा में प्रसारित होने वाले आकाशवाणी मध्य प्रदेश और आकाशवाणी भोपाल के मुख्य कार्यक्रम। मीडियम 50 THK के ऑडियो चैनल साथ ही न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रसारण। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में 3:02 होने को है। अब हमारा मीडिया वेब पर प्रसारण कुछ देर के लिए बंद होता है। अब से कुछ ही देर बाद यानी शाम 5:00 से आप हमारा मीडियम वेव का प्रसारण पुनः सुन सकते हैं। इस बीच DTH के ऑडियो चैनल पर प्रसारण जारी रहेगा।

डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जावेद खान। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जावेद खान। लीजिए सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम। लोक संगीत के कार्यक्रम में आज हम सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं देवीदास कुशवाहा और साथियों के गाए बुंदेली लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे देवी दास कुशवा और साथियों के गाए बुंदेली लोकगीत। आप सुन रहे हैं डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण, और लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत के कार्यक्रम में भारती विश्वनाथन के गाए भजन।

0: कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आपको याद दिलाते हैं सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज के कलाकार थे भारती विश्वनाथन, इनसे आप सुन रहे थे गजलें। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण, और लीजिए आप सुनिए चित्रपट संगीत। चित्रपट संगीत में सबसे पहले किशोर कुमार की आवाज़ में एक गाना जिसको हमने लिया है फिल्म याराना से, अनजान ने लिखा है और राजेश रोशन का संगीत है।
1: तेरे

अगला गाना लिया है हमने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, फिल्म का नाम है जिंदगी। हसरत जयपुरी ने इस गाने को लिखा है और शंकर जयकिशन का संगीत है। सुनिए यह खूबसूरत गीत।

0: अब हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में एक गाना, जिसको लिया है हमने नमक हलाल से। किशोर कुमार के साथ दूसरी आवाज है आयशा भोसले की, अनजान का लिखा हुआ गाना है, बप्पी लहरी का संगीत है।
1: अरे

अब हम आपको सुनवा रहे हैं जमीर फिल्म में किशोर कुमार को। साहिर लुधियानवी ने इस गाने को लिखा है, सपन चक्रवर्ती का संगीत है।

ये गाना था फिल्म फर्स्ट लव का, आवाज़ थी मुकेश की। गुलशन बावरा ने इस गाने को लिखा था और दत्ताराम का संगीत था। अब हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में एक गाना जिसको हमने लिया है फिल्म सगन से। राजेंद्र कृष्ण ने इस गाने को लिखा है, रवि का संगीत है।

0: पापे ना शर्मा
1: सगाई के बाद अगला गाना है फिल्म सच्चाई का. आवाज आशा भोसले और मोहम्मद रफी की है. राजेंद्र कृष्ण ने इस गाने को लिखा है और शंकर जी किशन का संगीत है. यह कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति.

0: इसी गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3:58 होने को हैं। लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिश्केक में संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन से अलग आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रक्षा, अर्थव्यवस्था, दवा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संस्कृति और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने देश में चिप विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपये के बजट वाली सेमीकॉन के दूसरे चरण की योजना को अधिसूचित किया है। इससे आगामी वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में भारत की हिस्सेदारी करीब 10% हो सकती है। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए चौथा भारत जर्मनी पर्यावरण मंच कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और जर्मनी के पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण, जलवायु संरक्षण और परमाणु सुरक्षा मंत्री कॉर्स्टेन श्राइडर इस मंच की सह अध्यक्षता करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज निवाड़ी जिले के ओरछा में श्री राम राजा मंदिर परिसर और श्री राम राजा लोक के निर्माण एवं विकास कार्यों का निरीक्षण किया और उज्जैन में भगवान महाकाल की भाद्रपद माह की पहली और इस वर्ष की 5वीं सवारी आज शाम 4 बजे निकलेगी। पूजन अर्चन के बाद बाबा महाकाल पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण करेंगे। सवारी के दौरान श्रद्धालुओं को भगवान के 5 स्वरूपों के दर्शन होंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में

दोस्तों, अभी आप गुलूकार गुलाम अली की जादुई आवाज में गजल समात फरमा रहे थे और कलाम था हबीब लतीफ का। सामीन, प्रोग्राम की आखिरी कड़ी में हम एक ऐसी शायरा के कलाम से लुत्फानंदोज होंगे जिन्होंने उर्दू शायरी के मैदान में अपनी एक अलग शनाख्त कायम की है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ शायरा नुसरत मेहदी की। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी उनका कलाम।

0: जी है।
1: दोस्तों, अभी आप शायरा नुसरत मेहंदी से उनका कलाम समाप्त फरमा रहे थे। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम आईना यहीं ख़त्म होता है। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, अपने खतूत के ज़रिए हमें ज़रूर मुत्तला करें। हमारा पता नोट कीजिए, उर्दू प्रोग्राम आईना, मार्फत स्टेशन डायरेक्टर आकाशवाणी, शामला हिल्स, भोपाल, पिन 462002। अब आपके दोस्त वाजिद खान को दीजिए इजाज़त। आदाब।

अभी आप सुन रहे थे उर्दू प्रोग्राम आईना। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में 4:30 होने को हैं।

डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 4:30 हुए हैं और लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। इसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं धारावाहिक जमुनिया की 13वीं कड़ी।

0: भैया।
1: अभी तक आपने सुना है कि जमुनिया अपने पति के साथ सुखी थी। खेती के लिए रतन के भाई करण ने गांव के जमींदार दीवान से 10,000 रुपए का कर्ज दिला दिया। बाद में छल पूर्वक कर्ज की राशि 25,000 करवा दी। रतन को जब इस बात का पता चला तो वो इसे सह नहीं पाया और उसने आत्महत्या कर ली। उसी समय जमुनिया ने एक बच्ची को जन्म दिया जिसे उसने नाम दिया चिरैया। इसी समय करण ने जमुनिया को घर से निकाल दिया। छल पूर्वक उसने जमुनिया का बेटा भी हत्या लिया। पास के एक गांव के सहृदय झुल्लन ने उसे आसरा दिया। गांव के ही एक गुरुजी के पास जाकर उसने शिक्षा प्राप्त की। करण के पास कुछ भी नहीं बचा था। आखिरकार दीवान ने करण की पत्नी और गोलू को बंधुआ मजदूर बनाकर अपने पास रख लिया। इसी बीच गांव के सरपंची का चुनाव आया। अभी तक दीवान ने अपनी पत्नी से पर्चा भरवा दिया। उधर गांव के लोगों ने जमुनिया से भी सरपंची का पर्चा भरवा दिया। चुनाव प्रचार जारी था। दीवान छल बल प्रलोभन के भरोसे जीतना चाहता था और जमुनिया अपनी सच्चाई, लोगों के प्रति हमदर्दी और गांव के विकास के भरोसे जीतना चाहती थी।
2: नमस्ते शिल्पी बहन, क्यों बुखार आ गया?
3: अरे आओ जमुनिया, आओ, थोड़ी हरारत है, ठीक हो जाएगी।
4: अरे हाँ, तुम बैठो, मैं कागज भूल आया हूँ, अभी लेकर आता हूँ।
2: कैसा कागज, क्यों जयंत भैया?
4: ये लो, इसे ठीक से पढ़ लेना और कोई गलती हो तो बताना।
2: जी।
4: अरे इतनी जल्दी मत पढ़ो, आराम से बैठकर एक एक नाम पढ़ना। जिनके नाम होने चाहिए ना हो तो अलग से नोट कर लेना, और जिनके नाम नहीं होने चाहिए वो हो तो उन्हें भी अलग से नोट कर लेना।
2: जी कोशिश करूंगी, तो फिर चले?
4: हाँ चलो।
5: चलिए
6: देखो, जीवन के चलते तो अंग्रेजी मिल गई, नहीं तो ये सारी देसी भी नसीब नहीं होती यार।
4: जमुनिया, ये कौन है जो शराब के नशे में गिरा पड़ा है?
2: इसी गांव का है, चुनाव से पहले दीवान ये भी पिलाता खिलाता है ना,
3: पर ये तो ठीक नहीं है।
4: हाँ, ऐसे तो खुलेआम चुनाव के आचार संहिता का उल्लंघन है। जमुनिया, हमें कुछ करना चाहिए।
3: हाँ जमुनिया,
2: हम क्या कर सकते हैं? दीवान को जाकर कहें कि इनको दारू मत पिलाओ, तो क्या वो मान जाएगा?
4: अरे नहीं, हमें दीवान से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं इसकी शिकायत चुनाव अधिकारी से करूंगा।
3: मगर ये तो बताओ, हम साबित कैसे करेंगे कि दीवान दारू पिला रहा है?
4: हम ये कहां कहेंगे कि दीवान पिला रहा है, चुनाव अधिकारी भी तो कुछ पता करेगा ना।
3: अरे दीवान उसे मिला लेगा।
4: मेघा, इस तरह तो हम पहले ही हार बैठेंगे, कुछ तो कहीं भरोसे लायक होगा, हम हार कर क्यों बैठे? शिकायत से दीवान को यह तो लगेगा कि चुनाव में हर बार की तरह दारू पिलाने का उसका तरीका चुपचाप स्वीकार नहीं कर लिया जाएगा। हमें उसे ये तो बताने का हक है कि हम जागरूक हैं।
3: एक काम मेरी समझ में और आ रहा है।
4: वो कौन सा?
2: वो क्या मेघा दीदी?
3: देखो, गांव वालों को हम रोज समझा रहे हैं, उन्हें एक तरह से प्रशिक्षित कर रहे हैं कि वो जाने कि वोट का मतलब क्या है, उसकी ताकत क्या है।
2: वो तो है, ये खाली कागज का टुकड़ा नहीं है जिसे भेड़ बकरी की तरह बिना सोचे समझे ही डब्बे में डाल दिया जाए।
3: तो आज हम एक काम करते हैं।
2: क्या?
3: आज औरतों की एक सभा करते हैं, छोटी मोटी, उन्हें समझाएंगे कि वोट में कितनी ताकत होती है ना, उनसे आग्रह करेंगे एक दिन के लिए।
2: वाह दीदी, बात मेरी समझ में भी आ रही है, कुछ कुछ।
3: कुछ कुछ क्या समझ में आ रहा है? कुछ कुछ।
2: देखो भाई लोग, ये जो दारू की लत है एक दिन में तो जाएगी नहीं, ऐसा तो होगा नहीं कि हमने कहा और वो लोग दारू पीना छोड़ दें।
4: तो फिर
2: हम बहनों से इतनी विनती करेंगी

0: कि वोटिंग वाले दिन से पहले की रात वो अपने आदमियों से एक वादा लें कि कम से कम एक दिन दारू न पिए। इसके लिए वो खुद एक रात जागे, अपने अपने आदमी की निगरानी करे कि वो दारू न पिए, ताकि वोट डालने वाले दिन वो होश में रहे। जिसे भी वोट डालना है वो सोचने समझने लायक हो। नशे में वोट डालने की आदत रोकनी होगी।
1: वाह जमुनिया, ये हुई ना कुछ बात।
2: हाँ, पर एक आदर्श स्थिति है ये, अगर हो जाए तो।
0: चलो मान लेते हैं कि सभी लोग ऐसा नहीं करेंगे, पर कुछ तो होगा। बिल्कुल कुछ ना करने से भी तो अच्छा है कि कुछ किया जाए।
1: हाँ, तो फिर हो जाए आज शाम महिला सभा।
3: हो जाए।
4: तो आई तो है, पर वो तो आई नहीं आज की बात है। अपन और का नहीं तो क्या, इसीलिए तो आए हैं।
5: तो बोलेंगे क्या?
4: तो आई नहीं
5: जैसे
4: चुनाव शुरू हो रहा।
5: हां वो बोल बोल रही है। सुन
2: बहनों, हां हमने जानबूझकर ये सभा आप बहनों के लिए बुलाई।
5: अरे वाह,
2: ये बताने के लिए कि आने वाले समय में इस गांव का विकास हो, हमारी जिंदगी बेहतर हो और इसमें महिलाओं की बड़ी भूमिका हो। हाँ, इसके लिए हमें क्या करना है, है ना? और कैसे करना है, ये आपको जमुनिया जी बताएंगी।
5: हाँ।
0: बहनों, हम आपके ही बीच के हैं, थोड़ा बहुत पढ़े तो जे बात हमारी समझ में आई वो आप लोगों को बताना चाहते हैं। ये ठीक है, मर्द इस समाज के अगुआ हैं, अपना घर बार चलाने, अपनी इज्जत बचाने में उनकी बड़ी जिम्मेदारी है।
5: बिल्कुल ठीक बोल रही।
0: पर परिवार दो पहियों की गाड़ी से चलता है, हमारी जिम्मेदारी भी कम नहीं है। अपने आदमियों की दारू पीने की लत से तो हम सब वाकिफ हैं। ये बुराई रातों रात तो जाएगी नहीं, पर आप लोग दिल से कहिए, क्या शराबी पति किसी को अच्छा लगेगा? तो हम कोशिश तो कर ही सकते हैं, कल के बजाय आज से और फिर अभी से अपने अपने आदमियों से वादा लेना है कि कम से कम एक दिन के लिए वे दारू न पीने की कसम खाएं। आप अपनी कसम दीजिए कि वो वोट डालने से पहले वाली रात वे दारू ना पिए, ताकि जब वोट डाले तो होश में हो, उन्हें पता हो कि वे क्या करने जा रहे हैं। बल्कि आप खुद निगरानी करिए कि वे दारू ना पिए। मैं ये नहीं कहती कि वोट मुझे दीजिए, जिसे भी दे बस सोच समझ कर दें।
6: पर जमुनिया दीदी, आपकी बात तो चलो मान लेते हैं, पर इसमें हमारा क्या फायदा होगा?
7: जे लो, जे तो फायदा और नुकसान लेकर उड़ गई। अरे जमुनिया बहन ने इतना अच्छे से समझाया है, पर इनकी समझ में ही नहीं आया।
5: बात नहीं कर रही
7: तो क्या, गलत तो कह रही तुम।
0: बहन, फायदा नुकसान तो बात की बात है, पर आप ये बताइए कि ऐसा न करके आपको क्या फायदा मिल रहा है?
7: तो
0: वही जिल्लत भरी जिंदगी।
7: सही है।
0: जब तक हम कुछ अलग करेंगे नहीं, अलग होने वाला भी नहीं। बहनों, ये बात मैं बहुत सोच विचार कर कह रही हूँ। मुझे पक्का भरोसा है कि अगर यह करने में आप कामयाब रही, आने वाले दिन आज से बेहतर होंगे।
5: उसी दिन का तो इंतजार कर रहे हैं हम सब।
0: अपने आप को, अपनी ताकत को पहचानिए।
3: आपकी बात हमारी समझ में आ रही है।
0: एक बात और समझना जरूरी है।
5: वो क्या?
0: जैसे अभी एक बहन ने पूछा कि हमारा क्या फायदा होगा, तो जब तक हम सामूहिक फायदे की नहीं सोचेंगे, तब तक किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला।
7: सही में, सब इकट्ठे होके सोचो।
0: हम अलग अलग फायदे की सोचते हैं, इसी कमजोरी का फायदा उठाकर लोग हमारा ही इस्तेमाल कर रहे हैं। हम समझ ही नहीं पाते। गौर से देखिए, क्या ऐसा नहीं है?
7: ऐसा ही है।
0: एक अच्छी शुरुआत की कोशिश करके तो देखिए।
5: जरूर करेंगे।
6: पर जमुनिया दीदी, मेरा आदमी तो दारू पीता नहीं, पर हाँ अब मुझे भी कुछ कुछ समझ में तो आ रहा है।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है बहन, आप तो दूसरी औरतों से भाग्यशाली हैं।
6: हाँ जी जी,
0: तो क्यों ना आप दूसरी बहनों की मदद करती हैं?
6: ठीक है जमुनिया बहन।
7: हाँ, हम ये करके देखेंगे और आपको वचन भी देते हैं, है ना? सब लोग करेंगे, है ना?
0: तो हम भी आप लोगों को वचन देते हैं कि ईश्वर ने चाहा तो आने वाला समय हमारा होगा।
8: अरे ओए ओए जंदी फंदी, क्या सुन रहे हैं मुझे?
9: जी मालिक
8: कर रहे हो? अरे जई, ये जमुनिया ससुरी लोगों की शराब छुड़वा रही है।
9: सुना तो हमने भी यही है मालिक।
8: अरे सुना तो हमने भी यही है। अरे कमबख्तो, सुनते ही रहोगे या कुछ करोगे भी हैं? अरे चुनाव सिर पर चढ़ता आ रहा है और तुम लोग खाली सुन रहे हो।
9: अब ये तो है मालिक।
8: सुनो जी, लोगों में दारू की लत अभी से बढ़ा दो।
9: आओ मालिक,
8: दारू को दरिया की तरह बहा दो। कुछ भी करो, मुझे ये चुनाव जीतना ही है।
9: आओ मालिक, बिल्कुल
10: बिल्कुल मालिक।
8: अरे पहले मुझे लग रहा था कि ये जमुनिया कहाँ ठहरेगी, दीवान के सामने, मालकिन के सामने, पर बात तो ससुरी गंभीर होती जा रही है।
9: हाँ मालिक।
8: अरे अब तो नाम का सवाल होता जा रहा है। अरे अरे, तुम लोग अगर कुछ नहीं कर पाए तो सबसे पहले तुम लोगों को ही मार डालूंगा।
9: नहीं मालिक।
8: अरे आग तो गांव में भी लगाऊंगा, पर तुम लोगों को मार डालने के बाद
9: इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मालिक। हम लोग आपको भी जानते हैं और गांव वालों को भी।
10: और क्या?
8: चुप, खींची बंद कर। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, इसे गंभीरता से लेना। किसी भी कीमत पर मुझे ये चुनाव जीतना ही है।
9: हाँ मालिक।
8: अरे पहले तो सोचता था ये जमुनिया फमुनिया मेरा क्या बिगाड़ लेगी, चुनाव लड़ना चाह रही है, लड़ ले। अरे जीतना तो मालकिन को ही है, पर धीरे धीरे ये जमुनिया विषैली नागन बनती जा रही है। अरे इसके फन को कुचलो जल्दी।
9: आप तो बेहद नाराज हो रहा है मालिक, देखिए तो सही नागिन को हम कैसे नचाते हैं।
11: अच्छा बेटा, सवेरे उठो, नहीं तो मालिक और नाराज हो जाएंगे।
8: मुझे रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट। सोच लो।
9: सोच विचार कर ही जा रहे हैं मालिक।
8: हाँ तो जाओ जल्दी।
12: अरे चिरैया।
6: हाँ माई।
12: बाबा कहाँ गए रे?
6: अभी तो यही थे, लगता है कि कहीं बांस खरीदने तो नहीं चले गए।
12: तू ठीक कह रही है रे, कई दिनों से काम धाम कुछ कर नहीं पा रही हूँ। चुनाव प्रचार का भूत सिर पर सवार है, बाबा बेचारे अकेले ही काम कर रहे हैं, क्या करूं।
11: अरे जमुनिया।
12: बाबा।
11: कुछ करने की जरूरत नहीं है बिटिया, तू जो कर रही है वही बहुत है, सब लोग तो अपने अपने के लिए कर रहे हैं। अरे एक तू ही है जो सब के लिए कर रही है। अरे बिटिया, कुछ दिनों की बात तो है, फिर तो मैं संभाल लूंगा, बाद में तो इस गांव की तस्वीर बदलेगी, ऐसा मुझे लगा है।
12: इसमें तुम्हारा भी तो साथ बहुत खास है बाबा।
11: हे, ये तुम्हारे हाथ में कागज कैसा है बेटा?
12: ये हमारे गांव की वोटर लिस्ट है, जयंत शहर से लाए थे, मुझे दिया है देखने को। बाबा।
11: हाँ?
12: तुम सबको जानते हो ना इस गांव में?
11: हाँ हाँ बिटिया, जानता हूँ, पर शायद कुछ नौजवानों के नाम याद ना आए। चेहरे से तो सभी को पहचानता हूँ, क्यों पूछ रही हो बिटिया?
12: बाबा थोड़ी देर मेरे साथ बैठो ना।
11: हाँ।
12: मैं नाम पढ़ती जाती हूँ।
11: हाँ।
12: तुम बताते जाना कि ये सब लोग अपने गांव के हैं कि नहीं।
11: अच्छा ठीक है, चल पूछ।
12: धुल्लन।
11: हाँ।
12: फुलवा।
11: हाँ बिटिया ये तो सब सही है।
12: रतन। अरे ये तो अपना ही आदमी है पापा। था चलो पापा बाद में देखेंगे।
11: हाँ बिटिया तेरी लिस्ट तो बड़ी लंबी है।
6: माई क्या हुआ तुझे, एकदम से रोने रोने को क्यों हो गई?
12: कुछ नहीं हुआ, तू अपना काम कर।
11: अच्छा ठीक है बिटिया, मैं बांस सीरता हूँ।
12: शारदा का नाम ढूंढ रही हूँ, वो भी है। ये लिस्ट तो बेकार है बाबा।
1: नमस्ते जमुनिया, और क्या कर रही हो?
12: ये झुनझुना थमा दिया है, उसे ही बचा रही हूँ।
1: अच्छा तो वोटर लिस्ट देख रही हो?
12: हाँ पर बेकार है ये लिस्ट। मेरे आदमी का नाम है, शारदा बहन का नाम है, जबकि ये दोनों इस दुनिया में है ही नहीं। अब ठीक करवाओ इस लिस्ट को।
1: ये सब इतना आसान नहीं है, बस हम सब ये जानते हैं कि ये काम सरकार का है और उसे ही ठीक करना चाहिए।
12: तो फिर कौन करेगा?
1: हम सबकी जिम्मेदारी है अपना अपना योगदान देने की, और एक दिन में भी ये सब नहीं होता, बल्कि जब तक सब लोग भागीदारी नहीं करेंगे कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए कहता हूं जन्म के लिए बच्चे के बारे में जितना जरूरी है सूचना देना, उतना ही जरूरी है मृत्यु की जानकारी देना। तभी आवश्यकता के हिसाब से योजना बनती है, विकास के लिए जरूरी चीजें इसी के आधार पर बनती हैं।
12: इसे भी ठीक करवाना पड़ेगा, अभी तो वोटिंग इसी के आधार पे होगी, इसमें जिसका नाम नहीं है वो वोट नहीं डाल पाएगा।
1: बिल्कुल, और हाँ जमुनिया, वोटिंग के दिन हमें ध्यान रखना है कि जो लोग नहीं है इस दुनिया में पर उनका नाम इस लिस्ट में है, उनकी जगह कोई दूसरा वोट ना डाल दे।
12: अरे हाँ ये तो हमने सोचा ही नहीं था।
1: अच्छा चलो अब देखें कि कल की बात का गांव वालों पर क्या प्रभाव पड़ा है।
12: हाँ चलो। अरे ये दोनों कहाँ आ रहे?
1: ये तो दंदी फंदी हैं।
12: इधर कैसे आ रहे हैं?
10: नमस्ते जमुनिया जी, प्रचार कैसा चल रहा है?
12: क्यों क्या करेंगे जानकर?
10: भैया लगता है जमुनिया जी नाराज हैं हम लोगों से। हैं?
13: हमसे कोई खुश भी तो नहीं रह सकता।
10: हाँ भैया।
12: चलो अच्छा बताओ तो सही तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? मेरे भले के लिए तो तुम लोग आने से रहे।
10: जीजी हमारा जन्म पता है किस लिए हुआ है?
12: अब आप ही बता दीजिए।
13: हम सच्चे को कहते हैं सजग रहो और मक्कार को कहते हैं लूट लो।
10: हाँ।
12: ये क्या बात हुई?
10: अरे यही बात तो समझने की है जीजी। अच्छा आप नारद मुनि को जानती हैं ना, वही घर घर में कलह पैदा करने वाले।
13: फिर भी उनको रिसीवर नारद मुनि कहते हैं।
10: हाँ, नारायण नारायण।
1: अरे रिसीवर नहीं ऋषिवर कहते हैं। ऋषिवर
13: वो एक ही बात है। ये जो आप दारू ना पिए का प्रचार कर रही हैं ना, उससे दीवान जी बहुत नाराज हैं। आप लोग लोगों के खाने पीने पर भी पाबंदी करेंगी?
10: अभी तक तो सब कुछ सह रहे हैं हमारे मालिक। हाँ लेकिन लड़ाई बहुत गहरी होती जा रही है, हम बताए दे रहे हैं, थोड़ा सोच समझ कर रहिए।
12: आप लोग हमें समझा रहे हैं कि धमका रहे हैं?
13: आपको क्या लग रहा है?
12: हमें तो लग रहा है कि आप धमका रहे हैं।
10: अरे नहीं जीजी, बात यह है कि हम किसी की लड़ाई खुद नहीं लड़ते। अरे सबको अपनी अपनी लड़ाई खुद लड़ना होती है। अब वो तो बात यह है कि बात बहुत ज्यादा न बढ़े इसलिए आ गए। क्यों भैया?
13: बता गए, इस चुनाव को

0: दीवान अपनी नाक का सवाल मानता है, बाकी आप जानो।
1: हाँ जी जी।
2: अच्छा तो आप लोग यहाँ से सिधारो, हमें समझाने और राय देने के लिए धन्यवाद। जयराम जी की। नारायण नारायण
3: नारायण नारायण।
4: अरे चमुनिया, आज गुरु जी की याद कैसे आ गई तुम्हें?
5: प्रणाम गुरु जी।
4: प्रणाम प्रणाम, जीती रहो बेटा जीती रहो। आजकल तो धुआंधार चुनाव प्रचार हो रहा है, इसीलिए इधर आने का अवसर नहीं मिला होगा ना।
5: ये तो सही है गुरुजी, पर आप ही ने इस जमुनिया को इस लायक बनाया है कि आज सरपंची का चुनाव लड़ने की हिम्मत जुटा पाई हूँ।
4: भाई तुम्हारे अंदर वो जो जमुनिया है, अगर उसमें इतना साहस ना होता तो अकेले गुरुजी क्या कर लेते बेटा। ज्ञान परस्पर दोनों की इच्छा पर ही निर्भर करता है, पाने वाला और देने वाले का साझा होता है। ये तुम्हारे हाथ में कैसा कागज है बेटा? अबे मेरी कोई सहायता की जरूरत हो तो जरूर कहना।
5: आपने ठीक पहचाना, ये इस गांव की वोटर लिस्ट है।
4: अच्छा, अच्छा।
5: बहुत से लोगों का नाम मुझे पता नहीं है। हाँ। आप ज्यादातर लोगों को जानते हैं।
4: हाँ।
5: इसलिए लाई हूँ कि एक बार आप देख लें, सरसरी तौर पर बताते हैं कि अभी कोई गलती हो भी तो ठीक नहीं हो पाएगी, उसमें समय लगता है।
4: अच्छा अच्छा।
5: पर कम से कम उन लोगों के फर्जी वोट ना डलने पाए जो इस समय हमारे बीच में नहीं है। हम चुनाव में इस बात पर नजर रखेंगे कि कहीं वो अगर ऐसा करेंगे तो उसका विरोध कर सके।
4: ये बिल्कुल ठीक होगा बेटा, बिल्कुल ठीक। ठीक है, ये तुम इसे मेरे पास छोड़ जाओ, मैं इसे आराम से देख लूंगा है, और इतना तो फिर बाद में मैं तुम्हें बता ही सकता।
5: अच्छा गुरुजी, आशीर्वाद दीजिए, चलती हूँ। प्रणाम।
4: विजयी हो जमुनिया, तुम्हारे लिए मेरा आशीर्वाद हमेशा रहेगा।
6: अरे हम कह रहे हैं, बस एक दिन की खातिर हमारी बात मान लो।
7: ये क्या मजाक है, मत पियो की रट लगा रखी है। अरे एक दिन नहीं पीने से क्या हो जाने वाला है भाई, कौन सा बड़ा आसमान फट पड़ेगा बता।
6: अरे हम हमेशा के लिए छोड़ने की बात तो कर नहीं रहे हैं। अरे बस चुनाव से एक दिन पहले मत पियो, बस बस। हाँ
7: बाद में पूछेगा कौन दारू के लिए, वो तो चुनाव की होने की खुशी में दीवान जी पिला रहे हैं, तू कहती वही ना पियो।
6: अरे अभी तुम ठीक बात बोले हो, तुम्हारी वोट की औकात एक बोतल दारू ही ना है। अरे वोट के बाद तुम्हें पूछेगा कौन?
7: क्या
6: और का?
7: देख तू फालतू मेरा दिमाग मत खराब कर, चल।
6: अरे जरा सोचो तो सही। अरे दीवान के लिए तुम हो क्या?
7: क्या?
6: अरे एक बोतल दारू ही ना, और क्या? अब इतने सस्ते में क्यों बिक रहे हो?
7: अरे
6: अरे जब तक हम अपना सम्मान नहीं करेंगे ना, दूसरे को क्या पड़ी है? अरे मान लो ना, बस इतनी सी बात मान लो। और सुनो सुनो, हमारे सिर पर हाथ रख कर कहो। हाँ कहो ना कि ठीक है, तुम्हारी एक दिन वाली बात मानता हूँ, बोलो।
7: अरे
6: बोलो ना।
7: अरे हाथ खींच रहे।
6: अरे बोलो ना।
7: अच्छा ले मान मान गए, ले मान गए। अच्छी भाई ये हो रहा जात, चाहे तो आदमी की एक ना चलने पाए। चल मान ली, तेरी बात भी मान ली। पर ये बता, जो कसम वसम का चक्कर के पूरे गांव की औरतों ने चला रखा है
6: और क्या?
7: अरे
6: हाँ हाँ, हम सब बहनों ने किसी से वादा किया है कि वोट किसी को भी दो, पर पूरे होश हवास में दो। अरे ये वोट बड़ी कीमती चीज है, इसे बेहोशी में मत गंवाओ, बस। हाँ
7: अच्छी बात है भवानी, अच्छी बात है। चल पीना छोड़ देंगे, खाना तो देगी।
6: अरे अरे खाने को किसने मना किया है, ये लो चोखा और लिट्टी भकोसो।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक जमुनिया की 13वीं कड़ी। ये आकाशवाणी भोपाल है।

कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर, तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात, जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी आप

आकाशवाणी भोपाल से हर शाम रोजाना 5:02 पर सुनिए युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। ट्यून कीजिए मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज पर या फिर न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन पर। लॉगिन करें और सुने ज्ञान सूचना मनोरंजन की त्रिवेणी युवाओं की वाणी युववाणी प्रतिदिन शाम 5:02 पर।

0: मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर हमारी सायंकालीन सभा यहीं आरंभ होती है। कुछ ही समय में आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण होगा, कृपया प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, आइए सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान NIFT के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि वस्त्र और परिधान क्षेत्र न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि यह लाखों लोगों को रोजगार और आजीविका भी प्रदान करता है। बिश्केक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोव के बीच बैठक जारी है। दो दिन के किर्गिस्तान दौरे पर आज सुबह प्रधानमंत्री

0: आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों के खातों में 304,98,50,000 रुपये से अधिक की राशि अंतरित करेंगे और उज्जैन में भगवान महाकाल की भाद्रपद माह की पहली और इस वर्ष की पांचवी सवारी आज शाम 4 बजे से निकाली जा रही है। पूजन अर्चन के बाद बाबा महाकाल पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण कर रहे हैं। सवारी के दौरान श्रद्धालुओं को भगवान अपने 5 स्वरूपों के दर्शन भी दे रहे हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आइए सुनते हैं युवा श्रोताओं का लोकप्रिय कार्यक्रम युवाणी। हमारा आज का ही कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति है।

नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी युवा साथियों के अपने पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं आपकी रेडियो साथी प्रज्ञा गुप्ता और आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे बेहद रोचक और महत्वपूर्ण विषयों पर। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे युवा पर्यटन एवं साहसिक गतिविधियों की, यानी युवाओं के लिए पर्यटन के नए अवसर और साहसिक गतिविधियों से कुछ जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर, और साथ ही चर्चा करेंगे ई कचरे से जुड़ी चुनौतियों और उन चुनौतियों के संभावित समाधानों की। कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि अंत में होगी आपके लिए रोजगार सूचना। तो आइए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं खूबसूरत फिल्मी गीत के साथ। सुनते हैं प्रसून जोशी का लिखा और मोहित चौहान की आवाज़ में सजा दिल्ली 6 का लोकप्रिय गीत मसक्कली।

साथियों, आप सुन रहे थे दिल्ली सिक्स का ये गीत मोहित चौहान की आवाज़ में। गीतकार थे प्रसून जोशी और संगीत निर्देशन था AR रहमान का। साथियों, युवा शक्ति किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होती है। नई सोच, नई ऊर्जा और कुछ नया करने का उत्साह, यही युवाओं को आगे बढ़ाता है। युवा जब देश को जानने, समझने और नए अनुभव हासिल करने की दिशा में कदम बढ़ाता है, तो पर्यटन युवाओं के लिए सीखने और अनुभव करने का एक बेहतरीन माध्यम बन जाता है। इसी क्रम में भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा युवाओं को पर्यटन से जोड़ने और उनमें पर्यटन के प्रति रुचि विकसित करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की गई है। इसमें से एक महत्वपूर्ण पहल है युवा टूरिज्म क्लब, यानी युवा पर्यटन क्लब। साथियों, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान युवा पर्यटन क्लबों की शुरुआत विद्यालयों, कॉलेजों और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जैसे संस्थानों में की गई। इसका उद्देश्य युवाओं को भारत की पर्यटन संभावनाओं, प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराना और पर्यटन के प्रति उनकी रुचि को बढ़ाना है। इन क्लबों के द्वारा आयोजित विविध गतिविधियों जैसे क्विज, एसे राइटिंग, पोस्टर मेकिंग, हेरिटेज एक्टिविटीज़ और एजुकेशनल विजिट्स के माध्यम से युवा देश के अलग अलग जगहों की संस्कृति, कला और इतिहास से परिचित होते हैं और इनके द्वारा ही रिस्पॉन्सिबल और सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाता है। दोस्तों, अगर आपके विद्यालय, कॉलेज या संबंधित संस्थान में युवा टूरिज्म क्लब है तो आप अपने संस्थान के माध्यम से इन गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। साथियों, आगे हम जानेंगे एडवेंचर टूरिज्म यानी साहसिक पर्यटन गतिविधियों के बारे में। लेकिन इस रोमांचक सफ़र को आगे बढ़ाने से पहले क्यों ना इस सफ़र में एक खूबसूरत सा गीत शामिल किया जाए। सुनते हैं फिल्म कॉकटेल से ये खूबसूरत सा गीत तुम ही हो बंधु।

दोस्तों आप सुन रहे थे फिल्म कॉकटेल से नीरज श्रीधर और कविता सेठ की आवाज़ में गीत तुम ही हो बंधु। गीतकार थे इरशाद कामिल और संगीत निर्देशन था प्रीतम का। साथियों, एडवेंचर टूरिज्म यानी साहसिक पर्यटन वह पर्यटन है जिसमें यात्रा के साथ रोमांच और चुनौती से जुड़ी गतिविधियां भी शामिल होती हैं। भारत में एडवेंचर टूरिज्म की बहुत संभावनाएं हैं। हमारे देश में हिमालय से लेकर समुद्र तटों तक, नदियों से लेकर जंगलों तक विविध प्राकृतिक क्षेत्र हैं जो साहसिक पर्यटन के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान करते हैं। इसी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर एडवेंचर टूरिज्म भी तैयार किया है। इसमें ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट, सर्टिफिकेशन, सेफ्टी मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और प्रमोशन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है। इसमें ट्रैकिंग, कैंपिंग और अन्य कई एडवेंचर और नेचर बेस्ड एक्टिविटीज शामिल हैं जिनके माध्यम से युवाओं को नए अनुभव लेने और प्रकृति के करीब आने का अवसर मिलता है। साथ ही इसका महत्व केवल रोमांच तक सीमित नहीं है बल्कि एडवेंचर टूरिज्म का विकास युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करने के साथ साथ देश के पर्यटन क्षेत्र को भी मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। साथ ही इस रोमांचक सफर में

दोस्तों आप सुन रहे थे सुखविंदर सिंह और सपना अवस्थी की आवाज़ में फिल्म दिल से ये गीत। गीतकार थे गुलजार और संगीत निर्देशन था AR रहमान का। साथियों अब हम चर्चा करेंगे ऐसे विषय पर जो हमारे दैनिक जीवन और टेक्नोलॉजी दोनों से जुड़ा है। हम रोज़ मोबाइल, लैपटॉप, TV, हेडफोन और कई दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रयोग करते हैं। जब ये उपकरण खराब हो जाते हैं या अनुपयोगी हो जाते हैं तो उन्हें ई कचरा यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कहते हैं। साथियों लगातार ई कचरे की मात्रा बढ़ रही है और इसके सही मैनेजमेंट की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में कई तरह के कंपोनेंट्स और मटेरियल्स होते हैं जिन्हें सामान्य कचरे की तरह डिस्पोज करना उचित नहीं है। अगर इन्हें सही तरीके से इकट्ठा और रिसाइकिल ना किया जाए तो ये हमारे लिए नुकसानदायक हो सकते हैं, लेकिन अच्छी बात यह भी है कि इनमें मौजूद कई उपयोगी मटेरियल्स को सही रिसाइकिलिंग के माध्यम से वापस उपयोग में लाया जा सकता है। यही कारण है कि ई वेस्ट मैनेजमेंट में रिसाइकिलिंग और रिसोर्स रिकवरी को महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत सरकार ने ई वेस्ट को बेहतर मैनेजमेंट के लिए ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 लागू किए हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न केंद्रों द्वारा ई कचरे को जमा करने और उसे रिसाइकिल करने के प्रावधान हैं। इस पूरी व्यवस्था का उद्देश्य है ई वेस्ट को सुरक्षित मैनेज करना, रिसाइकिलिंग को बढ़ावा देना और रिसोर्सेज का बेहतर उपयोग करना। दोस्तों अब बात करते हैं कि हम इसे सही तरीके से कैसे मैनेज कर सकते हैं और कैसे इसे डिस्पोज किया जा सकता है। पुराने मोबाइल, लैपटॉप, चार्जर या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान को इधर उधर फेंकने की बजाय उन्हें उचित ई वेस्ट कलेक्शन व्यवस्था या रजिस्टर्ड रिसाइकलर तक हमें पहुंचाना चाहिए। विभिन्न विद्यालयों, कॉलेजों और संस्थानों में ई वेस्ट कलेक्शन ड्राइव्स और अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी आयोजित किए जा रहे हैं और हम युवाओं को भी ई कचरे से जुड़ी समस्या और उनके समाधान के प्रति लोगों को जागरूक करना बेहद ज़रूरी है। साथियों सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ई वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था की मॉनिटरिंग और इम्प्लीमेंटेशन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जब अगली बार कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान हमें उपयोग में ना रहे तो उसे सामान्य कचरे में डालने की बजाय एक बार ज़रूर विचार करें कि क्या उसे रिपेयर किया जा सकता है, क्या उसे रीयूज किया जा सकता है और यदि नहीं तो क्या उसे सही ई वेस्ट कलेक्शन या रजिस्टर्ड रिसाइकलर तक पहुंचाया जा सकता है। दोस्तों यही जिम्मेदार आदतें ई वेस्ट मैनेजमेंट को बेहतर बना सकते हैं। अब वक्त है आज की रोजगार सूचना का। इंडिया पोस्ट यानी भारतीय डाक विभाग ने ग्रामीण डाक सेवा के 23,757 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं, जिसके लिए पंजीकरण आज से यानी 31 अगस्त से शुरू हो चुका है, जबकि आवेदन पत्र जमा करने की प्रक्रिया 2 सितंबर 2026 से शुरू होगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 सितंबर है। और अधिक जानकारी के लिए आप इंडिया पोस्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों आप सुन रहे थे आतिफ असलम और श्रेया घोषाल की आवाज़ में फिल्म प्रिंस से ये गीत तेरे लिए। उम्मीद है दोस्तों आपको आज का कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में कुछ नए विषयों और उनसे जुड़ी रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपनी रेडियो साथी प्रज्ञा गुप्ता को इजाज़त। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे युवा श्रोताओं का लोकप्रिय कार्यक्रम युवाणी। समय है एक अंतराल का।
1: मन्नू भाई मोटर चली पाम पाम पाम।
2: मन्नू भाई मोटर चली पाम पाम पाम।
3: जब भी हम सड़क पर निकालें वाहन तो रखें इन बातों का ध्यान।
4: स्कूटर मोटरसाइकिल जैसे दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट अवश्य पहने
3: और चार पहिया वाले वाहन चलाते समय सीट बेल्ट जरूर बांधें।
4: चौराहे पर हमेशा वाहन को जेब्रा क्रॉसिंग से पहले रोकें और ट्रैफिक सिग्नल का पालन अवश्य करें।
3: वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात न करें।
4: वाहन हमेशा निर्धारित गति सीमा के अंदर ही चलाएं।
3: नशे की हालत में कभी वाहन न चलाएं।
4: 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और किशोरों को वाहन चलाने के लिए प्रोत्साहित न करें।
3: दो पहिया वाहन में दो से अधिक व्यक्ति न बैठें।
4: चार पहिया वाहन में भी सीट की संख्या के अनुरूप ही लोग बैठें।
3: वाहन के इंडिकेटर, हेडलाइट, ब्रेक, पहिए इत्यादि को हमेशा दुरुस्त हालत में रखें।
4: वाहन के सभी कागजात अपने साथ जरूर रखें।
3: थोड़ी सी सावधानी
4: दूर करे सभी परेशानी।
5: बाजू बाबू।

0: कहते हैं प्यारे पम पम पम।
1: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
2: आगे सैलरी नहीं झुमके
3: ना, पहले बचत,
2: पहले झुमके।
3: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
2: लेकिन झुमकों का क्या,
3: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
4: आरबीआई कहता है,
1: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर

आप है आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। समय हो चला है फिल्मी गीतों के कार्यक्रम फिल्म संगीत का। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म धरती से, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में। गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने और संगीत है शंकर जयकिशन का।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले की आवाज में। गुलजार के लिखे इस गीत को संगीत से नवाजा है आर डी बर्मन ने और फिल्म का नाम है इज्जत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत कुमार सानू और पूर्णिमा की आवाज में। गीत को लिखा है समीर ने, संगीत है आनंद मिलिंद का, फिल्म का नाम गोपी किशन।

आप है आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। कार्यक्रम का नाम है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में। गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत है SG बर्मन का। फिल्म का नाम चलती का नाम गाड़ी।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म बरसात की रात से। गीत को गाया है सुमन कल्याणपुरकर और कमल बरोट ने। गीत के बोल दिए हैं साहिर ने और संगीत है रोशन का।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सिर्फ तुमसे, अमीन साबरी और फरीद साबरी की आवाज में। गीत को लिखा है समीर ने और संगीत है नदीम श्रवण का।

0: कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आइए सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: बिश्केक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन से अलग हुई इस बैठक में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि वस्त्र और परिधान क्षेत्र न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है बल्कि ये लाखों लोगों को रोजगार और आजीविका भी प्रदान करता है। भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह वृद्धि दर 6.9% रही थी। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास की रफ्तार बरकरार है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2026 का आयोजन 7 से 12 सितंबर 2026 तक कुल 6 दिनों में किया जाएगा। परीक्षा एक सत्र में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक प्रदेश के 12 संभाग और जिला पर स्तर पर ऑफलाइन पद्धति से आयोजित की जाएगी। और मंत्रालय स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क में कल सुबह राष्ट्रगीत वंदे मातरम और राष्ट्रगान जनगणमन का सामूहिक गायन होगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने वल्लभ भवन, विंध्याचल भवन और सतपुड़ा भवन के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सुबह 10 बजे अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आइए सुनते हैं NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
3: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है चरौदा बार नवापारा अभयारण्य बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर जी ने।
2: आपने लिखा है, सफलता हमेशा आत्मविश्वास और निरंतर मेहनत से मिलती है, केवल अवसरों की तलाश करते रहने से नहीं।
3: बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। इसके द्वारा सच में हम सबों को प्रेरणा मिलती है। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो संदेश के क्रम में आज हमें पहला संदेश मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर।

0: बचपन के एक प्रसंग पर। ये अत्यंत प्रेरक और ऐतिहासिक रूप से अच्छी तरह से प्रलेखित है।
1: हम जानेंगे कि उनके शिक्षक की प्रेरणा ने किस तरह उनकी जिंदगी बदल दी।
0: हम सभी जानते हैं श्रोताओं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपने बाल्यकाल में बड़ी गरीबी देखी।
1: उनके पिता नाविक थे और वे अपने भाई के साथ रेलवे स्टेशन पर अखबार बेचने का काम करते थे।
0: जब वे रामेश्वरम के एक स्कूल में पढ़ते थे तो एक दिन उनके विज्ञान के शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्य अय्यर पक्षियों की उड़ान के बारे में पढ़ा रहे थे।
1: कक्षा में कई विद्यार्थियों की तरह कलाम भी ये बात पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे थे। शिक्षक ने इसका हल निकाला।
0: तो हल उन्होंने इस प्रकार से निकाला कि वे सभी बच्चों को समुद्र तट पर ले गए।
1: जी।
0: वहाँ उन्होंने उड़ते हुए पक्षियों को दिखाते हुए समझाया कि वे अपने पंख कैसे फैलाते हैं, हवा का उपयोग कैसे करते हैं और कैसे हवा में दिशा बदलते हैं।
1: इस प्रत्यक्ष अवलोकन और अनुभव ने बालक कलाम के मन पर गहरा प्रभाव डाला।
0: बाद में श्रोताओं, उन्होंने अपनी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर में लिखा कि उसी दिन उनके मन में उड़ान और वैमानिकी के प्रति गहरी रुचि जागी।
1: जी।
0: यही रुचि आगे चलकर उन्हें एयरोस्पेस इंजीनियर, वैज्ञानिक और भारत के मिसाइल मैन बनने की दिशा में ले गई।
1: जी।
0: उनके मन में एक अदम्य इच्छा जाग गई कुछ कर गुजरने की। तभी तो उन्होंने कहा था,
1: सपने वे नहीं होते जो आप सोते समय देखते हैं, सपने तो वे होते हैं जो आपको सोने नहीं देते।
0: जी हाँ श्रोताओ, एक प्रेरणादायक शिक्षक विद्यार्थी का जीवन बदल सकता है। केवल किताबों से ही नहीं, लेकिन अनुभव से भी गहरा ज्ञान मिलता है। और छोटी सी प्रेरणा भी भविष्य की बड़ी उपलब्धियों का आधार बन सकती है।
1: श्रोताओ, आज के प्रसंग में आपने शब्द सुना वैमानिकी। इसका अर्थ है विमान उड़ाने का विज्ञान।
0: अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, वैमानिकी का अर्थ क्या होता है और अपनी किस पुस्तक में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपने शिक्षक की प्रेरणा के बारे में लिखा है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: वैमानिकी का अर्थ क्या होता है और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किस पुस्तक में अपने शिक्षक की प्रेरणा के बारे में लिखा है।
0: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
0: YouTube में जाइए, टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। वहाँ आपको सर्च के विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और आप अपनी मनचाही पुस्तकों को वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं।
1: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें कि यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहाँ अपनी मनचाही पूरी पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
0: तो 8800440559 है हमारा IVRS नंबर। हमें आशा है कि ये नंबर आपको भी याद हो गया होगा। और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। संदेश जरूर भेजिएगा।
1: आप हमें इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको CIT NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी मिलती रहेगी।
0: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है मैया मैं नहीं माखन खायो।
1: ये कार्यक्रम सूरदास जी द्वारा रचित एक सुंदर भक्ति दोहे पर आधारित है, जिसमें बालक कृष्ण अपनी माता यशोदा से सफाई देते हुए कहते हैं कि माँ, मैंने माखन नहीं खाया है। कार्यक्रम में इस दोहे को संगीत द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है विष्णु नारायण भातखंडे।
1: ये कार्यक्रम हिंदुस्तानी संगीत के प्रकांड विद्वान और प्रलेखक पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी के जीवन और संगीत के क्षेत्र में उनकी महान उपलब्धियों और योगदान की सविस्तार जानकारी देता है।
2: भारत भूमि ने एक से बढ़कर एक महान विभूतियों को जन्म दिया है।
3: आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संगीत की एक ऐसी महान विभूति के बारे में जिनका संगीत के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान सदा सर्वदा स्मरण किया जाएगा। उन्हें दुनिया पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के रूप में जानती है।
2: भारतीय संगीत की तुलना एक विशाल बट वृक्ष के समान है जिसकी शाखाओं में लोक संगीत, जनजातीय संगीत और शास्त्रीय संगीत प्रमुख हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत के मुख्य दो भाग हैं, कर्नाटिक संगीत और हिंदुस्तानी संगीत।
3: कर्नाटिक संगीत दक्षिण भारतीय संगीत को कहते हैं, जबकि हिंदुस्तानी संगीत उत्तर भारतीय संगीत है। जो स्थान दक्षिण भारतीय संगीत में पुरंदरदास जी का है, वही स्थान पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी का उत्तर भारतीय संगीत में है। वे

0: हिंदुस्तानी संगीत के प्राणदाता माने जाते हैं।
1: महान संगीतज्ञ श्री विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म 10 अगस्त 1860 को महाराष्ट्र राज्य के बालकेश्वर नामक गांव में जन्माष्टमी के दिन हुआ था। कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही दिखाई दे जाते हैं। उनके बारे में एक किंवदंती प्रसिद्ध है कि जन्म लेते ही जब वो रोए तो दूर कहीं से आती बांसुरी की मीठी धुन सुनकर वो एकदम शांत हो गए और मुस्कुराने लगे।
0: भातखंडे जी के माता पिता भी संगीत प्रेमी थे। इस घटना से उन्हें भी ये भान हो गया था कि बालक में असाधारण रूप से संगीत की प्रतिभा है। स्कूली जीवन के दौरान ही उन्होंने स्कूल और राज्य के स्तर पर आयोजित कई संगीत और नाटक प्रतियोगिताओं में भाग लिया और अनेक पुरस्कार जीते।
2: श्रोता देवियों, सज्जनों और बच्चों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमारे बीच संगीत की दुनिया में उभरते एक अत्यंत मेधावी और प्रतिभाशाली तरुण हैं विष्णु नारायण भातखंडे। अनुरोध है कि मंच पर पधारें और अपने अनूठे गायन से सभा को शोभायमान करें विष्णु नारायण भातखंडे।
3: लागे लगन सखी पति संग, लागे लगन सखी पति संग, लागे लगन सखी पति संग।
1: स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने कानून की पढ़ाई के लिए कॉलेज में दाखिला लिया और पढ़ाई के साथ साथ शास्त्रीय संगीत का भी नियमित अध्ययन शुरू कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि छात्र जीवन में ही उन्होंने श्री वल्लभ दास से सितार की शिक्षा ली। इसके बाद कंठ संगीत की शिक्षा श्री बेलबागकर मियां अली हुसैन खान तथा विलायत हुसैन से प्राप्त की।
0: कानून की पढ़ाई समाप्त करने के बाद उन्होंने बंबई, जो आज मुंबई कहलाता है, में वकालत भी की, लेकिन संगीत साधना को भी अपना समय देते रहे।
1: धीरे धीरे उन्हें यह समझ में आने लगा कि उन दिनों प्रचलित हिंदुस्तानी संगीत में कुछ बुनियादी त्रुटियां आ गई हैं।
0: उन्होंने पाया कि प्राचीन भारत का संगीत लिपिबद्ध और लिखित सामग्री पर आधारित था, लेकिन मध्ययुगीन भारत में संगीत के प्रलेखन की ओर संगीतकारों ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उन दिनों संगीत की पुस्तकें प्रचलित नहीं थीं। उनकी इच्छा थी कि संगीत के विद्यार्थियों के लिए कोई ठोस पाठ्यक्रम हो और इसके शास्त्रीय पक्ष के बारे में भी विद्यार्थी जाने।
1: उन्होंने देश के अन्य बड़े बड़े कलाकारों से संपर्क किया। इन कलाकारों से प्राप्त जानकारी को उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने संस्कृत, तेलुगु, अंग्रेजी, बांग्ला, गुजराती और उर्दू के संगीत ग्रंथों का भी गंभीर अध्ययन किया और उनकी स्वर मालिकाओं की बारीकियों को समझा।
0: इस सिलसिले में वे महाराष्ट्र की गायनोत्तेजक संगीत मंडली में शामिल हो गए और उस समय के अली हुसैन खां, रायोजी वेलवागकर और विलायत हुसैन जैसे प्रसिद्ध संगीतकारों के संपर्क में आए। अक्सर वे इन उस्तादों से मिलते और संगीत पर गहन विचार विमर्श करते। एक दिन की बात है।
4: प्रणाम गुरुदेव।
5: प्रणाम प्रणाम। आइए भातखंडे जी, उस दिन उल्लास नगर संगीत महोत्सव में आपसे चर्चा करके बहुत अच्छा लगा। हिंदुस्तानी संगीत की स्थिति के बारे में आपकी चिंता बड़ी प्रासंगिक है।
4: जी गुरुदेव, मैंने अब तक ये अनुभव किया है कि ऋतुओं पर, प्रकृति पर, त्योहारों पर, भक्ति पर और लगभग सभी विषयों में संगीत रचनाएं तो बहुत हुई हैं और उनका श्रृंगार भी अनोखा है, लेकिन गुरुदेव हमारे पास वे रचनाएं सुरों और कथ्यों में लिपिबद्ध नहीं है। और यदि ऐसा ही होता रहा तो
5: हमारी गरिमामयी संगीत विधा धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी।
4: जी गुरुजी, और यही मेरी चिंता है। मुझे लगता है कि हमें इस दिशा में दो कार्य करने होंगे। पहला कार्य होगा

0: संगीत रचनाओं की कथ्य सामग्री का संग्रह करना और दूसरा स्वर लिपि लिखने की जो परंपरागत पद्धति है उसमें थोड़ा और सुधार करना ताकि उन्हें सुगमता से पढ़ा जा सके और वे सर्व सुलभ हो सके।
1: ये तो बहुत ही सुंदर विचार है, मैं आपकी इस पहल का समर्थन करता हूँ। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है भातखंडे जी।
0: धन्यवाद गुरुदेव, आज्ञा दीजिए।
2: फिर क्या था, ऋषि मतंग और ऋषि भरत द्वारा विकसित प्राचीन काल की पुरानी स्वर लिपि की लेखन पद्धति में भातखंडे जी ने थोड़ा सुधार किया, जिसके द्वारा संगीत की लय, ताल, मात्राएं, कोमल और शुद्ध स्वरों का चढ़ाव उतार, आलाप इत्यादि को आसानी से दर्शाया जा सकता था।
3: संगीत रचनाओं के संकलन हेतु अक्सर भातखंडे जी दूर दूर की यात्राएं करते और संगीतकारों से निवेदन करते कि वे उन्हें उनकी रचनाओं का संग्रह करने की अनुमति दें, लेकिन कई संगीतकार उन्हें रचनाएं देने से इनकार कर देते थे। फिर क्या होता था, आइए जानते हैं।

0: अरे अरे अरे भाई रुको रुको,
1: अरे मिनट
0: कहाँ चले आ रहे हो हैं? देखते नहीं जगह नहीं है।
1: मैं देख रहा हूँ श्रीमान, लेकिन
0: लेकिन क्या
1: श्रीमान? मैं उस्ताद जी का संगीत सुनने के लिए बड़ी दूर से आया हूँ।
0: तो
1: मेरा मतलब है दूसरे नगर से आया हूँ। आप तो इस समारोह के आयोजक लगते हैं।
0: हाँ?
1: यदि कृपा पूर्वक मंच के आसपास या पर्दे के पीछे ही मेरे बैठने की थोड़ी व्यवस्था हो पाती तो।
0: बड़े संगीत प्रेमी लगते हो, तभी तो इतनी दूर से आए हो। अच्छा चलो, तुम्हें मंच के ठीक पास बैठाने की कोशिश करता हूँ।
1: जी जी, वैसे मंच के पर्दे के पीछे भी चलेगा। बड़ी मेहरबानी आपकी।
0: आओ चलो।
1: धन्यवाद धन्यवाद।
2: तो सुना आपने, दरअसल होता यह था कि ऐसी स्थिति में पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी इन उस्तादों के कार्यक्रम में पर्दे के पीछे या मंच के नीचे छिपकर बैठते तथा कथ्य और स्वर लिपियां लिखा करते थे। इसके आधार पर उन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे और बाद में बाकायदा उन संगीतकारों को श्रेय भी दिया।
3: भातखंडे जी स्वयं भी चतुर पंडित के छद्म नाम से गीत रचना करते थे। गीत मालिका और क्रमिक पुस्तक माला में उनके स्वरचित 250 के लगभग गीत हैं। भातखंडे जी ने कठिन प्रयत्नों से एकत्रित पुरानी प्रचलित तथा अप्रचलित गायन सामग्री को क्रमिक पुस्तक माला के 6 संस्करणों में प्रकाशित करवाया। वे स्वयं अपने हाथ के लिखे हुए संग्रहों को लेकर प्रकाशकों के पास जाते।
1: प्रकाशक महोदय अंदर बैठे हैं क्या?
4: जी हाँ, अंदर ही बैठे हैं।
5: आइए पंडित जी, आइए, अंदर आ जाइए।
1: धन्यवाद धन्यवाद।
5: लग रहा है आज फिर कुछ छपाई की सामग्री लेकर आए हैं।
1: जी हाँ जी हाँ, आज क्रमिक पुस्तक माला का 6वां संस्करण लेकर आया हूँ।
2: भातखंडे संगीत शास्त्र उनकी अभिनव रचना थी, जिसे उन्होंने मूल रूप से मराठी भाषा में लिखा। प्रकाशनों का सिलसिला चलता रहा। सन 1910 में उन्होंने स्वर मालिका प्रकाशित करवाई। ये भारतीय संगीत जगत में एक महत्वपूर्ण कृति साबित हुई। इसमें विभिन्न रागों की सरगमें थीं। सन 1911 में अष्टोत्तर शत ताल लक्षणम तथा 1912 में लक्षण गीत नामक गीत संग्रह 3 भागों में छपा। इसमें करीब 110 गीत थे।
3: वे दक्षिण भारत के अनेक संगीत विद्वानों के साथ भी संगीत चर्चा में शामिल हुए। इस क्रम में उन्होंने विजयनगरम, हैदराबाद, मद्रास जैसे संगीत संपन्न स्थानों का दौरा किया। वहीं पर इन्हें पंडित वेंकट मुखी के 72 थाटों का भी पहली बार पता चला।
2: उनके प्रमुखतम कार्यों में से एक है समग्र हिंदुस्तानी संगीत को 10 थाटों में विभाजित और वर्गीकृत करना एवं उनके गायन के समय को निर्दिष्ट करना। थाट अथवा ठाट हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में रागों के विभाजन की पद्धति है, जिससे राग

0: की उत्पत्ति होती है। ठाट को मेल भी कहा जाता है। आज हिंदुस्तानी संगीत में लगभग 100 राग हैं जो उनके द्वारा वर्गीकृत किए गए हैं। उनके अथक प्रयासों से देश भर में कई संगीत विद्यालयों और महाविद्यालयों की स्थापना हुई और संगीत को एक ठोस पाठ्यक्रम के रूप में देखा जा सका।
1: आधुनिक भारत में शास्त्रीय संगीत के पुनर्जागरण के इस महान अग्रदूत का 19 सितंबर 1936 को निधन हो गया। उनका धन्यवाद कि उनके कारण आज हमारे पास समृद्ध हिंदुस्तानी संगीत का ठोस पाठ्यक्रम, सरगम लिखने की सुगम और अनूठी पद्धति, रागों के स्वर लिपियां और कथ्य सामग्री है। मानव सभ्यता और विश्व का संगीत समुदाय उनके इस अतुलनीय योगदान हेतु कृतज्ञता प्रकट करता है।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम विष्णु नारायण भातखंडे, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता की
3: लयात्मक प्रस्तुति।
2: शीर्षक है
3: अभी न होगा मेरा अंत।
2: अभी न होगा मेरा अंत, आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत और उमंग की तकनीकी टीम के साथ
1: जगबंधु
0: कुसुमलता
1: और फैजान के साथ विमलेश को अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।
4: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आप है आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ और समय हो चला है फिल्मी गीतों के कार्यक्रम फिल्म संगीत का। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म जुल्म का बदला से, रफी और आशा भोसले की आवाज में। गीत को लिखा और संगीतबद्ध किया है रविंद्र जैन ने।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म जुबैदा से लता मंगेशकर की आवाज में। जावेद अख्तर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है AR रहमान ने।

0: इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत संपन्न होता है। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश, आइए सुनते हैं कार्यक्रम आजकल।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत कार्यक्रम आजकल में आज का विषय है नई खेलो इंडिया योजना, गांव से विश्व तक भारत की नई खेल यात्रा। आलेख विश्वास कैलाश सारंग, मंत्री खेल एवं युवा कल्याण मध्य प्रदेश, वाचन स्वर राणा शाहिद।

प्रधानमंत्री की नई खेलो इंडिया योजना का लक्ष्य गांव से विश्व तक यानी जमीनी स्तर से लेकर ओलंपिक स्तर तक खिलाड़ियों की पूरी विकास श्रृंखला तैयार कर भारत को खेल महाशक्ति बनाना है। प्रधानमंत्री ने खेलो इंडिया और फिट इंडिया जैसे अभियानों के माध्यम से भारतीय खेल संस्कृति को गांव, स्कूलों और सामान्य परिवारों तक पहुंचाया है। प्रतिभा पहचान, आधुनिक प्रशिक्षण, खेल विज्ञान, बेहतर अधोसंरचना और अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर पर बढ़ते जोर से भारतीय खिलाड़ियों के लिए बेहतर विकास मार्ग तैयार किया है। ओलंपिक और पैरालंपिक खिलाड़ियों को निरंतर प्रोत्साहन, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम जैसी व्यवस्थाओं को मजबूती तथा राष्ट्रीय खेल महासंघों और प्रशिक्षण संस्थानों पर बढ़ता निवेश इस सोच को दर्शाता है कि भारत की खेल शक्ति केवल कुछ प्रतिभाशाली खिलाड़ियों में नहीं बल्कि करोड़ों युवाओं की क्षमता को अवसर देने में निहित है। व्यापक दृष्टिकोण के फलस्वरूप प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कैबिनेट ने नई खेलो इंडिया योजना के लिए वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी प्रदान की है। इससे 10 गुना ज्यादा खिलाड़ी लाभान्वित होंगे। नई खेलो इंडिया योजना से प्रदेश को खेल सुविधाओं और खिलाड़ियों के लिए बड़ा अवसर मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए समस्त आवश्यक प्रयास करेगा। खेलो इंडिया के 52 सेंटर्स को और मजबूत किया जाएगा, साथ ही स्थानीय स्तर पर उपलब्ध खेलो प्रतिभा और क्षमता के आधार

0: पर अलग अलग क्षेत्रों के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। खेलो इंडिया फीडर स्कूल और खेलो इंडिया उत्कृष्ट विद्यालय जैसी पहलें विद्यालयों को केवल शिक्षा का केंद्र नहीं बल्कि प्रतिभा पहचान और खेल विकास का आधार बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। भारत की सबसे बड़ी शक्ति उसकी विशाल युवा आबादी है, लेकिन प्रतिभा और पदक के बीच की दूरी अक्सर पर्याप्त प्रशिक्षण, प्रतियोगिता, खेल विज्ञान और अवसरों की कमी से निर्धारित होती है। एथलीट विकास मार्ग को इस प्रकार परिकल्पित किया गया है कि प्रतिभा पहचान के बाद खिलाड़ी को प्रशिक्षण, नियमित प्रतिस्पर्धा, उच्च स्तरीय कोचिंग, अंतर्राष्ट्रीय अनुभव और ओलंपिक तैयारी की सुविधाएं मिलती रहें। एमर्जिंग खेलो इंडिया एथलीट्स नई खेलो इंडिया योजना में शुरू की गई एक विशेष श्रेणी है, जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर युवा खेल प्रतिभाओं की पहचान करके उन्हें आगे बढ़ाना और देश के एथलीट विकास तंत्र का लगभग 10 गुना विस्तार करना है। राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र खेलो इंडिया उत्कृष्टता केंद्र, भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केंद्र, मान्यता प्राप्त खेल अकादमियां, खेलो इंडिया केंद्र तथा सशस्त्र बलों की युवा खेल कंपनियां इस पूरी व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ियां हैं। पारंपरिक खेलों को आधुनिक खेल पारिस्थितिक तंत्र से जोड़ना, सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक प्रतिस्पर्धात्मक खेल के बीच एक सार्थक सेतु बनेगा। इससे भारत की खेल पहचान केवल वैश्विक मानकों को अपनाने वाली नहीं बल्कि अपनी परंपराओं को आधुनिकता के साथ जोड़ने वाली बनेगी। राष्ट्रीय कोच प्रत्यायन बोर्ड जैसी व्यवस्था कोचिंग योग्यताओं के मानकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। वर्तमान खेल केवल प्रतिभा और परिश्रम पर निर्भर नहीं है। आज स्पोर्ट्स साइंस, डेटा एनालिटिक्स, पोषण, रिकवरी, मनोविज्ञान, प्रदर्शन विश्लेषण और आधुनिक तकनीक खिलाड़ी की सफलता के महत्वपूर्ण आधार हैं। एकीकृत डिजिटल खेल मंच की परिकल्पना इस परिवर्तन को और गति देगी। नई खेलो इंडिया योजना का प्रभाव केवल प्रतियोगिताओं तक सीमित नहीं रहेगा, यह भारत की दीर्घकालिक राष्ट्रीय लक्ष्यों से जुड़ी हुई योजना है। यह योजना वर्ष 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारियों से लेकर भविष्य के ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी की आकांक्षा तथा विकसित भारत 2047 के संकल्प तक खेलो भारत की वैश्विक पहचान को मजबूत करने का महत्वपूर्ण माध्यम बनेगी।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजकल। आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार दर्पण।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन और मैं हूं शेख महजबी अलमास। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं प्रदेश के विभिन्न जिलों की समसामयिक गतिविधियों पर अपनी विशेष रिपोर्ट। आज के इस अंक में हम जानेंगे कि प्रदेश के विभिन्न अंचलों में शासन की योजनाएं किस प्रकार आम नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रादेशिक समाचार दर्शन। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए हमारी पहली खबर है रायसेन जिले से, जहां 39,000 से अधिक महिलाएं लखपति दीदी योजना के तहत आत्मनिर्भर बन गई हैं। इन सभी लखपति दीदियों की आय को और अधिक सुदृढ़ व स्थायी बनाने के लिए विविध आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने की तैयारी तेज कर दी गई है। पेश है रायसेन से हमारे संवाददाता विनीत माहेश्वरी की ये रिपोर्ट।
1: रायसेन जिले में महिला सशक्तिकरण और स्वावलंबन की दिशा में उल्लेखनीय सफलता दर्ज की गई है। जिले ने लखपति दीदी योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य को पार करते हुए नया कीर्तिमान स्थापित किया है। जिले को 38,668 महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य दिया गया था, जिसके लक्ष्य के मुकाबले 39,258 महिलाओं को इस श्रेणी में शामिल कर आत्मनिर्भर बनाया जा चुका है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के बाद अब इन सभी लखपति दीदियों की आय और अधिक मजबूत व स्थायी बनाने के लिए विविध आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने की तैयारी तेज कर दी गई है। इसके तहत महिलाओं को उन्नत कृषि, पशुपालन और बागवानी के साथ साथ गैर कृषि क्षेत्रों जैसे खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प, लघु उद्योग और स्थानीय व्यापारिक गतिविधियों से जोड़ा जाएगा। इस कार्य योजना को गति देने के लिए केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की विशेष टीम जल्द ही रायसेन जिले के दौरे पर आ रही है। यह टीम जमीनी

0: स्तर पर गतिविधियों का जायजा लेगी और महिलाओं को नए व्यावसायिक अवसरों, बेहतर बाजार लिंकेज और तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराने में मदद करेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री एवं विदिशा रायसेन संसदीय क्षेत्र के सांसद शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि
1: रोजगार की दृष्टि से जो दो योजनाएं हैं RCT और एक हमारे ग्रामीण विकास की योजना है जिसमें ट्रेनिंग और ट्रेनिंग के बाद फिर बैंकों से पैसा दिलाते हैं, उस पर भी काम हमारा जारी है। और एक योजना ये बनाई कि हमारी जो दीदियां हैं लखपति दीदी, रायसेन जिले में लक्ष्य था 38,668 दीदियों का, लेकिन अब तक 39,258 दीदियां लखपति दीदी बन चुकी हैं, लेकिन अब उनको और विभिन्न तरह की गतिविधियों से जोड़ने का काम करना है। कृषि और गैर कृषि मूलक गतिविधियां वो कई चिन्हित हुई है और रूरल डेवलपमेंट की एक टीम भी आएगी जो इस काम को तेजी से आगे बढ़ाएगी ताकि बहनों की गरीबी और दूर करके ग्रामीण गरीबी दूर करने में हम लोग सफल हो सकें।
0: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रायसेन से मैं विनीत माहेश्वरी।
2: हमारी दूसरी खबर है मंदसौर से, जहां राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस राजीव गांधी PG कॉलेज में खेलो इंडिया संवाद खेल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कार्यक्रम आयोजित किया गया। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे मंदसौर संवाददाता दीपक शर्मा।
3: मंदसौर में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस राजीव गांधी PG कॉलेज में खेलो इंडिया संवाद खेल की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सांसद सुधीर गुप्ता मुख्य अतिथि रहे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं और उभरते खिलाड़ियों को खेलों से जोड़ना, उन्हें खेल एवं फिटनेस को जीवन शैली का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करना और विकसित भारत के निर्माण में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करना था। कार्यक्रम में खेल सुविधाओं के विस्तार, प्रतिभा पहचान, खेल प्रशासन में युवा सहभागिता और भविष्य उन्मुख कौशल जैसे विषयों पर भी चर्चा की गई। मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता ने बताया कि
4: देश भर के ऐसे युवा जो अपने आप को खेलों में आगे बढ़ा चुके हैं उनके साथ संवाद था। देश भर में संवाद के कार्यक्रम रखे हैं और मोदी जी ने इस कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर संबोधित किया। अपने आप को ऐसा युवाओं से जो स्पोर्ट्स के लिए समर्पित हैं, देश दुनिया में ओलंपिक पैरा ओलंपिक गेम्स में अवार्डी हैं, ऐसे सब लोगों से आज बात हुआ, मन को बड़ी प्रसन्नता है। मंदसौर में भी इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है।
3: प्रादेशिक समाचार दर्शन के मंदसौर से मैं दीपक शर्मा।
2: हमारी अगली खबर है मंडला से, जहां शासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की गुणवत्तापूर्ण और निशुल्क तैयारी कराने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट संकल्प शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए दूसरे शहरों में जाने से रोकना और ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को समान अवसर उपलब्ध कराना है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मंडला से हमारे संवाददाता शशांक चौबे।
5: मंडला जिले में शासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की गुणवत्तापूर्ण और निःशुल्क तैयारी कराने के उद्देश्य से कलेक्टर राहुल नामदेव धोटे की विशेष पहल पर प्रोजेक्ट संकल्प शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए दूसरे शहरों में जाने से रोकना और ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को समान अवसर उपलब्ध कराना है। जिला प्रभारी एवं APC मुकेश पांडे के अनुसार जिले में कक्षा 11वीं एवं 12वीं के करीब 85% विद्यार्थी उचित मार्गदर्शन के अभाव में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी नहीं कर पाते थे। इसी आवश्यकताओं को देखते हुए प्रोजेक्ट संकल्प को 3 चरणों में संचालित किया जा रहा है। प्रथम चरण में 80 शासकीय विद्यालयों के करीब 2000 विद्यार्थियों को JEE, NEET, CU, ET और CLET जैसी परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है। दूसरे चरण में कक्षा 10वीं व 12वीं के विद्यार्थियों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर दिया गया है। सी और डी ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए विशेष कक्षाएं, मासिक MCQ आधारित परीक्षाएं, रेमेडियल कक्षाएं, टॉपर क्लब और अभिभावक शिक्षक बैठक जैसी गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इस चरण से करीब 20,000 विद्यार्थियों को लाभ मिलने का दावा किया गया है। तीसरे चरण में करियर मार्गदर्शन पुस्तिका तैयार की गई है जिसमें 10वीं व 12वीं और स्नातक के बाद उपलब्ध कैरियर विकल्प, प्रतियोगी परीक्षाएं, आवश्यक योग्यता और रोजगार के अवसरों को की जानकारी दी गई है। मंडला से प्रादेशिक समाचार के लिए मैं शशांक चौबे।
2: प्रादेशिक समाचार दर्शन में अब हम चलते हैं रतलाम जिले की तरफ, जहां ग्रीनफील्ड परियोजना के तहत उज्जैन से जावरा तक 99 किलोमीटर लंबाई में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना की लागत 2,080 करोड़ रुपए है। पेश है रतलाम से हमारे संवाददाता अदिति मिश्रा की यह रिपोर्ट।
6: दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेस वे के समीप रतलाम जिले में निर्माणाधीन इंडस्ट्रियल जोन, जिले के संपूर्ण औद्योगिक विकास के साथ ही उज्जैन सिंहस्थ में भी सुचारू ट्रैफिक संचालन के लिए रतलाम में ग्रीन फील्ड परियोजना मूर्त रूप लेने वाली है। परियोजना के तहत उज्जैन से जावरा तक लगभग 99 किलोमीटर लंबाई में ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जा रहा है। परियोजना की कुल लागत लगभग 2,080 करोड़ रुपए है। निर्माण कार्य जुलाई 2026 में प्रारंभ हो चुका है और अनुबंध के अनुसार इसे जुलाई 2000

0: 2028 तक पूर्ण किया जाना है। रतलाम जिले में भूमि अधिग्रहण मुआवजा भुगतान की स्थिति की समीक्षा के दौरान बताया गया कि 8 ग्रामों में लगभग 180 कृषक प्रभावित हैं। इनमें से 140 कृषकों के खाते में राशि प्राप्त हो चुकी है। शेष जो किसान बचे हैं उन्हें भी भुगतान राशि जल्द ही दे दी जाएगी। कलेक्टर ने भूमि अधिग्रहण एवं मुआवजा भुगतान से संबंधित शेष कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। रतलाम से समाचार दर्शन के लिए मैं अदिति मिश्रा।
1: हमारी अगली खबर है नरसिंहपुर जिले से, जहां गाडरवाड़ा में अभिनय नाट्यशाला में नई पीढ़ी के कलाकारों को अभिनय के गुर सिखाए जा रहे हैं। बीते दिनों प्रसिद्ध अभिनेता आशुतोष राणा नाट्यशाला पहुंचे और बच्चों को अभिनय की बारीकियां समझाई। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं नरसिंहपुर से हमारे संवाददाता आशीष जैन।
2: सिने स्टार आशुतोष राणा, जिनके अभिनय का लोहा बॉलीवुड से लेकर रंगमंच तक हर कोई मानता है, यही दिग्गज अभिनेता इस बार अपने गृह नगर गाडरवाड़ा में चल रही अभिनय नाट्यशाला में नई पीढ़ी के कलाकारों को अभिनय की गुर सिखाने पहुंचे। गाडरवाड़ा में 11 अगस्त से चल रही इस नाट्यशाला में आशुतोष राणा ने इस आयोजन में विद्यार्थियों से मुलाकात की और उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया, जिसे जानकर नाट्यशाला में भाग ले रहे सभी विद्यार्थी बेहद उत्साहित हुए। आशुतोष राणा:
3: अभिनय हमारी आपकी सबकी मूल वृत्ति होती है। अभिनय हो, खेल हो, राजनीति हो, सब व्यक्ति को लगता है कि हम भी कर सकते। क्यों? क्योंकि ये हमारी प्रकृतिगत, हमारे क्या कहा जाता है कि काले कला साहित्य संगीत विहीनो साक्षात पशु तृणम न खादन नीव मानस तद भाग देम परमम पशु नाम। तो हमको और आपको कैसे श्रेष्ठ प्रजाति माना गया विश्व की, क्योंकि मनुष्य के पास कला साहित्य संगीत का वरदान जन्मजात प्राप्त।
2: नरसिंहपुर से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं आशीष जैन।
1: अब हम बात करते हैं पन्ना जिले की। कभी सिर्फ नकद लेन देन पर टिके रहने वाला पन्ना जिला आज छोटे से लेकर बड़ा बाजार पूरी तरह से QR कोड के रंग में रंग चुका है। गांव से लेकर शहर और चाय की गुमटी से लेकर हीरा बाजार तक सभी जगह UPI का उपयोग किया जा रहा है। अधिक जानकारी दे रहे पन्ना से हमारे संवाददाता दिलीप कुमार शर्मा।
4: देश में UPI के 10 साल पूरे होने पर पूरा भारत डिजिटल बदलाव का जश्न मना रहा है। वहीं बुंदेलखंड के पन्ना जिले में भी इसका गहरा असर देखने को मिल रहा है। कभी सिर्फ नकद लेन देन पर टिके रहने वाले पन्ना के छोटे बड़े बाजार आज पूरी तरह QR कोड पर रंग चुके हैं। हीरों की नगरी पन्ना के स्थानीय रत्न कारोबारियों और पारंपरिक हस्तशिल्प विक्रेताओं को भी डिजिटल पेमेंट से बड़ी राहत मिली है। बाहर से आने वाले पर्यटकों और व्यापारियों को अब ज्यादा नकद लेकर घूमने का डर नहीं रहा। लोग आसानी से ऑनलाइन पेमेंट करके खरीदारी कर रहे हैं। वहीं चाय समोसे बेचने वाले छोटे बड़े वेंडर से लेकर जुगल किशोर मंदिर परिसर के बाहर फल फूल बेचने वाले दुकानदारों तक सभी के पास गूगल पे, फोन पे और पेटीएम का QR कोड मौजूद है। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि पहले 5-10 रुपए के चिल्लर के चक्कर में ग्राहकों से बहस होती थी या कई बार बिक्री रुक जाती थी, लेकिन अब 1 रुपए का भुगतान भी बिना किसी परेशानी के सीधे बैंक खाते में आ जाता है। पन्ना शहर ही नहीं बल्कि जिले के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के हाट बाजारों में भी सब्जी विक्रेता और राशन व्यापारी धड़ल्ले से UPI का उपयोग कर रहे हैं। बैंक सखियों और स्थानीय कॉमन सर्विस सेंटर की मदद से ग्रामीणों में डिजिटल पेमेंट को लेकर भरोसा बढ़ा है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए पन्ना से मैं दिलीप कुमार शर्मा।
1: हमारी अगली खबर है खरगोन जिले से, जहां मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत ग्रामीणों को सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं और सेवाओं का लाभ मिल रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे खरगोन संवाददाता आशुतोष पुरोहित।
5: खरगोन जिले में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान ग्रामीणों के लिए कारगर साबित हो रहा है। अभियान के दौरान ग्रामीणों को सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं और सेवाओं का लाभ मिल रहा है। साथ ही शिविर के माध्यम से जनसंवाद, योजनाओं की जानकारी, स्वास्थ्य सेवाएं, हित लाभ वितरण और शिकायतों का मौके पर ही निराकरण हो रहा है। अभियान के तहत जिले में आयोजित जन विश्वास शिविरों में विभिन्न विभागों के अधिकारी सीधे ग्रामीणों के बीच पहुंचकर संवाद कर रहे हैं। साथ ही लंबित प्रकरणों के निराकरण, नए आवेदनों के पंजीयन और पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ दिलाने की कार्रवाई की जा रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं कलेक्टर गुरु प्रसाद।
6: मुख्यमंत्री जन विश्वास प्रोग्राम एक बहुत ही अच्छा एक प्रोग्राम है और इसमें सभी अधिकारियों को, सभी स्तर के अधिकारियों को फील्ड में जाने के लिए निर्देशित किया गया है और सभी अधिकारी अपने जमीनी स्तर के जो ऑफिसेज हैं उनका भ्रमण कर रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या उनका जो है कि जमीनी स्तर का अमला वो सही से काम कर रहा है कि नहीं।
5: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं खरगोन से आशुतोष पुरोहित।
1: अब हम रुख करते हैं निवाड़ी जिले की तरफ, जहां खेलो इंडिया गेम्स की पूरी रूपरेखा तय कर दी गई है। गांव की प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आगे लाने के लिए तहसील स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद खिलाड़ी जिला, संभाग और प्रदेश स्तर पर विभिन्न खेलों में भाग लेंगे। विस्तार से बता रहे हैं निवाड़ी से हमारे संवाददाता विवेक दांगी।
7: निवाड़ी जिले में खेलो इंडिया के तहत

0: खेलों का आयोजन कराने की पूरी रूपरेखा तैयार हो चुकी है और निवाड़ी जिले के प्रत्येक गांव के जो प्रतिभागी हैं या प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए तहसील स्तर पर सबसे पहले खेलों का आयोजन किया जाएगा और तहसील स्तर पर जो चयनित प्रतिभागी हैं उनको आगे जिला और जिला से संभाग और संभाग से प्रदेश स्तर तक उन प्रतिभाशाली छात्रों को खेलने के लिए अवसर दिए जाएंगे। निवाड़ी से समाचार दर्शन के लिए विवेक दांगी।
1: हमारी अगली खबर नीमच से, जहां लंबे समय से लंबित सांदीपनि विद्यालय का निर्माण प्रारंभ हो गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे नीमच से हमारे संवाददाता दिनेश प्रजापति।
2: जिला मुख्यालय पर लंबे समय से लंबित सांदीपनि विद्यालय का निर्माण प्रारंभ हो गया है। यहां करीब 39 करोड़ की लागत से 1800 अधिक विद्यार्थियों के लिए आधुनिक भवन का निर्माण किया जाएगा। विद्यालय में आधुनिक फिजिक्स, केमिस्ट्री लैब, ICT लैब, ऑडिटोरियम एवं किड्स फ्रेंडली क्लासेस सहित अन्य सुविधाएं विकसित होगी। विद्यालय के साथ फ्लड लाइट्स युक्त 400 मीटर एथलेटिक ट्रैक, हॉकी, फुटबॉल ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड, 2 बास्केटबॉल कोर्ट, 2 क्रिकेट नेट एवं वॉलीबॉल कोर्ट भी क्रमांक 2 खेल परिसर में बनाए जाएंगे। प्रादेशिक समाचार दर्शन नीमच, दिनेश प्रजापति।
1: प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए हमारी अंतिम खबर है राजगढ़ जिले से, जहां राष्ट्रीय खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम में युवाओं ने नशा मुक्त और विकसित भारत का संकल्प लिया है। विस्तार से जानकारी दे रहे हमारे राजगढ़ संवाददाता कमल हस।
3: राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राजगढ़ जिले के शासकीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्नातकोत्तर महाविद्यालय एवं शासकीय महाविद्यालय नरसिंहगढ़ में खेलो इंडिया डायलॉग कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में खेल संस्कृति को बढ़ावा देना तथा विकसित भारत के निर्माण में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना रहा है। इस अवसर पर राष्ट्र निर्माण में युवाओं की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उपस्थित युवाओं ने नशा मुक्त भारत का सामूहिक संकल्प लेते हुए शपथ ली। समाचार दर्शन के लिए कमल खस, राजगढ़।
1: तो श्रोताओं, ये था हमारा कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी दिन इसी समय। दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार दर्शन। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही समय में आप दिल्ली से समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन के साथ बिश्केक में द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग हुई बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने पश्चिम एशिया क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की। बाद में प्रधानमंत्री ने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोव से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा के पहले दिन आज राजधानी बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद किया।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिश्केक में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ आत्मीय संवाद किया। प्रधानमंत्री ने भारत और किर्गिज गणराज्य के बीच मैत्री संबंधों को मजबूत करने में भारतीय समुदाय की ऊर्जा, उत्साह और महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। अपनी किर्गिस्तान यात्रा के दौरान श्री मोदी ने आज बिश्केक स्थित महात्मा गांधी स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री कल शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
1: भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद GDP में वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में ये वृद्धि दर 6.9% थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने GDP वृद्धि को बड़ी उपलब्धि बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये उपलब्धि देश के लोगों की दृढ़ता को दर्शाती है। इस बीच

0: है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में बताया कि देश ने 10 साल के लक्ष्य के मुकाबले 4 साल में 85,000 सेमीकंडक्टर इंजीनियरों को तैयार करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है। 4,247 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। सभी 8 प्रभावित जिलों में राहत और बचाव अभियान तेजी से जारी है। नेपाल में 5 से अधिक जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़े ढांचों में 900 से अधिक श्रमिकों के फंसे होने की आशंका है। संयुक्त अरब अमीरात ने अपने जल क्षेत्र के ऊपर ईरान की ओर से किए गए ड्रोन हमले की निंदा की है। यूएई की वायु रक्षा प्रणालियों ने ड्रोन को रोक दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तरह के हमले तनाव बढ़ाने वाले हैं और यूएई की सुरक्षा, स्थिरता तथा संप्रभुता के लिए खतरा है। मंत्रालय ने कहा कि ये हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों का उल्लंघन है। यूएई ने कहा है कि वो अपनी सुरक्षा और संप्रभुता के लिए किसी भी खतरे को बर्दाश्त नहीं करेगा और इन हमलों का जवाब देने का अधिकार रखता है। उसने इन हमलों को तुरंत रोकने की अपील की। यूएई ने मिसाइलों से जॉर्डन को निशाना बनाए जाने की भी निंदा की। AFC अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप 2027 के क्वालिफायर में भारत ने आज सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। ताशकंद के दोस्तलिक स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सिंगाम यूम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए चौथे भारत जर्मनी पर्यावरण मंच की बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है कार्यक्रम विवरण का। आइए आपको जानकारी दे दें, आज व कल आकाशवाणी भोपाल व आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। सबसे पहले आज आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के अंतर्गत सुनिएगा ग्रामीण श्रोताओं का लोकप्रिय कार्यक्रम ग्राम सभा। अब एक नजर आज आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। रात 8 बजे सुनिएगा कार्यक्रम सुर्खियों में। 8:15 पर समय होगा फिल्मी गीतों के कार्यक्रम फिल्म संगीत का। फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम आपकी फरमाइश को सुना जा सकता है रात 10 बजे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में डॉक्टर सुमति मुटाटकर का ध्रुपद धमार गायन राग खमाज में आप सुन सकते हैं रात 10:30। अब एक नजर कल आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। दैनिक सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार भोपाल आप सुन सकते हैं 7:20 पर। सुबह 8:30 सुनिएगा कार्यक्रम सुरमई सवेरा। सुगम संगीत का कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 9:15 पर। कार्यक्रम शब्द सागर का समय होगा 9:30 पर। जिले की चिट्ठी सुनिएगा 10:00। 10:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम गीत सागर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला का समय होगा 10:30 पर। अब एक नजर कल आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे आप सुन सकते हैं 11:00। आपकी फरमाइश सुनिएगा 12:00। कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत जमुनिया की 14वीं कड़ी सुनिएगा 12:30 पर। दोपहर 1:00 सुनिएगा महिला कार्यक्रम। लोक संगीत का कार्यक्रम होगा 1:30 पर। 1:45 पर सुन सकते हैं सुगम संगीत। ये तीनों कार्यक्रम हमारे इंदौर केंद्र की प्रस्तुति होंगे। दोपहर 2:00 सुनिएगा फिल्म संगीत। 2:30 पर समय होगा फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम आपकी फरमाइश का। युवा श्रोता।

का लोकप्रिय कार्यक्रम युवाणी 5:02 पर हमारा ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति होगा। 5:33 पर सुनिएगा फिल्म संगीत, एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम सुनिएगा शाम 6:00। 6:30 पर सुनिएगा चित्रपट संगीत, 7:20 पर समय होगा बुंदेली समाचार का, 7:30 पर होगा कार्यक्रम किसान वाणी, रात 8:00 कार्यक्रम सुर्खियों में, 8:15 पर सुनिएगा फिल्म संगीत, उर्दू कार्यक्रम कहकशा का समय होगा रात 9:30 पर, रात 10:00 सुनिएगा फिल्म संगीत। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में डॉक्टर एन राजम का वायलिन वादन राग यमन में सुना जा सकता है रात 10:30 पे। ये थी हमारे आज वकल आकाशवाणी भोपाल व आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। कार्यक्रम विवरण यहीं संपन्न होता है।

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: खो गया इंतजाम।
3: किसका?
2: गुड्डी की फीस का।
3: दिखा 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है?
4: लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
5: आरबीआई कहता है,
6: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
7: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से मुलाकात की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अगले दो वर्षों में 2.5 लाख पदों पर भर्ती की घोषणा की। प्रदेश के 1,22,000 मेधावी विद्यार्थियों को कल लैपटॉप खरीदने के लिए 25,000 रुपए की राशि दी जाएगी और प्रदेश के रीवा, सीधी और शहडोल समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। बिश्केक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के बीच आज द्विपक्षीय बैठक हुई। दो दिन के किर्गिस्तान दौरे पर प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन से अलग हुई इस बैठक में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने पश्चिम एशिया क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने भारत के रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन और वाणिज्य की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर भी बल दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि वस्त्र और परिधान क्षेत्र न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है बल्कि ये लाखों लोगों को रोजगार और आजीविका भी प्रदान करता है। आज राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान NIFT के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि फैशन और वस्त्र प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की वैश्विक उपस्थिति बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं। निवाड़ी जिले की श्री रामराजा सरकार की नगरी ओरछा में आयोजित 2 दिवसीय भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक का आज समापन हुआ। दूसरे दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश सहित वरिष्ठ नेता बैठक में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2027 को युवा वर्ष और 2028 को मातृशक्ति को समर्पित करते हुए प्रदेश की विकास यात्रा को गति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अगले दो वर्षों में 2.5 लाख पदों पर भर्ती भी की जाएगी।
1: जैसे UPSC में होता है एक एग्जाम कराते, अब हमारी सरकार भी वो काम कर रही है कि एक परीक्षा करा करके उसमें क्रमशः अलग अलग प्रकार के योग्य लोगों की भर्ती कर दे, तो लगभग 2 साल में 2.5 लाख पदों की भर्ती हमारी सरकार के माध्यम से फिर हम करने जा रहे हैं।
0: वहीं प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि कार्य समिति केवल चर्चा तक सीमित नहीं रही बल्कि विचारधारा और जनसेवा के संकल्प को बूथ स्तर तक ले जाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण रही। उज्जैन में भगवान महाकाल की 5वीं सवारी के नगर भ्रमण में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। रामघाट पहुंचने पर उन्होंने पालकी में विराजित भगवान चंद्रमौलेश्वर का पूजन कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। सवारी के दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। 1100 बटकों ने वैदिक मंत्रोच्चारण किया जबकि 500 से अधिक कलाकारों वाले 8 जनजाति दलों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। वहीं उज्जैन के महाकाल महालोक में अब फाइबर की प्रतिमाओं के स्थान पर राजस्थान के बंसी पहाड़पुर के लाल बलुआ पत्थर से बनी सप्त ऋषियों की भव्य प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। महर्षि कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भारद्वाज की करीब 15 फीट ऊंची प्रतिमाओं का निर्माण अंतिम चरण में है। इसके साथ ही भगवान शिव और देवगुरु बृहस्पति की प्रतिमाएं भी स्थापित की जाएंगी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR News भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। प्रदेश में कक्षा 12वीं में प्रथम प्रयास में 75% या उससे अधिक अंक पाने वाले लगभग 1,22,000 मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप खरीदने के लिए 25,000 रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों के खातों में 304,98,50,000 रुपए से अधिक की राशि अंतरित करेंगे। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीकी और डिजिटल शिक्षा से जोड़ना है। भगवान श्रीकृष्ण मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत प्रदेश के स्कूली और महाविद्यालयीन विद्यार्थी 30 सितंबर तक ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। अब तक 24,000 से अधिक विद्यार्थी इसमें शामिल हो चुके हैं। लॉटरी से चयनित 102 विद्यार्थियों को 1,00,000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी जिसका उपयोग उच्च शिक्षा के लिए किया जा सकेगा। इस पर अधिक जानकारी देते हुए संस्कृति विभाग के सलाहकार श्री राम तिवारी ने बताया कि
3: भगवान श्री कृष्ण मेधावी छात्रवृत्ति योजना का गुरु पूर्णिमा से आरंभ हुआ है और यह 30 सितंबर तक ये क्विज चलेगी। प्रदेश के जो स्कूली छात्र या महाविद्यालय छात्र हों वे सब इस प्रतियोगिता में भाग लेकर सही जवाब देकर जो 102 छात्रवृत्तियां दी जाने वाली हैं पुरस्कार स्वरूप 1,00,000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। 30 सितम्बर तक अंतिम तिथि है और 1 नवम्बर को जो मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस भी है उस दिन समारोह पूर्वक छात्रवृत्ति दी जाने की योजना है।
0: अब रुक करते हैं मौसम की खबर का। प्रदेश में बारिश का दौर फिर तेज हो गया है। मौसम विभाग ने रीवा, मऊगंज, मैहर, सीधी, उमरिया, शहडोल, डिंडोरी, अनूपपुर, मंडला, सिवनी और बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। भोपाल सहित कई जिलों में भी बारिश के आसार हैं। शहडोल में बाणसागर बांध के 6 गेट खोले गए हैं। प्रदेश में अब तक 27.2 इंच बारिश हुई है जो सामान्य से 9% कम है। वहीं भोपाल स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण के क्षेत्रीय केंद्र में खेलेगा भारत जीतेगा भारत थीम के तहत 3 दिवसीय राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय निदेशक अभिषेक सिंह चौहान ने कहा कि समारोह के माध्यम से युवाओं को खेलों से जुड़ने, फिटनेस और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने तथा खेल भावना को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान आज शिवपुरी जिले में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। गुना जिला चिकित्सालय की टीम ने आज जिला जेल में बंद कैदियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य

परीक्षण शिविर आयोजित किया गया। सीहोर के श्यामपुर तहसील के चरणनाल गांव में पारंपरिक गेड़ी लड़ाई प्रतियोगिता में सीहोर, भोपाल और राजगढ़ के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। कटनी पुलिस ने जिले के सभी थाना क्षेत्रों में एक साथ विशेष मेगा कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया। मुरैना से मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत डॉक्टर अम्बेडकर चैत्य भूमि मुंबई की यात्रा 15 से 18 सितंबर तक होगी। आवेदन की अंतिम तिथि 9 सितंबर है। झाबुआ कलेक्टर ने जिले के 100 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के NQAS सर्टिफिकेशन की कार्यवाही जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं और अशोकनगर जिले के सभी विभागों ने सीएम हेल्पलाइन में ए ग्रेड प्राप्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन से मुलाकात की। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने अगले 2 वर्षों में 2.5 लाख पदों पर भर्ती की घोषणा की। प्रदेश के 1,22,000 मेधावी विद्यार्थियों को कल लैपटॉप खरीदने के लिए 25,000 रुपये दिए जाएंगे और प्रदेश के रीवा, सीधी और शहडोल समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 7:10 पर। नमस्कार।

0: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है।
2: मिल गया, अभी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर?
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
2: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
3: RBI कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कराती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है। आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला? मुझे तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, DBT सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
6: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। PM जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत ज्यादा काम।
7: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही समय में आकाशवाणी भोपाल से आप सुनेंगे ग्रामीण श्रोताओं का लोकप्रिय कार्यक्रम ग्राम सभा।

जय जवान जय किसान चौपाल कार्यक्रम सुन रहे सभी किसान भैया को प्रेमचंद भैया की राम राम। और सुनाओ भैया, कैसे हो आप सभी? कुशल मंगल हो कि नहीं? भैया देखो, हम तो जो ही चाहते कि सबसे पहले तो अपन को अपना ध्यान रखने हैं, क्योंकि देखो खेती किसानी के काम काज हैं और घर गृहस्थी के काम काज घर में बैठ के तो होते नहीं भैया। ईके लाने अपन को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, और अगर अपन स्वस्थ नहीं हुई है तो ना तो अपन अपनी खेती किसानी के काम काज कर पाए, ना ही अपने घर गृहस्थी के काम काज। और इस समय तो आप देख रहे हो भैया कि अपने अंचल में और अपने पूरे प्रदेश में भैया बारिश का जो दौर है वो बहुत अच्छा है, और कहूँ कहूँ भैया बारिश बहुत इतनी ज़्यादा विकराल हो गई है कि भैया वो आमजन परेशान भी हैं। लेकिन कुल मिला के जाए कि बारिश को जो मौसम है बसकाय को वो इस समय अच्छा है, और खेती किसानी के लाने तो भैया किसान उम्मीद लगा के बैठा था कि भैया मानसून अच्छा हो जाए। तो कहो भी जा रहा है ना, अपनी खेती किसानी है वो पूरी भैया मानसून पर निर्भर है। अगर मानसून अच्छा होगा तो जब मान लो कि अपने खेत वाली फसल से भर जाते हैं, और मानसून अच्छा नहीं भी हो तो अपन को भैया परेशानी होने पड़ता है, अपनी जो खेती किसानी है भाभी अच्छी नहीं होते, और अपनी जो आर्थिक स्थिति है भाभी भैया थोड़ी सी डामाडोल भी हो जाते हैं। तो हम तो आपसे यही कहें कि मौसम को देखा तो अपनी जो खेती किसानी के कामकाज हैं भी अपन को ज़रूर करने हैं, और संगे संगे भैया हम आपसे ये भी कहें कि बसकाय को मौसम है, कोशिश यह करें कि अपने पंचायत के आसपास या गांव के आसपास जी जगह भैया ढलान वाली है, अगर तो अपन बारिश के पानी को रोक सकें तो वो भी ज़रूर कर लें, क्योंकि चैत वैसाख की गर्मी भैया अपन को

पानी के लाने परेशान ना होने पड़े, ई के लाने जो छोटे छोटे काम है वे अपन कर लें। बारिश के जो एक एक बूंद को अगर अपन भैया सहेज लें, वो कोई इकट्ठो करके रख लें, तो इसे दो तीन जो फायदे हैं वे अपन को जरूर हो जाए। एक तो भैया अपन को पीपे को पानी की उपलब्धता हो जाए, अपने ज़मीन को जो जलस्तर है पानी को भी ऊपर आ जाए, इसी के अपने जो नलकूप हैं, जो हैंडपम्प हैं, जो अपने बोरवेल हैं, उनमें भी अपन को गर्मी के दिनों में भी पानी पर्याप्त मात्रा में मिलत रहे। लेकिन प्रयास अपन को ज़रूर करने हैं, कहीं भी अगर प्रयास नहीं करें और बारिश के पानी को ऐसे बह के जान देंगे तो जब मान लो कि अपन को परेशान होने पड़े। और आजकल तो भैया बारिश के पानी की रोकवे की जो आधुनिक तकनीकें हैं वैज्ञानिक, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, अगर उनको भी उपयोग कर लें तो छत के पानी को भैया अपन पाइप के माध्यम से ज़मीन में उतार सकते हैं, इससे भी जो अपनी ज़मीन को वाटर लेवल है वह भैया अच्छा हो जाए। तो भैया कुल मिला के जाए जो छोटे छोटे काम हैं वो अपन को बारिश के मौसम में जरूर कर लेने हैं। भैया देखो बतकाओ तो हम अपने श्रोता भैया से और भी करें, और आज कछु विशेष भी हैं, कह के आज भैया सोमवार को दिना है और सोमवार को हम आपको सुनवाते हैं बुंदोली लोकगीतन को, जो अपनो फरमाइशी कार्यक्रम। तो भैया पहला लोकगीत हम आपको सुनवा रहे हैं अनिल डंडोतिया के स्वर में।

0: अब पढ़ाई के साथ कमाई भी। मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। 18 से 29 साल के युवाओं को मिलेगी इंडस्ट्री ट्रेनिंग और हर महीने 8,000 से 10,000 रुपए तक का स्टाइपेंड। हुनर सीखो, पैसा कमाओ और करियर बनाओ एक साथ। रजिस्टर करने का मौका अभी है।
1: mmsky.mp.gov.in पर जाएं। सीखो, कमाओ और लाइफ में कुछ बड़ा करो।
2: भैया देखो, अब हम अपने कार्यक्रम में आपको सुनवा देते हैं बाबूलाल कुशवाहा और उनके संग साथियों के स्वर में जो उन्होंने सो लोकगीत अजा लोकगीत की फरमाइश हमें करी है अमलता संबरीन होम्स कटारा भोपाल मध्य प्रदेश से, योगेश्वर सिंह भारतीय, प्रेमबाई भारतीय, भैरव प्रताप सिंह भारतीय, लोकेंद्र प्रताप सिंह भारतीय, गोपाल भारतीय, कृष्णा भारतीय और न्यू पैसिफिक अपार्टमेंट बावड़िया कला भोपाल मध्य प्रदेश से डॉक्टर शेखावत सिंह भारतीय, अमर सिंह भारतीय, दुर्गा भारतीय, अमिता भारतीय, श्रीमती ललिता बाई भारतीय और उनके परिवार के सभी सदस्य। तो भैया सुन लेते हैं हमारे इन श्रोता भैया की फरमाइश को जो उन्होंने सुनो लोकगीत।

हम छोड़ देते ने, लेकिन अरे लड़का तुम्हें राम ने दो है, बिटिया भाई होती तुम। हाँ लड़का तुम्हें राम ने दो है, और बारह मणिया पूजे भव है, हम सब खाए आनंद भव है। हाँ लड़का तुम्हें राम ने दो है, बारह पथरा पूजे भव है, हम सब

ऐसे काम नहीं चल रहे, देहों नेंग नहीं, अब इंधरो तत्काल गगरी तोरी जब उतर है, गगरी भौजी जब

भैया देखो, अभी आप सुन रहे थे उर्मिला पांडे और देसराज पटेरिया के स्वर में जनों ने सुन लोकगीत। जहाँ लोकगीत की फरमाइश हमें करी थी छतरपुर बुंदेलखंड से बहादुर चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती, बड़े भैया हरिराम, बड़े भैया दशरथ, श्रीमती शीला भाभी, यशोदा भाभी, भगवती भाभी, ममता देवी, रामकली, अंश, मोहिनी, गोलू, नीरज, आरती, भारती और उनके परिवार के सभी सदस्य। अब भैया हम अपने कार्यक्रम में आपको सुनवा देते हैं राजीव कुमार रावत के स्वर में जो नौ सौ लोकगीत। और जो लोकगीत की फरमाइश हमको करी है भांडेर जिला दतिया मध्य प्रदेश से मेहरवान सिंह नांगल, संतोष कुमार नागल, प्रताप सिंह नागल, अभिषेक कुमार नागल, शिवम कुमार नागल और उनके मम्मी पापा। तो सुन लेते हैं उनकी फरमाइश को जो नौ सौ लोकगीत।

भैया देखो, अभी आप सुनो, आपने सुनो जो 900 लोकगीत। भैया देखो, आपकी फरमाइश से हम आपको आपकी पसंद के लोकगीत तो सुनवाते हैं, संगे संगे भैया जो आवश्यक जानकारी है वह भी हम आपको दे देते हैं। भैया देखो, इस समय चल रहा है बसकाई को मौसम, और बारिश के मौसम में अपन को पानी रोकवे के संगे संगे साफ़ सफाई को भी विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि भैया बारिश के मौसम में अगर कोनो जगह पर पानी अगर इकट्ठा होगा और गंदा होगा, तो भैया वो जगह सबसे ज़्यादा परेशानी अपन को हो जाते हैं मच्छर पनपे की। और बारिश के मौसम में अगर मच्छर पनपे, तो जब मान लो कि अपने चाहे शहर हो या अपना गांव देहात हो, उतना मलेरिया चिकनगुनिया फैलने की जो संभावना है वो भैया बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर नेक सी भी लापरवाही अपन ने करी, तो जब मान लो कि अपन को बीमार होने होने हैं, तो हम तो आपसे यही कहें कि अपने आसपास, अपनी पंचायत में, अपने गाँव में साफ़ सफाई रखें। और अगर कोनो ऐसी जगह है जहाँ भैया पानी गंदो रुक गया है और उसकी निकास की व्यवस्था नहीं है, तो भैया अपन उतर दवा दवा को छिड़काव भी कर सकते हैं, और संगे संगे अगर मिट्टी को तेल मिल जाए तो उसको भी छिड़काव कर सके। कुल मिला के जा है कि अपन को साफ़ सफाई रखना है। और संगे संगे भैया अगर कोनो खाली जगह अपने पंचायत के आसपास या गाँव में या मेडन के आसपास अगर कोनो जगह है, तो भैया अपन उतर पौधा भी रोप सकते हैं। बारिश के मौसम में भैया जो छोटा सा अगर प्रयास अपन कर लें, तो आज के जो पौधा कल पेड़ बन सकते हैं, वृक्ष बन सकते हैं, इसे अपन को हरियाली भी मिले, अपना वातावरण पर्यावरण स्वच्छ स्वस्थ भी रहे, साफ़ सुथरा भी रहे, और जो प्राणवायु ऑक्सीजन है वह भी अपन को मिलत रहे। कहे भैया देखो, ऑक्सीजन है वो जो प्राणवायु, वो अपन को पेड़ पौधन से ही मिलत है। तो अपन को जितना ज़्यादा हो सके अपन को हरियाली को बढ़ावे को प्रयास करने हैं, और जहाँ भी जगह मिले पौधा रोप दें। और थोड़ा सा भैया मेहनत कर लें उनको, बारिश के मौसम में अगर थोड़ा सा अपन देखभाल कर लें, तो भैया वो पौधा पनप जाए और भैया आगे वो अपनों स्वयं बढ़ने को प्रयास कर लें। तो कुल मिला के जा है जो छोटे छोटे से प्रयास है जो अपन को बारिश के मौसम में ज़रूर करने हैं। अब भैया हम आपको सुनवा देते अपने कार्यक्रम में हरिराम पुरोहित के स्वर में जो 900 लोकगीत, और जो लोकगीत की फरमाइश हमको करी है ग्राम संदलपुर आत्री से कालीचरण यादव, दीपक कुमार यादव, चांदनी यादव, उर्मिला देवी यादव और उनके परिवार के सभी सदस्य, तो सुन लेते भैया।

भैया अबे आपने सुनो जो नोनो सो लोकगीत। अब भैया देखो स्टूडियो की घड़ी भी हमको इशारों कर रही कि हम अपने सभी श्रोता भैयन से लेने आए विदा। तो चलते हैं सभी श्रोता भैयन को प्रेमचंद भैया की राम राम, जय जवान जय किसान।

0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण किर्गिस्तान गणराज्य यात्रा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर राहुल मिश्रा, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सुबोध मिश्र।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का समसामयिक कार्यक्रम सुर्खियों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिज गणराज्य की यात्रा पर हैं, जहां वे बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। यह यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब भारत मध्य एशिया के साथ अपने रणनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को और सशक्त बना रहा है। प्रधानमंत्री की इस यात्रा के व्यापक कूटनीतिक और सामरिक महत्व पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राहुल मिश्रा। राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद सुबोध जी।
1: राहुल जी, सबसे पहले अगर हम व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें तो प्रधानमंत्री की जो किर्गिज गणराज्य यात्रा है, उसे आप भारत की विदेश नीति के हिसाब से किस दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि मध्य एशिया भारत के लिए अब लगातार ज्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है।
2: जी बिल्कुल, देखिए सुबोध जी, मध्य एशिया के जो तमाम देश हैं, ये जैसा कि हम जानते हैं कि ये पहले सोवियत संघ का हिस्सा थे और सोवियत संघ के विघटन के बाद ये सोवियत सेंट्रल एशिया या सोवियत मध्य एशिया के ये 5 गणराज्य बने, जिनके साथ भारत ने 1991-1992 से ही अपने कूटनीतिक संबंध, अपने राजनयिक संबंध स्थापित किए। और भारत की बहुत प्रमुख नीतियों में से एक लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट नीति के अलावा, अगर हम एक रीजन को लेकर के, एक खास क्षेत्र को लेकर के अगर भारत की कोई विदेश नीति को देखें, तो इस लिहाज से कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मध्य एशिया के देशों को भारत ने हमेशा से एक प्रमुख स्थान दिया है। इस संदर्भ में मध्य एशिया के देशों के साथ, हालांकि हमारी कनेक्टिविटी की जो डायरेक्ट लिंकेज की जो बात है, वो एक बड़ा प्रश्न है और एक अनसुलझा हुआ सवाल है। और इसी वजह से एक बड़ा अच्छा उदाहरण मैंने अपने एक मित्र को दिया था कि दिल्ली से कोची जाने में आपको करीब करीब 3.5 घंटे लगते हैं, और इतना ही समय अगर आप दिल्ली से ताशकंद जाना चाहें तो आपको लगेंगे। तो सेंट्रल एशिया हमारे इतने नजदीक है, लेकिन भू राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से अब हमारे और उस क्षेत्र के बीच में इतनी कनेक्टिविटी नहीं। हजारों साल पुराना हमारे संबंध जो है वो इन भू राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से कहीं थोड़े से कमजोर हो गए हैं। कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति के तहत और पिछले 12

0: वो महत्वपूर्ण स्थान रखती है।
1: जी
0: लेकिन अगर द्विपक्षीय संबंधों को हम देखें तो किर्गिस्तान के साथ भारत के संबंध बहुत मजबूत हैं, और उसमें रक्षा क्षेत्र बहुत ही आम लोगों में जानने वाली बात नहीं है। लेकिन किर्गिस्तान के साथ भारत के रक्षा संबंध भी बहुत मजबूत है, और वो मध्य एशिया में भारत को एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ देते हैं।
1: जी जैसा आपने कहा अभी कि एससीओ का आपने उल्लेख किया, तो प्रधानमंत्री अभी 26वें एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं और अब उसकी स्थापना के जो 25 साल पूरे हो गए हैं, तो भारत के लिए इस मंच की अभी क्या प्रासंगिकता है और भारत इसमें अपनी भूमिका को किस तरह देखता है?
0: एक उभरती हुई महाशक्ति के तौर पे भारत के लिए एससीओ एक बहुत महत्वपूर्ण संगठन है। पहला इस वजह से कि ये पूरे जो कॉन्टिनेंटल एशिया जिसको हम कहते हैं, जो लैंड बेस जमीनी जो एशिया है जो कि समुद्र से नहीं जुड़ा हुआ है, उसके केंद्र में एससीओ है, और जिसमें चीन भी है, जिसमें रूस भी है, ईरान भी है, पाकिस्तान भी है, और ये पांच जो गणराज्य हैं मध्य एशिया के वो तो इसमें मेंबर्स हैं ही है। तो इस लिहाज से, और भारत और पाकिस्तान दोनों ही इसमें सदस्य हैं, तो इस लिहाज से एससीओ की बड़ी केंद्रीय भूमिका है कॉन्टिनेंटल एशिया की जो भू राजनीति और उसके जो सामरिक और आर्थिक कनेक्टिविटी के जो सवाल हैं उनको सुलझाने के लिए। तो एक क्षेत्रीय संगठन के तौर पे ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत को ये इस क्षेत्र में, खास तौर से चीन और रूस के साथ मिलकर इस क्षेत्र में आतंकवाद, अलगाववाद जैसी चुनौतियों से निपटने के साथ साथ कैसे हमारे तमाम देशों के बीच में आर्थिक सहयोग बढ़े, और इस पूरे क्षेत्र में भारत की भूमिका और तमाम देशों की भूमिका जो है वो प्रासंगिक रहे, इसके लिए एससीओ बहुत महत्वपूर्ण है। एससीओ एक अलग प्लेटफॉर्म है, क्योंकि ये अगर हम उदाहरण या कंपैरिजन के तौर पे अगर हम क्वाड को देखें जिसमें अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया है, उसके मुकाबले ये एक ऐसा संगठन है जिसमें कि वो देश हैं जिनके अमेरिका के साथ बहुत अच्छे संबंध नहीं है, तो भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और मल्टी अलाइनमेंट की जो नीति है उसको भी ये एक तरह से पूरी तरह से प्रोजेक्ट करता है। तो एससीओ इस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है, और भारत जो कि एक तरफ कॉन्टिनेंटल एशिया से जमीनी तौर पर जुड़ा हुआ है पूरे एशिया से, और दूसरी तरफ वो अपने हिंद महासागर और अरब सागर और बे ऑफ बंगाल की वजह से समुद्रिक रास्तों से जुड़ा है, तो भारत जिसके पास ये दोनों ही एक तरह से कहें कि प्लस पॉइंट्स हैं, उस लिहाज से एससीओ की सदस्यता उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की।
1: राहुल जी, भारत और किर्गिज गणराज्य के बीच केवल रणनीतिक हितों तक ही संबंध नहीं है, यहीं तक सीमित नहीं है वो, और हमारे इन दोनों देशों के बीच शिक्षा, संस्कृति और लोगों के बीच संपर्क भी, ये भी आपसी रिश्ते का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन पुराने संबंधों को आधुनिक कूटनीति में किस तरह अब एक नई ऊर्जा दी जा सकती है?
0: किर्गिस्तान की जो एक बहुत ही खास बात है कि हमेशा से ही भारत और किर्गिस्तान के संबंध द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ, एक अगर हम इनको दो स्तंभ माने तो द्विपक्षीय के साथ साथ रीजनल जो संस्थान है, मल्टीलेटरल जो ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो एससीओ के जरिए हो या अंतरराष्ट्रीय संगठन जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ हो, इन दोनों में ही भारत और किर्गिस्तान के बीच में संबंध इन दोनों ही तरीकों से बहुत आगे बढ़े हैं। दोनों देशों के बीच में व्यापार हालांकि 1 बिलियन के आसपास ही पहुंचता है, लेकिन इसको आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। किर्गिस्तान के साथ भारत के संबंध जैसा कि सेंट्रल एशिया के बाकी देशों के साथ भी समस्या है, कनेक्टिविटी एक बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि उसकी कनेक्टिविटी डायरेक्ट ना होने की वजह से हमारे पास सिर्फ एक रास्ता बचता है एयर कनेक्टिविटी का। तो आर्थिक मामलों में मुझे लगता है कि कनेक्टिविटी की वजह से बहुत सी दिक्कतें पेश आई हैं, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि रक्षा के क्षेत्र में भारत और किर्गिस्तान के बीच में पिछले बहुत वर्षों से खंजर नाम की एक्सरसाइज होती रही है, जिसका 13वां संस्करण अभी फरवरी 2026 में हुआ था। आईटेक प्रोग्राम्स को ले लें, या जिसमें हम कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं किर्गिज सिविल सर्वेंट्स की और उनके तमाम जो ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, या पार्लियामेंट्री एक्सचेंजेस को लेकर के, कल्चरल कनेक्ट को लेकर के दोनों ही देशों के बीच में सहयोग के बहुत सारे रास्ते तलाशे गए हैं। इसके साथ साथ जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक आईटी सुपर पावर के रूप में, और खास तौर से ग्लोबल साउथ के देशों को अपने साथ लेकर चलने वाले आईटी सुपर पावर के तौर पे भारत ने अपनी एक बड़ी भूमिका तलाश ली है, और दुनिया के तमाम देश उसको मान रहे हैं। तो इस लिहाज से भी किर्गिस्तान में एक आईटी सेंटर, भारत ने हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट के तहत एक आईटी सेंटर बनाया है जिस पर दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। एग्रो प्रोसेस, हायर एजुकेशन, फार्मास्यूटिकल्स, फार्मास्यूटिकल तो खैर बहुत बड़ा क्षेत्र दोनों देशों के बीच में हमेशा से रहा है, तो ये तमाम क्षेत्र हैं जिनमें दोनों देशों के बीच में सहयोग रहा है, और मुझे लगता है कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि किर्गिस्तान के साथ भारत के संबंध

0: संबंध आपसी विश्वास, परस्पर संबंधों में एक अटूट विश्वास के साथ साथ दोनों देशों के हितों में और उनकी जो डिप्लोमेटिक अलाइनमेंट है उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक बहुत ही प्रामाणिक दोनों देशों के बीच में दोस्ती रही है। तो हमेशा से ही किर्गिस्तान को भारत ने मध्य एशिया के एक महत्वपूर्ण पार्टनर के तौर पर देखा। हालांकि दोनों देशों के बीच में आर्थिक सहयोग उतना बड़ा नहीं है, लेकिन राजनीतिक और कूटनीतिक सहयोग की वजह से इस देश की महत्ता भारत के लिए बढ़ती है। एक बड़ा एंकर है ये, जिसे कहते हैं कि भारत को मध्य एशिया के क्षेत्र में स्थापित करने के लिए एक बड़े दोस्त, एक बड़े एंकर, एक बड़े होस्ट के तौर पर किर्गिस्तान को आंका जा सकता है।
1: जी, आपकी इसी बात को अगर मैं आगे बढ़ाऊं थोड़ा, तो क्या लगता है कि जो मध्य एशिया के अन्य देश हैं उनको मिलाकर भारत एक अपनी मध्य एशिया की अलग रणनीति विकसित कर रहा है? अभी जो हर देश के साथ एक द्विपक्षीय संबंध अलग-अलग है, उससे परे है जो सभी देशों के साथ मिलकर काम करने की बात है, क्या ऐसा कुछ भविष्य दिखाई देता है आपको?
0: जी बिल्कुल, भारत की एक बहुत ही स्पष्ट और एक बहुत ही दीर्घकालिक रणनीति है मध्य एशिया के देशों के साथ मिलकर काम करने की, जिसका हम कनेक्ट सेंट्रल एशिया के नाम से जानते हैं। लेकिन कनेक्ट सेंट्रल एशिया के साथ साथ भारत ने यह भी कोशिश की है कि हम सिर्फ कनेक्टिविटी, कॉमर्स, काउंसुलर रिलेशंस और कम्युनिटी, ये जो चार सीज हैं, इनसे बाहर निकलकर हम उस क्षेत्र को ही इस ढंग से रखें अपने विदेश नीति के दीर्घकालिक जो हमारे गोल्स हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर हम रखें तो सेंट्रल एशिया को कैसे इस डायरेक्शन मिलाया जाए कि दोनों ही पक्षों के बीच में एक कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पर संबंध बने और दोनों ही पार्टीज इसमें प्रॉस्परस और ज्यादा स्टेबल और ज्यादा म्यूचुअली एडवांटेजियस सिचुएशन में पहुंचे। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि इस कनेक्ट सेंट्रल एशिया के माध्यम से भारत ने ये एक रणनीति बनाई तो बहुत साल पहले थी, और 90 के दशक से ही भारत ने इस पर काम करना शुरू किया। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे जो मेजर फंडामेंटल किस्म के जो हमारे पास समस्याएं हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, उनको दूर करने में थोड़ी सी हमें दिक्कतें आ रही हैं, जिसमें कि एक महत्वपूर्ण समस्या है कनेक्टिविटी, डायरेक्ट लिंकेज नहीं है। तो ईरान की तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं, रूस के साथ मिलकर भी हमने कोशिश की कि सेंट्रल एशिया के क्षेत्र को कैसे आगे बढ़ाया जाए और भारत की एक नई रणनीति बने। बहरहाल, भारत की कोशिश ये है कि मध्य एशिया के देशों को हम आइडियोलॉजी के तौर पर, एक विचारधारा के संदर्भ में हम उसे ग्लोबल साउथ के साथ जोड़ें। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात का जिक्र अपनी उज्बेकिस्तान की यात्रा में पहले ही कर दिया है। दूसरी बात यह है कि भारत के जो इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जैसे कि हम रेल, रोड और एयर कनेक्टिविटी के माध्यम से समझते हैं, या सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जिसमें डिजिटल पेमेंट्स या IT कॉपरेशन, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के जो लिंकेजेस हैं, इंटरनेट, टेलीफोनी और तमाम चीजों के जो सॉफ्ट कनेक्टिविटी है, उसको बढ़ाने की कोशिश हो रही है। और तीसरी चीज है कि वो कौन से क्षेत्र हैं जिसमें मध्य एशिया के देश एक विकसित भारत 2047 का जो उद्देश्य है उसको पूरा करने में जिम्मेदार दोस्त की
1: जी
0: भूमिका निभा सकते हैं, और उसमें क्रिटिकल मिनरल सेक्टर्स बहुत महत्वपूर्ण हैं।
1: बिल्कुल
0: मध्य एशिया के तमाम देश हैं जो क्रिटिकल और रेयर अर्थ एलिमेंट्स में काफी बड़ा हिस्सा रखते हैं, उनके पास बहुत सारे ज्ञात और अज्ञात सोर्सेज हैं
1: जी
0: पोटेंशियली, जिसमें बहुत सारे सोर्सेस को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। चीन ने इसमें तमाम कोशिश की है। तो भारत की अब ये रणनीति है, जो सवाल आपने पूछा उसका अगर मैं एक लाइन में जवाब दूं, तो भारत की रणनीति ये है कि विकसित भारत 2047 के संदर्भ में मध्य एशिया के देशों को कैसे अपनी नीति से ऐसे अलाइन किया जाए कि उनका भी भला हो और भारत का विकास हो और 2047 में हम अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकें।
1: जी मतलब भारत के व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा और निवेश, इन सब के लिए इस क्षेत्र में भी प्रबल संभावनाएं हैं।
0: जी बिल्कुल, बहुत प्रबल संभावनाएं हैं। मैं ये मानता हूं कि 90 के दशक से ही मध्य एशिया ऐसे तमाम जंजालों में उलझा रहा, जियोपॉलिटिकल, जिसमें अफगानिस्तान की भी समस्या है, मध्य एशिया के तमाम देशों की अंदरूनी बहुत सी समस्याएं रहीं। तो ये सही समय भारत और मध्य एशिया के बीच में संबंधों का जो सही, उसका जो पोटेंशियल है उसको रियलाइज करने का नहीं आया। बट मुझे लगता है कि आगे आने वाले 10 सालों में हम देखेंगे कि मध्य एशिया की वाकई में कितनी बड़ी भूमिका इस भू राजनीतिक व्यवस्था जो एशिया की है उसमें है, और SCO जैसे संगठन के माध्यम से कैसे उनकी एक तरह से केंद्रीय भूमिका होती है जब वो महाशक्तियों के साथ, भारत, चीन और रूस के साथ, कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। और तीसरा, भारत का जब विकास हो रहा है इतनी तेज रफ्तार से और भारत एक विकसित महाशक्ति बनने की राह पर है 2047 तक, तो हम आगे आने वाले 10 सालों में देखेंगे कि मध्य एशिया कैसे इसमें एक बड़ा योगदान देता है। और जो हमारी 1000 साल का जो एक बहुत समृद्ध इतिहास रहा है दोनों ही पक्षों के बीच में संबंधों का, मुझे लगता है इस पूरी यात्रा के दौरान 2010 और आगे आने वाले समय की यात्रा के दौरान इन तमाम बातों को फिर से हम रेखांकित कर पाएंगे और अपने इतिहास को फिर से पुनर्जीवित कर पाएंगे।
1: जी राहुल जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किर्गिज गणराज्य यात्रा, SCO की भूमिका और भारत मध्य एशिया संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर अपने सार्थक विचार साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी बहुत धन्यवाद।
1: इसके साथ आज के सुर्खियों में कार्यक्रम से मुझे दीजिए अनुमति, फिर मुलाकात होगी एक नए विषय एक नए विश्लेषण के साथ। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण किर्गिस्तान गणराज्य यात्रा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर राहुल मिश्र। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सुबोध मिश्र। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: सुर्खियों में
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय हो चला है फिल्मी गीतों के कार्यक्रम फिल्म संगीत का। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाज में। गीत को लिखा और संगीतबद्ध किया है रविंद्र जैन ने। फिल्म का नाम है राम तेरी गंगा मैली।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म याराना से, किशोर कुमार की आवाज में। गीत को लिखा है अनजान ने और संगीत है राजेश रोशन का।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश, कार्यक्रम है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत ज्योति बने ज्वाला से, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और किशोर कुमार की आवाज में। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

कार्यक्रम का अगला गीत हम लेकर आए हैं फिर वही रात से, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। गीत को लिखा है मजरू ने और संगीत है राहुल देव बर्मन का।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत आकाशवाणी मध्य प्रदेश पर। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म आशा से, लता मंगेशकर की आवाज में। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, समय है एक अंतराल का।
1: एक आवाज जिसने बदल दिया वक्त का सफर, एक सुर जिसने जोड़े हर दिल से रिश्ते, और अब पूरा कर चुका है अपना गौरवशाली 90 साल का सफर। हाँ श्रोताओं, यह है आपका अपना आकाशवाणी। 90 वर्षों से हर दिल की आवाज।
2: पढ़ाई के साथ कमाई भी। मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। 18 से 29 साल के युवाओं को मिलेगी इंडस्ट्री ट्रेनिंग और हर महीने 8,000 से 10,000 रुपए तक का स्टाइपेंड। हुनर सीखो, पैसा कमाओ और करियर बनाओ एक साथ। रजिस्टर करने का मौका अभी है।
3: nnsky.mp.gov.in पर जाएं। सीखो, कमाओ और लाइफ में कुछ बड़ा करो।
4: भारत के संविधान की प्रस्तावना।
5: हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1900

0: 1949 को एतद्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे भारत के संविधान की प्रस्तावना।
2: कुछ लोग सोचते हैं योग के लिए फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी तो सोच में होनी चाहिए ना, ना कोई बंधन, ना कोई बॉडी टाइप। बचपन हो या पचपन, व्हीलचेयर हो या वर्क फ्रॉम होम, योग सबका हक है।
3: योग जीवन से जब जुड़ता है, एक सहज क्रिया बन जाता है, तो वो प्रतिपल उसका बेनिफिट देता रहता है।
2: आइए इस 21 जून हम सब हिस्सा बने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का और करें स्ट्रेच एंड चिल योग के साथ।
4: अंतराल पूर्ण हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही समय में आप दिल्ली से समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से व्यापार, ऊर्जा और रक्षा मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा, भारत यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के हर प्रयास का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन के साथ बातचीत में नौवहन की स्वतंत्रता और नागरिक सुरक्षा पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने किर्गिज गणराज्य और आर्मेनिया के नेताओं से भी मुलाकात की। वे कल शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे पर समझौते से लंबे समय से चले आ रहे विवाद का समाधान। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मृतकों की संख्या 900 से अधिक हुई। उपकरणों की कमी से राहत और बचाव कार्य प्रभावित, 4,247 से अधिक लोग लापता। और फुटबॉल में एफसी अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में 26वें वार्षिक शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों, व्यापार और निवेश, ऊर्जा और रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और रूस के बीच सहयोग का नई ऊंचाइयों तक पहुंचना बहुत संतोष का विषय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
3: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
5: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा।
3: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देता है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर, उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
5: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कुछ ही दिनों में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
3: कुछ दिनों बाद भारत ब्रिक्स समिट का आयोजन कर रहा है। सभी भारतवासी भारत में आपका स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। आपकी यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को भी बल मिलेगा और ब्रिक्स के अंतर्गत संवाद और सहयोग भी सशक्त होगा।
5: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन के साथ बिश्केक में द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन से अलग हुई बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने पश्चिम एशिया क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने भारत के रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा वाणिज्य की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर भी बल दिया। बाद में प्रधानमंत्री ने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादर जापारोव से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रक्षा, आर्थिक, फार्मा, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, संस्कृति और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री कल बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत और कतर के बीच लंबे समय से मजबूत साझेदारी है, जिसमें ऊर्जा सहयोग एक प्रमुख आधार है। श्री पुरी ने कतर में भारत के नवनियुक्त राजदूत डॉ. के शिखर रेड्डी से मुलाकात की। श्री पुरी ने पेट्रोनेट एलएनजी और कतर एनर्जी के बीच 20 वर्ष के एलएनजी समझौते का उल्लेख किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
5: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले वित्त वर्ष के इसी अवधि में यह वृद्धि दर 6.9% थी। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास दर मजबूत बनी हुई है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी में भी 10.3% की बढ़ोतरी हुई। मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग ने कहा कि सभी क्षेत्रों में वृद्धि बेहद सकारात्मक है।
7: ओवरऑल ग्रोथ इन ऑल सेक्टर्स हैज बीन वेरी पॉजिटिव और ये यही दर्शाता है कि जो प्रकार से इंटरवेंशंस हुए हैं सरकार के वो इम्पैक्ट रख रहे हैं, और जबकि ओवरऑल हालात में चेंजेस है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में, उसके बावजूद ग्रोथ रेट इतनी पॉजिटिव है। प्राइवेट और सरकारी दोनों के ही कारण फिक्स कैपिटल ग्रोथ में होता है, और 12% का ये भी दर्शाता है कि जो फ्यूचर क्वार्टर्स की ग्रोथ है उसका भी हम एक अंदेशा देता है कि क्या है।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि को बड़ी उपलब्धि बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये उपलब्धि देश के लोगों की सामूहिक शक्ति और दृढ़ता को दर्शाती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि इस मजबूत आर्थिक प्रदर्शन का श्रेय देश के लोगों और उनकी कड़ी मेहनत को जाता है। वित्त मंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार द्वारा किए गए सुधार और अर्थव्यवस्था के कुशल प्रबंधन के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी जीडीपी वृद्धि की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व का प्रमाण है। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। एक रिपोर्ट।
8: गृह मंत्री ने कहा कि इस समझौते से पूर्वी भारत में लंबे समय से चल रहे जल विवाद का समाधान हो गया है। उन्होंने कहा कि समझौते से बिहार और झारखंड के बड़े ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों किसानों को सिंचाई के लिए और लोगों को पीने का पानी उपलब्ध होगा। श्री शाह ने कहा कि इससे बिहार के भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल, गया और पटना को पीने और सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। इसके अलावा झारखंड के पलामू, गढ़वा और अन्य क्षेत्रों में भी सिंचाई और पीने के लिए पानी उपलब्ध होगा। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के प्रति आभार व्यक्त किया। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
5: सरकार ने देश में चिप निर्माण इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ सेमिकॉन योजना के दूसरे चरण को अधिसूचित किया है। इसके साथ भारत आने वाले वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग बाजार का लगभग 10% हिस्सा हासिल कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में बताया कि भारत में विकसित हो रहे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम से प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की भी उम्मीद है।
9: फैब्रिकेशन में, पैकेजिंग में, इक्विपमेंट में, मटेरियल्स में, इन सब में ट्रेनिंग दी जा रही है और जिस तरह का इकोसिस्टम बन रहा है बहुत जल्दी 50-60 हजार डायरेक्ट जॉब्स हर साल इसमें क्रिएट होंगे। ऑलरेडी डिजाइन में 50-60 हजार डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं, अभी मैन्युफैक्चरिंग में भी इतना लेवल का इसमें जॉब्स क्रिएट होंगे।
5: स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आज रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के साथ सक्रिय शासन और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित बहुआयामी मंच पीएम प्रगति के अंतर्गत टीबी उन्मूलन प्रयासों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए अंतर मंत्रालयी समन्वय को मजबूत करने पर बल दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने एसिड की खुदरा बिक्री को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 2013 में दिए गए निर्देश के बावजूद एसिड की आसानी से उपलब्धता को लेकर चिंताओं के बीच आज केंद्र सरकार से पूछा है कि एसिड की खुदरा बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए या इसे और कड़े नियमों के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। न्यायालय ने केंद्र, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 6 सप्ताह के भीतर एसिड हमले के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए उचित नीति तैयार करने का भी निर्देश दिया है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के बाद मसौदा सूची जारी कर दिया है। सूची के अनुसार 97 लाख से अधिक मतदाता इसमें शामिल हैं, जबकि 47 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया है कि जिन मतदाताओं के नाम सूची में नहीं हैं, वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने दावे दाखिल कर सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची नवंबर में जारी की जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
10: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
5: ये आकाशवाणी है। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद बचाव अभियान में लगे सुरक्षा कर्मियों को आधुनिक उपकरणों और हेलीकॉप्टरों की कमी के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के ढहने तथा हिमस्खलन के कारण आई इस बाढ़ ने भोटे कोशी नदी के किनारे के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घर, सड़कें और पुल नष्ट हो गए और पनबिजली परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है, जबकि 4,247 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। नेपाल सेना, नेपाल पुलिस और सशस्त्र पुलिस बल के जवानों को प्रभावित क्षेत्रों में बड़ी संख्या में तैनात किया गया है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि आधुनिक बचाव उपकरणों की कमी के कारण खतरनाक इलाकों में बचाव अभियान विशेष रूप से कठिन हो रहा है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने बाढ़ को विनाशकारी प्राकृतिक आपदा बताया है। भारत ने नेपाल में बचाव कार्यों और पीड़ितों की पहचान में सहायता के लिए विशेष दल तैनात किए हैं। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश और कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश दर्ज की गई है। कई इलाकों में जलभराव के कारण जनजीवन प्रभावित है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बैंकिंग और क्रेडिट तक पहुंच के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। एएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप 2027 के क्वालिफायर में भारत ने आज सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। ताशकंद के दोस्तलिक स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सिंगा मयूम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। अंत में मुख्य समाचार।

0: चार एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में एससीओ शिखर सम्मेलन से अलग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से व्यापार ऊर्जा और रक्षा मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा भारत यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के हर प्रयास का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान के साथ बातचीत में नौवहन की स्वतंत्रता और नागरिक सुरक्षा पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने किर्गिज गणराज्य और आर्मेनिया के नेताओं से भी मुलाकात की। वे कल शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे पर समझौते से लंबे समय से चले आ रहे विवाद का समाधान। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मृतकों की संख्या 900 से अधिक हुई और एफसी अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds talks with Russian President Vladimir Putin in Bishkek, focusing on trade, energy and defense, says India backs every effort to end war in Ukraine. Prime Minister Modi stresses freedom of navigation and civilian protection during meeting with Iran President Masoud Pezeshkian. Prime Minister also meets Kyrgyz Republican Armenian leaders to address SCO summit tomorrow. India's GDP jumps to 7.8% in the first quarter of the current fiscal despite global headwinds. Bihar and Jharkhand reach agreement on Son River water sharing, settling long-standing dispute. Relief and rescue efforts in Nepal flash flood tragedy hit by equipment shortage as death toll crosses 900, over 4,000 remain missing. And in football, India begin campaign at under 20 Asian Cup qualifiers with 1-0 win over Syria at Tashkent. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi held bilateral talks with Russian President Vladimir Putin on the sidelines of the Shanghai Cooperation Organization SCO summit at Bishkek in Kyrgyz Republic today. The discussions focused on key areas of India-Russia bilateral cooperation, including trade and investment, energy and defense. During the meeting, Prime Minister Modi said it was a matter of deep satisfaction that cooperation between India and Russia continue to scale new heights.
2: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
1: On the Ukraine conflict, Prime Minister Modi said they must move from endless wars to ending wars, adding that India supports all efforts towards peace and will continue to do so.
2: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देते। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
1: During the meeting, the Prime Minister said all Indians are eager to welcome President Putin to the BRICS summit, which will be hosted in New Delhi in the coming days.
2: कुछ दिनों बाद भारत ब्रिक्स समिट का आयोजन कर रहा है। सभी भारतवासी भारत में आपका स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। आपकी यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को भी बल मिलेगा और ब्रिक्स के अंतर्गत संवाद और सहयोग भी सशक्त होगा।
1: President Vladimir Putin showed his satisfaction that Indian-Russian relations continue to strengthen on the basis of the principles of a special and privileged partnership. Prime Minister Modi also held bilateral meetings with the leaders of Iran, Kyrgyz Republic and Armenia today. Mr. Modi and Iran President Dr. Masoud Pezeshkian during the meeting reviewed recent developments in the West Asia region and shared

0: Odisha remains under the grip of intense monsoon activity with heavy to extremely heavy rain reported from several parts of the state. We have more from our correspondent.
1: The India Meteorological Department has issued a red warning for Sundargarh and Keonsar and an orange warning for Jharsuguda, Bargarh, Sambalpur, Deogarh, Angul and Mayurbhanj for today. The red warning will continue for Sundargarh and Keonsar tomorrow, with orange warning remaining in force for the same six districts. The IMD says the well-marked low-pressure area over the northwest Bay of Bengal and adjoining West Bengal North Odisha coast is likely to move west-northwestwards across North Odisha and Gangetic West Bengal during the next 24 hours. Extremely heavy rain is forecast at isolated places today and very heavy rain tomorrow. Meanwhile, the flood situation continues to disrupt normal life in parts of Jajpur, Kendrapada and Bhadrak. Prakash Das for Akashvani News, Bhubaneswar.
0: The India Meteorological Department, IMD, has forecast very heavy rainfall over Chhattisgarh tomorrow. Relief and rescue operations continue in Nepal following devastating flash floods, but security personnel are facing shortages of specialized equipment, body bags, ropes and helicopters. The floods triggered by a suspected ice and rock avalanche near the Nepal-Tibet border last week swept through the Bhotikoshi River corridor, destroying homes, roads and bridges and damaging hydropower projects. Nepal's National Disaster Risk Reduction and Management Authority says the death toll has risen to 939, while more than 4,200 people remain untraceable. Nearly 21,000 personnel from the Nepal Army, Nepal Police and Armed Police Force are engaged in rescue operations across the affected areas. The Red Cross estimates that more than 90,000 people have been affected. Meanwhile, India has deployed specialized rescue and forensic teams to assist Nepal. A 19-member Indian forensic team is helping with the DNA analysis to identify victims, while an Indian tunnel rescue team is assisting in operations at hydropower sites. Indian experts are also helping locate hundreds of workers believed to be trapped or missing at hydropower projects. This is Akashvani. You are listening to the news at 9.
2: For news and updates anytime, anywhere, follow us on X at AIR News Alerts and on Facebook at All India Radio News.
0: The benchmark domestic equity indices ended 0.4% down today. We have a report.
3: The Sensex declined 307 points to close at 76,957. Nifty dropped 95 points to settle at 24,080. Earlier, the markets opened on a weak note as escalating geopolitical tensions in West Asia and rising crude oil prices weighed on investors' sentiment. In the forex market today, rupee appreciated by 22 paise to close at 95 rupees and 17 paise against the US dollar. With Drishti's report, this is Lalema Aneja Dang for Akashwani News.
0: In football, India began their Under-20 Asian Cup 2027 qualifying campaign on a winning note, defeating Syria 1-0 at Tashkent today. Singer Mayum Shami scored the decisive goal in the 86th minute to give India all 3 points in their opening Group B match. India have been placed in Group B alongside hosts Uzbekistan, Syria and Bangladesh. India will play their next match against host Uzbekistan on Thursday. Lionel Messi today announced his retirement from international football, bringing an end to a 20-year Argentina career that included a World Cup triumph, 2 Copa America titles and a record 207 appearances for his country. Messi said the decision has been on his mind since the World Cup final defeat to Spain before the death of his father further convinced him it was time to step away. The 39-year-old revealed the decision in a statement posted on his official Instagram account, confirming that he would no longer wear the Argentina jersey after one of the most celebrated international careers in football history. Messi said the decision had been painful, particularly because of the emotional bond he has shared with the national team and Argentina supporters throughout his career. He led his country to the World Cup title in 2022 after years of near misses, and also help Argentina win 2 Copa America crowns. In the US Open, 24-time Grand Slam champion Novak Djokovic suffered a first-round exit in the men's singles for the first time. Djokovic went down against Argentina's Mariano Novon in New York this morning. He had also not lost his opening match at any Grand Slam since 2006 Australian Open. In the women's singles, Venus Williams was also knocked out in the first round of her 26th US Open appearance. In table tennis, India's Ankur Banerjee has won his maiden men's title at the WTT Feeder Olomouc tournament in Czech Republic. The world number 78 defeated third seed Denis Kozul of Slovenia 3-1 in the final. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi holds talks with Russian President Vladimir Putin in Bishkek, focusing on trade, energy and defense, says India backs every effort to end war in Ukraine. Prime Minister Modi stresses freedom of navigation and civilian protection during meeting with Iran President Masoud Pezeshkian. Prime Minister also meets Kyrgyz Republican Armenian leaders to address SCO summit tomorrow. India's GDP jumps to 7.8% in the first quarter of current fiscal despite global headwinds. Bihar and Jharkhand reach agreement on Son River water sharing, settling long-standing dispute. Relief and rescue efforts in Nepal flash flood tragedy hit by equipment shortage as death toll crosses 900. Over 4,000 remain missing. And Lionel Messi announces retirement from international football. And that's all in the news at 9. Good night.
4: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वजीराजम नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान तिजारत, तवानाई और दिफाई उमूर पर तवज्जो मरकूज की गई। वजीराजम ने कहा कि भारत यूक्रेन में जंग के खात्मे की हर कोशिश की हिमायत करता है। वजीराजम मोदी ने ईरान के सदर मसूद पेजिशकियान के साथ मीटिंग के दौरान जहाजरानी की आजादी और शहरियों की हिफाजत पर जोर दिया। वजीराजम ने किर्गिज जमहूरिया और आर्मेनियाई रहनुमाओं से भी मुलाकात की। वजीराजम कल एससीओ समिट से खिताब करेंगे। भारत की मजमूई घरेलू पैदावार जीडीपी आलमी उथल-पुथल के बावजूद रवां माली साल की पहली सहमाही में 7.8% तक पहुंच गई। बिहार और झारखंड तवील अरसे से चले आ रहे तनाजे का तस्फिया करते हुए सोन नदी के पानी की तकसीम से मुतालिक माहदे पर पहुंच गए हैं। नेपाल में अचानक सैलाब के सानहे में मरने वालों की तादाद 900 से तजावुज कर गई है। राहत और बचाव के साजो सामान की कमी के दौरान 4,000 से ज्यादा अफराद अब भी लापता हैं। और मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी लायनल मेसी ने बैनुल अक्वामी फुटबॉल से सुबुकदोशी का ऐलान किया है। अब खबरें तफसील से। वजीराजम नरेंद्र मोदी ने आज जमहूरिया किर्गिस्तान के बिश्केक में शंघाई तावुन तंजीम एससीओ सरबरा इजलास के मौके पर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ दोतरफा बातचीत की। बातचीत में भारत और रूस के दरमियान दोतरफा तावुन के अहम शोबों तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दिफा पर तवज्जो मरकूज की गई। मीटिंग के दौरान वजीराजम मोदी ने कहा कि उन्हें इस बात पर बेहद इत्मीनान है कि भारत और रूस के दरमियान तावुन मुसलसल नई बुलंदियों को छू रहा है।
5: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। आगे बढ़ना यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
4: यूक्रेन तनाजे के बारे में वजीराजम मोदी ने कहा कि तवील जंगों को खत्म करने की सिमत बढ़ना जरूरी है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत अमन के लिए तमाम कोशिशों की हिमायत करता है और आइंदा भी करता रहेगा।
5: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देता है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
4: मीटिंग के दौरान वजीराजम ने कहा कि तमाम भारतीय शहरी सदर पुतिन को ब्रिक्स सरबरा इजलास के लिए भारत में खुशामदीद कहने के मुंतजिर हैं, जो आने वाले दिनों में नई दिल्ली में मुनाकिद होगा।
5: कुछ दिनों बाद भारत ब्रिक्स समिट का आयोजन कर रहा है। सभी भारतवासी भारत में आपका स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक है। आपकी यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को भी बल मिलेगा और ब्रिक्स के अंतर्गत संवाद और सहयोग भी सशक्त होगा।
4: रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि भारत और रूस के ताल्लुकात खुसूसी और मुमताज शराकतदारी के उसूलों की बुनियाद पर मुसलसल मजबूत हो रहे हैं। वजीराजम मोदी ने आज ईरान, जमहूरिया किर्गिस्तान और आर्मेनिया के रहनुमाओं के साथ भी दोतरफा मीटिंगें की। ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेजिशकियान के साथ मीटिंग के दौरान दोनों रहनुमाओं ने मगरबी एशिया खित्ते के मौजूदा हालात वाकयात और बदलते हुए मंजरनामे पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया और भारत के इस मुस्तकिल मौकफ का इआदा किया कि बातचीत और सिफारतकारी के जरिए ही

0: नमस्कार दोस्तों, चर्चा के साप्ताहिक मंच पब्लिक स्पीक में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं मुनीश शर्मा। दोस्तों, एक दौर था जब बैंकों के बड़े बड़े दरवाजे देखकर आम आदमी हिचकिचाता था, साहूकारों के चंगुल में फंसकर पीढ़ियां कर्जे में डूब जाती थीं। लेकिन आज वक्त बदला है। आज आपकी जेब में रखा मोबाइल ही आपका बैंक खाता बन गया है, या कहें वित्तीय समावेशन का औजार बन गया है। चाहे वो प्रधानमंत्री जनधन खाता हो, रेड़ी पटरी वालों के लिए स्वनिधि योजना हो, या छोटे कारोबार के लिए मुद्रा लोन हो, वित्तीय समावेशन ने आखिरी पायदान पर खड़े आदमी को भी ताकत दी है और उसे सशक्त बनाया है। जब एक महिला को स्वयं सहायता समूह से लोन मिलता है और वो अपनी सिलाई की दुकान या फिर बुटीक खोलती है, तो वो सिर्फ एक दुकान नहीं खोलती बल्कि एक पूरा परिवार आत्मनिर्भर बनता चला जाता है। यही तो है असली नागरिक सशक्तिकरण, जब पैसा सीधा आपके खाते में आता है बगैर किसी बिचौलिए के, तो व्यवस्था पर भरोसा और बढ़ता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों एक ऐसे बदलाव की जो देश के आम नागरिक के जीवन को और बेहतर और स्वाभिमानपूर्ण बना रहा है। और आज इसी बदलाव की जानकारी पर आपसे चर्चा के लिए हमने आमंत्रित किया है आर्थिक विश्लेषक शुभमोय भट्टाचार्य जी को और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व महाप्रबंधक और विशद अनुभव के धनी रमेश कुमार अरोड़ा जी को। स्टूडियो में आप दोनों ही विशेषज्ञों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है।
1: नमस्कार सभी श्रोताओं को, मेरा नमस्कार।
0: और दोस्तों, हम बताएं कि विषय जो है हमारा, बैंकिंग और क्रेडिट तक पहुंच के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने पर परिचर्चा। दोस्तों, हमारे स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हैं, नंबर हैं 0112331041 और 23717117, 23717106 और 233144444। लेकिन अगर आप दिल्ली के बाहर से फोन कर रहे हैं तो भूलिए नहीं 011 जरूर डायल कीजिए। और व्हाट्सएप नंबर की भी सुविधा है जिस पर आप हमें सवाल अपने भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 9289094044। तो दोस्तों, हम इंतज़ार करेंगे आपकी जिज्ञासाओं का और बात करेंगे हम अपने विशेषज्ञों से भी। और मैं देख रहा हूँ कि अंशु कुमार जी जुड़ रहे हैं हमसे पटना बिहार से, सुनते हैं उनका सवाल। जी जी अंशु कुमार जी बोलिए।
2: नमस्कार सर।
0: जी जी जी, क्या है आपकी जिज्ञासा?
2: पटना से
0: है। हाँ हाँ,
2: स्वागत। सवाल यही था जो हम लोग को जब भी ब्याज है हम लोग हेलो
0: जी जी
2: हम लोग जब भी ब्याज है तो हम लोग को जो पैसा मिलता है तो बैंक में पैसा निकालने से मिलता है, क्या हम लोग को करना चाहिए? क्या हम लोगों को ओटीपी भी बताना चाहिए? अगर ओटीपी बताएंगे तो क्या क्या हो सकता है? और आधार कार्ड नंबर और खाता संख्या ये सब हम जब बता देंगे तो क्या क्या होगा?
0: बैंक से पैसा निकालने के विषय में इनका ये सवाल है कि ओटीपी नंबर अगर कोई और पूछता है तो, संभवतः मैं जितना समझ पाया इन्होंने पूछा है, तो क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? क्या यदि कोई और पूछ रहा है तो क्या वो बताना चाहिए?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी भी कोई भी बैंक आपसे ओटीपी की जानकारी नहीं मांगेगा, ना आपकी पूरा आधार नंबर की कोई डिटेल मांगेगा। ओटीपी केवल आपका पर्सनल के लिए है। जब भी आप बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, ऑनलाइन निकाल रहे हैं, तो आपको ओटीपी खुद आपको डालना है और उसी तरह से आपका पैसा ट्रांसफर हो पाएगा। या निकालना है एटीएम पर जा रहे हैं तो आपको अपना पिन जो है अपने आप कॉन्फिडेंशियल रखना है, ना कि किसी को बताना है। किसी को बताएंगे तो फ्रॉड होने के चांस पूरे हैं।
0: जी हाँ, ओटीपी तो दरअसल आपके पास है और उसे यदि आप किसी के साथ साझा करते हैं तो उसमें बेहद जोखिम है। और जैसा कि आपने बताया, हमें महाप्रबंधक आप रहे हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के रमेश कुमार अरोड़ा जी बता रहे थे, तो आप इस सलाह को ज़रूर आप फॉलो कीजिए, इस पर अमल कीजिए और अपना ओटीपी जो है किसी को बताइए नहीं। और अब मैं ये प्रश्न करना चाह रहा हूँ शुभमोय भट्टाचार्य जी से, जो आर्थिक विश्लेषक हैं, कि आप हमें बताइए, कृपया हमारे श्रोताओं को और हमें समझाइए कि ये जो वित्तीय समावेशन है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है, दरअसल कैसे इसे समझा जाए कि क्यों इसकी जरूरत पड़ी?
3: सबसे पहले आकाशवाणी को नमस्कार मुझे इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए।
0: नमस्कार जी।
3: मैं वित्तीय समावेशन बहुत बड़ी शब्द है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी इस पर भी हम बहुत सारे शोध पत्र लेख वगैरह प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन मैं सीधा उदाहरण देता हूं। आज किसी भी भारत के कोने में कोई भी खुदरा दुकान में आप जाइए, सबसे पहले दुकानदार आपको किसी भी चीज के बिक्री के लिए सबसे पहले वो QR कोड सामने पकड़ा देगा। उनको पता भी नहीं है कि QR कोड कैसे चलता है, उसके पीछे क्या टेक्नोलॉजी है, लेकिन उनको ये भरोसा है कि ग्राहक जब उनसे कोई सामान खरीदते हैं QR कोड से पेमेंट करते हैं, वो पेमेंट बिल्कुल कंफर्टेबली उनके पास उनके बैंक खाते में चला जाता है। वो भी अपना जब कुछ भी चीज खरीदने जाते हैं उसी QR कोड के जरिए UPI में अपना पैसा अपना खाता देख लेते हैं और खाते और खुश होकर अपना जो भी खरीदारी वगैरह है उसका निपटाना करते हैं
0: जी।
3: ये जो चीज हुआ है, लोगों को पूछने की जो जरूरत नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस जो मिल गया है उनको, जो जो अधिकार मिल गया है, मैं इसी को ही फाइनेंशियल इंक्लूजन मानूंगा कि लोग जानते हैं समझते हैं कि बटुए में पैसे रखकर या कहीं पे कुछ भी चीजों का जो पुराने समय का जो और पुराने समय कह रहा हूं मतलब कुछ ही साल पहले का
0: जी जी
3: जो ये अनुभव था वो बिल्कुल लोगों के दिमाग से मानो बिल्कुल हट गया है, बिल्कुल इरेज हो गया है। मैं इसी को ही वित्तीय समावेशन मानूंगा। इसके बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारे इसके स्टेप्स हैं, बहुत सारे इसके टेक्नोलॉजी है और इन पर हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन ये जो कॉन्फिडेंस है कि भाई हम पैसा कहीं से भी ले सकते हैं, किसी तरीके से मिल सकता है, बस हमें एक QR कोड सामने होगा, वो हमारा पूरा सब काम के लिए अवेलेबल है। आज के रुपये का शायद रुपये का चेहरा शायद बहुत जगह पे लोगों को याद नहीं होगा कि रुपये का सिंबल क्या है, लेकिन QR कोड क्या है ये बच्चा बच्चा तक समझता है। और मैं समझता हूँ ये भारतीय फाइनेंशियल इंक्लूजन वित्तीय समावेश का ये सबसे बड़ा और सबसे पुष्ट उदाहरण है
0: जी। शुक्रिया। मैं मुखातिब होता हूँ अब अरोड़ा साहब से, जो हमारे विशेषज्ञ हैं, और उनसे मैं खास तौर पर ये जानना चाहता हूँ कि सरकार ने वित्तीय समावेशन के लिए, देखिए, जनधन योजना, मुद्रा लोन, PM स्वनिधि जैसी कई बड़ी योजनाएं शुरू की हैं, तो आपका जो ये वर्षों का अनुभव है वो क्या बताता है कि इन योजनाओं में जमीनी स्तर पर आम आदमी के जीवन को, खासकर महिलाओं और छोटे दुकानदारों को किस तरह से प्रभावित किया है? तो ये तो है हमारा आपसे सवाल, लेकिन एक और सवाल हमारे पास एक श्रोता का दिखाई दिया था अभी, लेकिन शायद अभी लाइन पर नहीं है। जी हाँ, तो आप हमें ये बताइए कि किस तरह से आम आदमी के जीवन को, खासकर महिलाओं और छोटे दुकानदारों को, इन योजनाओं ने प्रभावित किया है?
1: जैसा कि अभी

0: टचर जी ने बोला है, वित्तीय समावेशन का केवल ये नहीं है कि हम एक बैंक में खाता खोलें। वित्तीय समावेशन का मतलब है कि बैंक में अकाउंट हो, उसे हम क्रेडिट सुविधा दें, छोटे जो हमारे लोग हैं या जो भी बैंक में आ रहा है उसको इंश्योरेंस की सुविधा दें, पेंशन की सुविधा दें और डिजिटल पेमेंट कराएं, तो तब हम ये मानेंगे कि हमारा वित्तीय समावेशन, केवल बैंक खाता ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ ये सारी फैसिलिटी भी हम दें। जहां तक बात है कि कितना बेनिफिट हुआ है सब लोगों को इससे वित्तीय समावेशन से, तो सबसे बड़ी बात जो है मिडिल मैन का, इनका निवारण हुआ है। जैसे गवर्नमेंट की कोई एलपीजी की है, फर्टिलाइजर है, पेंशन है, स्कॉलरशिप है, ये पैसा जो है डायरेक्ट खाते में जमा हो रहा है, मिडिल मैन इसमें से बिल्कुल हट गया। तो कहने का मतलब सबसे बड़ा एक फायदा ये हुआ है कि जो हमारे गरीब लोग हैं, जो गांव में लोग हैं, जो बीच में, उन्हें मिडिल मैन की जरूरत नहीं है, सीधा पैसा उनके खाते में जा रहा है। दूसरा, जो इनफॉर्मर मनी लैंडर्स हैं उनसे जो 40-50% 60% तक ब्याज पर पैसा उठाते थे, वो जब ये मुद्रा योजना आई, जब ये स्वनिधि योजना आई, इसके थ्रू क्या हुआ कि ये जो हमारे छोटे हैं गांव में किसान हैं, जो रेड़ी पटली वाले हैं, जो सब्जी बेचने वाले हैं, इनको जो है मनी लैंडर के पास ना जाके सीधा बैंकों के साथ जोड़ा गया है वित्तीय समावेशन के थ्रू, तो उनको ये बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। साथ में डिजिटल फाइनेंस का, जैसे अभी बात बताया डिजिटल का, यूपीआई के थ्रू सारी पेमेंट आपका यूपीआई के थ्रू हो रही है, तो कैश का ट्रांजेक्शन जो है कम से कम हो गया। और जो रूरल क्रेडिट एसेस है वो हमारा बढ़ रहा है वित्तीय समावेशन के थ्रू। तो ये सारी चीजें होने के बाद साथ में हमें पेंशन की सुविधा मिल रही है, पेंशन की सुविधा अटल पेंशन योजना जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, और इसी तरह से हमारी इंश्योरेंस की स्कीम है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसके थ्रू पेंशन की सुविधा भी मिल रही है, साथ में इंश्योरेंस की सुविधा मिल रही है, और डिजिटल पेमेंट भी हो रहा है, क्रेडिट की सुविधा हमारी मिल रही है, और साथ में बैंक अकाउंट पीएमजेडीवाई के वो भी खुल रहे हैं।
1: जी, तो आपने इन तमाम सुविधाओं की जानकारी दी हमें, जनधन योजना, मुद्रा लोन और पीएम स्वनिधि के अलावा अटल पेंशन की और जो बीमा की भी जो योजना है उनके विषय में आपने चर्चा की। तो आज हम देखें तो यूपीआई और मोबाइल बैंकिंग की वजह से वित्तीय लेन देन तो काफ़ी आसान हो गया है, लेकिन साथ ही ऑनलाइन फ्रॉड और घोटाले भी काफ़ी बढ़े हैं। तो डिजिटल रूप से सुरक्षित रहने के लिए आप क्या सलाह देंगे हमारे श्रोताओं को, क्योंकि प्रायः ऐसी घटनाएं हम अखबारों में पढ़ते हैं, प्रचार माध्यमों से सुनते हैं कि बहुत सारी धोखाधड़ी की जो घटनाएं हैं वो अप्रिय घटनाएं वो देखने में आती हैं, तो उनसे बचने के लिए क्या आपकी सलाह होगी?
0: ये बिल्कुल सही है कि डिजिटल पेमेंट यूपीआई के थ्रू जो हमारी पेमेंट हुई है इससे हमारा काफ़ी सुविधा हुई है, लेकिन साथ साथ इसके साथ रिस्क भी हुए हैं जिसके लिए हमें सावधानी बरतने की बहुत ज़रूरत है। तो सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है, जैसे मैंने अभी बताया आपको, ओटीपी आप किसी को शेयर ना करें, कोई अनजान कोई लिंक ना खोलें, ये सबसे जरूरी है, तभी आप इनसे बच सकते हैं। तो साथ में फाइनेंशियल लिटरेसी, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी बहुत बड़ा आजकल प्रोग्राम है कि फाइनेंशियल लिटरेट करना बहुत जरूरी है, सभी को बताना पड़ेगा कि हमें जहाँ ये हमें फायदा हो रहा है यूपीआई से, क्योंकि डेली बेसिस पर 60-66 करोड़ का पर डे की जो है ट्रांजेक्शन हो रही है रफली।
1: जी।
0: और आप पर डे 20 ट्रांजेक्शन यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं, और 1 लाख की मॉनिटरी कैप रखी हुई है, और 5 लाख की कैप रखी है अगर आप हॉस्पिटल को या कहीं टैक्स वगैरह के लिए या स्कूल वगैरह पेमेंट करें। तो जब इतना बड़ा लेन देन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो साथ में थोड़ी सावधानी बरतना जरूरी है।
1: बिल्कुल जरूरी है। और हमारे साथ एक श्रोता फिर बिहार सासाराम से जुड़ रहे हैं, अमित उपाध्याय। तो उपाध्याय जी, क्या सवाल है आपका, कहिए।
2: नमस्कार जीतेंगे विशेषज्ञ। सबसे पहले तो बहुत बधाई कि हमारे जनधन खाता जो है खुले हैं 59 करोड़, ये बहुत अच्छा दिलचस्प है। इसमें भी मैं भी कॉरेस्पोंडेंस नहीं चलाता हूँ, बीसी हूँ। और मेरा एक सवाल था सर कि जैसे अभी बजट में हम लोग जैसे कि यूपीआई से जो पेमेंट हम लोग करते हैं अभी, तो यूपीआई से जो बढ़ा हुआ है इसमें कुछ चार्जेस की कुछ बात हो रही थी कि इसमें घट रहा है या बढ़ा है, इस पर थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा प्रकाश डाल देना कि इसमें बढ़ा है या फिर घटा हुआ है। जैसे हम लोग जितना ट्रांजेक्शन करते हैं उस पर, जितना जिसे हम लोग क्यू आर कोड से जो हम लोग

0: करते हैं इसका, इसमें हम लोग जो महीना मंथली बेसिस पे इसको हम लोग गणना करते हैं तो उसके हिसाब से इसको कुछ चार्ज करते हैं या टैक्स वगैरह इसको थोड़ा सा?
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपका प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट है और हमारे विशेषज्ञ आपकी इस जिज्ञासा का समाधान बिल्कुल करेंगे जी।
2: हाँ, ये जो चल रहा है अब, ये न्यूज़पेपर में भी आपने पढ़ा होगा, यह बात अमित जी सही बात बोल रहे हैं, लेकिन इसमें कस्टमर को कोई अलग से पेमेंट नहीं लगेगी, कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। ये अगर एमडीआर के जो चार्ज लग रहे हैं वो भी जो बड़ी ट्रांजेक्शन्स के लिए है, वो जो जो जैसे दुकानदार वगैरह हैं उनके ऊपर चार्जेस लगने का प्लान है, अभी भी वो हुआ नहीं है फाइनल, इस पर डिस्कशन चल रहा है। लेकिन ये क्लियर कट हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बोल दिया है कि आपको इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देने पड़ेंगे, यानी कस्टमर को इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपको कोई चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे
1: जी। तो उम्मीद है कि आपकी इस जिज्ञासा का समाधान बिल्कुल हो गया है। और हमारे साथ राजस्थान की राजधानी जयपुर से जुड़ रहे हैं एम आर चौधरी। कहिए चौधरी साहब, क्या है आपका
3: बात?
1: जी जी, कहिए सवाल।
3: ये मैंने फाइनेंस में भी वहां से सेक्रेटरी को चिट लिया, उसका कोई जवाब नहीं है
1: आपका
3: आम पब्लिक के लिए
1: जी। तो लगता है संपर्क कट गया है। और आपसे हम, खैर, एक और हमारा जो एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल जो हम अक्सर प्रायः लोगों से सुनते हैं वो ये है कि ऋण लेने के लिए व्यक्ति कहीं पर जाता है तो अक्सर उसका जो क्रेडिट स्कोर है या सिबिल स्कोर जो है वो बड़ा मायने रखता है, लेकिन बहुत से लोग इस बारे में जानते नहीं हैं कि कैसे एक आम आदमी अपने इस क्रेडिट स्कोर को बेहतर बना सकता है। और ये जो स्कीम्स हैं, खासतौर पर ये जो समावेशन की जो हैं, फिनेंशियल इंक्लूजन की ये जो योजनाएं हैं, क्या इनमें भी ये स्कोर मायने रखता है? जैसे कि हम कोई फर्ज कीजिए कि वाहन लोन लेने के लिए या मकान बनाने के लिए जाते हैं तो वो देखा जाता है, तो इस विषय में क्या व्यवस्था है?
2: जैसे प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि स्कीम है जो कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना है, इसमें कोई भी सिबिल वगैरह की जरूरत नहीं है, कोई बैंक आपसे सिबिल नहीं मांगेगा। इसमें जैसे फर्स्ट ट्रांच में 15,000 रुपये लोन मिलता है, सेकंड जो है 25,000 है, थर्ड ट्रांच में 50,000 है, तो इसमें कोई भी आपको जो है सिबिल वगैरह की बैंक नहीं मांगेगा, ना ही सिबिल की जरूरत पड़ती। हाँ, मुद्रा योजना में जरूर है कि उसको कोई डिफाल्टर नहीं होना चाहिए, अगर कोई डिफाल्टर है तो उसे मुद्रा योजना में अधिकतर हमारा
1: जी बिल्कुल आपने ये स्पष्ट कर दिया है कि सिबिल स्कोर की कहाँ ज़रूरत है और कहाँ नहीं। एक सवाल हम ले रहे हैं, हमसे जुड़ रहे हैं श्रोता शिमला से, और राकेश जी कहिए आपका क्या प्रश्न है?
4: जी नमस्कार, मैं राकेश बात कर रहा हूँ, कोटखाई शिमला हिमाचल प्रदेश। सर मेरा एक प्रश्न ये है कि जैसे कि हम दृष्टिहीन लोग हैं, हम बैंक नहीं जा सकते, हम अपना जो है बैंक बैलेंस कैसे चेक कर सकते हैं, कृपया करके आप बताइएगा।
1: हम अपना बैंक बैलेंस कैसे चेक कर सकते हैं? तो इस विषय में तो जाहिर है चूंकि बैंकिंग से सीधे तौर पर हमारे विशेषज्ञ जुड़े रहे तो वो आपकी जिज्ञासा का समाधान बिल्कुल करेंगे जी।
2: ऐसा है कि बैंक में जो भी आपके साथ दूसरा अकाउंट अगर होल्डर साथ में आपने रखा हुआ है, क्योंकि ट्रांजैक्शन होती है तो कभी दूसरा साथ में होगा, तो उसके थ्रू आप पता कर सकते हैं। और या आप अपना जो बैंक में जाके जो वहाँ का स्टाफ है उससे भी बैलेंस पता कर सकते हैं, तो यही एक तरीका है जिससे कि आप अपना बैलेंस पता कर सकते हैं।
1: शुभमोय सर, आपसे हमारी जो जिज्ञासा है वो ये है कि AI की क्या भूमिका है इस वित्तीय समावेशन को संभव बनाने में, इसे एक विस्तार देने में, क्योंकि हमने अखबारों में पढ़ा था कि भारतीय जो रिजर्व बैंक है वो काफी इस विषय में सक्रिय रहा, तो इस पर कुछ हो सके तो प्रकाश डालिए।
5: बिल्कुल, और सबसे पहले मैं कहूंगा कि AI, आप अभी सवाल का डिस्कशन कर रहे थे किस हमारे प्रश्नकर्ता से कि सिबिल स्कोर जिसके पास नहीं है उनको कैसे लोन मिल सकता है। तो AI, भारत सरकार ने एक नया आयाम शुरू किया है, वो है यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस
1: जी।
5: ये AI के मॉडल है, डिजिटल फुटप्रिंट, जिससे आम जनता जिनके पास सिबिल स्कोर नहीं है या सिबिल के किसी वजह से वो आए नहीं है,
0: तो उन

0: उनका जो पेमेंट जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो क्यूआर कोड से यूपीआई से वो पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट मिल रहा है उनको, वो सिर्फ वो देखकर ही एआई एक यूनिफाइड लेंडिंग का सिस्टम समावेशन शुरू किया है। ये बहुत बड़ा आयाम है जिससे हम कह सकते हैं फ्रिक्शनलेस क्रेडिट अवेलेबल होगा भारत के हर नागरिक को, यानी कि एक वित्तीय समावेशन का ये एक इतना बड़ा चीज है जिसको हम कह सकते हैं कि क्रेडिट लेंडिंग के मामले में ये एक नया डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, और ये इतना बड़ा इसका प्रारूप तैयार हुआ है कि जिससे एपीआई बेस्ड फ्रेमवर्क से सबको सारे द लास्ट माइल जिसे हम कहते हैं जो भारतीय है उनको भी क्रेडिट मिलेगा सिबिल के ऊपर या क्रेडिट स्कोर के ऊपर, उनको निर्भरशील नहीं रहना पड़ेगा। तो ये आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी एक चीज है जो दुनिया में इसका कोई पैरेलल नहीं है, इस तरह का कोई एडवांसमेंट नहीं हुआ है। और
1: महत्वपूर्ण
0: यूपीआई
1: जानकारी शुभोमय जी, हम आपके पास फिर लौटेंगे, क्योंकि हमारे साथ एक श्रोता दिल्ली से हैं लाइन पर, धर्मवीर जी, कहिए क्या है आपकी जिज्ञासा।
2: मुनीश जी नमस्कार, मैं धर्मवीर गांधी का दिल्ली से बोल रहा हूँ, हमारे एक्सपर्ट को मेरा नमस्कार।
1: जी
2: सर, मैंने
1: नमस्कार।
2: पिछले साल 2025 में 29 सितंबर को एक लगभग लगभग 30 लाख की पेमेंट एक सरकारी बैंक से मैच्योर हो गई थी, तो हमने अदर बैंक में प्राइवेट बैंक में जहाँ थोड़ा सा इंटरेस्ट है इंटरेस्ट रेट ज्यादा था तो हमने वहाँ स्किप कर दिया था। पर वो 29 तारीख की बजाय वो हमारे को पेमेंट हमारी 3 या 4 अक्टूबर को वहाँ शो कर रही, तो ये 5 दिन हम परेशान रहे। ऐसे में हम किससे जानकारी लेते, क्योंकि वो कहते हैं कि पेमेंट तो आपकी यहाँ निकल गई है। फिर किसी ने बताया कि ये बीच में इसका एक नेटवर्क होता है जो चेक चेक करता है कि ये फ्रॉड तो नहीं निकाली गई पेमेंट है। ऐसा भी होता है तो अच्छी बात है, पर हम लोग तो आम आदमी तो नहीं समझ पाता कि ये परेशानी हो गई है, तो टेंशन आम आदमी को ज्यादा बढ़ जाती है। इसके बारे में थोड़ा समझाएं और राय दें, धन्यवाद।
1: जी जरूर जरूर।
3: धर्मवीर जी, ऐसा है कि जो भी अगर आपकी कोई शिकायत है तो आप डायरेक्टली पहले बैंक को लिख सकते हैं, और अगर आपकी वहां से बैंक से शिकायत पूरी नहीं हो पा रही, ठीक नहीं हो पा रही, तो ऑम्बड्समैन होते हैं बैंक में, आप उनको डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर वहां से भी आपको सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिल पाता तो आप आरबीआई के ऑम्बड्समैन को भी अपनी शिकायत भेज सकते हैं और वहां से अपना शिकायत का निराकरण करा सकते हैं।
1: जी, तो उम्मीद है कि धर्मवीर जी आपको आपकी जिज्ञासा का ये समाधान हो गया होगा, और आप इस तरह से संपर्क करेंगे तो आपको अपनी शिकायत के समाधान में सफलता मिलेगी। जो श्रोता हमसे अभी अभी जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक, चर्चा का साप्ताहिक मंच है ये हमारा, और आज हम बात कर रहे हैं बैंकिंग और क्रेडिट तक पहुँच के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने के विषय पर चर्चा। और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शुभमोय भट्टाचार्य जी और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व महाप्रबंधक रमेश कुमार अरोड़ा। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। आप हमारे एक्स हैंडल @AIR News Alerts पर भी टैग Ask AIR के जरिए अपने सवाल हम तक भेज सकते हैं। ये कार्यक्रम दोस्तों हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। शुभमोय जी, आपसे हम बात कर रहे थे कि AI ने जो भूमिका निभाई है इस वित्तीय समावेशन को संभव बनाने में से विस्तार देने में, तो उसमें आपने बताया कि किस तरह से जो लैंडिंग सिस्टम है उसमें किस तरह से AI मददगार हुई है, और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो AI ने संभव कर दिखाई है।
0: अभी जो प्रश्न ले रहे थे धर्मवीर जी से दिल्ली में
1: जी,
0: और जो सवाल कर रहे थे कि उनके अकाउंट में कोई कार्ड छुपी हुआ है या नहीं, कुछ कुछ कुछ इधर उधर हुआ है नहीं, इसको इस संभावना को रोकने के लिए रिजर्व बैंक ने MuleHunter.AI करके एक बहुत पावरफुल टूल निकाला है
1: जी।
0: और उस टूल का मुख्य उद्देश्य यही है कि बैंकों में कोई ऐसे अकाउंट्स जो साइबर क्राइम को प्रोत्साहन देने के लिए, साइबर क्राइम को मदद करने के लिए खुले गए हों, किसी तरीके से वो उनको ब्लॉक करना, और ये AIML पावर टूल ट्रांजैक्शन

0: पैटर्न को, मतलब जो कि उस अकाउंट से जुड़ा हुआ जिस जो भी फंडिंग तो जा रहा है उसको रियल टाइम में निगरानी करते हैं, उसमें उसमें उसके ऊपर अपना रेड फ्लैग इश्यू करते हैं, जो कि साधारण दृष्टि से एक ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं, एक आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है। बैंकर ट्रेंड होते हुए भी उनके लिए इतना इतना डिटेल देखना इम्पॉसिबल रहता है। और इस चीज को कि किसके किसका अकाउंट का पैसा किस वक्त कहां से अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाते वक्त कोई वही म्यूचुअल अकाउंट या दूसरे अकाउंट में पहुंच ना जाए या उसके थ्रू से कुछ ट्रांजैक्शन ना हो, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह, जो एक बहुत बड़ा हथियार साबित हुआ है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के थ्रू से, तो ये दोनों ही लोगों के लिए बहुत बड़ा जिसे कहते हैं आयामी चीज होगा।
1: महत्वपूर्ण ये जानकारी है, बड़ी उपलब्धि है AII के माध्यम से। और हमारे एक और श्रोता सोलापुर महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं हमसे, प्रकाश राउत। कहिए प्रकाश जी, क्या है आपकी जिज्ञासा?
2: मेरा यह प्रश्न है, क्रेडिट कार्ड तो अच्छा है
1: जी,
2: क्रेडिट कार्ड अच्छा वो होता है, पर कोई कारण से वो उसकी जी किस्त बिल होता है जो बाउंस होगा उसके ज्यादा दंड होते है, ज्यादा चार्जेस लगते है, उस पर GST बहुत लगता है, इसके रिजर्व बैंक की क्या पॉलिसी होती है, इसके क्या कारण है?
3: प्रकाश जी, ऐसा है कि क्रेडिट कार्ड में जब भी आपको काफी ग्रेस पीरियड मिलता है तो आपको जो ड्यू डेट है उस तक पूरा पैसा आपको जमा कराना आवश्यक है, अदरवाइज आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी, इंटरेस्ट है जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट होता है। तो आपको बेटर है कि जो भी आप में क्रेडिट कार्ड की जो ड्यू डेट है पेमेंट की, उस डेट तक आप पूरा पैसा जो है बैंक का जमा कीजिए, अदरवाइज आपको पेनल्टी भी देने पड़ सकती है और ब्याज भी आपको देना पड़ेगा
1: जी। एक और सवाल हमारे पास आया हमारे श्रोता मनोज पानसे जी का, और आप पूछ रहे हैं कि बैंकिंग में जो डिजिटाइजेशन आया है और साइबर फ्रॉड जैसी घटनाएं हो रही हैं, उससे उसके लिए क्या प्रयास हो रहे हैं, क्रेडिट पाने के लिए किस प्रकार के उपाय और प्रयास हमें करने होंगे, ये इनका सवाल है।
3: ऐसा है कि जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है, अपने कोई लिंक ना खोलें जो अननोन है या OTP किसी को शेयर ना करें, लेकिन फिर भी अगर फ्रॉड हो गया है तो उसके लिए 1930 एक 1930 साइबर हेल्पलाइन है, आप उस पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। साथ ही अभी रिसेंटली ऐसा भी होने जा रहा है कि आपकी जो पेमेंट है आपको बतानी पड़ेगी कि इमीडिएटली क्रेडिट ना होके जाए, उसमें कुछ टाइम लग के आएगा, तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से काफी कुछ इसमें प्रयास किए जा रहे हैं कि कम से कम जो है लोगों को इस दुर्घटना से बचाया जा सके, फ्रॉड से बचाया जा सके, लेकिन सावधानी आपको खुद को रखनी बहुत जरूरी है
1: जी। देखिए, अब एक और सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं इस विषय में वो ये है कि जैसे स्टार्टअप कोई अगर युवा करना चाहते हैं शुरू, तो शुभमोय जी आपसे मैं पूछ रहा हूं, तो वो किन दस्तावेजों के साथ तैयार रहें और बैंक से लोन लेने के लिए जब वो जाते हैं इस तरह के किसी उपक्रम के लिए, तो क्या चीजें जिनका उन्हें ख्याल रखना चाहिए?
0: ये बहुत अच्छा सवाल है, और सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि नए उद्यम लेकर जब हमारे युवा पीढ़ी जब जाते हैं प्रोग्राम अपने अपने अपने स्कीम को साकार करने के लिए, सबसे पहले हालांकि बैंक और में सब ने कहा था कि बहुत सारे जैसे मुद्रा स्कीम्स हैं, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि उससे भी पहले अपना जो QR कोड है उसके जरिए उनका जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसका रिकॉर्ड लेकर, अगर वो स्टार्टअप इंडिया की जो पॉसिबिलिटीज हो उसके तरफ अगर ध्यान दे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक सशक्त माध्यम आ गया है जो है UPI। दूसरा, इसी साल RBI और नीति आयोग दोनों ही एक बहुत बड़ा आयाम शुरू किए हैं, वो ये है कि मिशन डिजिटल श्रम सेतु
1: जी,
0: जो
1: जी।
0: अक्टूबर 2025 से शुरू हुआ है,
1: महत्वपूर्ण है जानकारी। और शुभमोय जी, दरअसल समय की है थोड़ी सी सीमा, बहुत सुंदर आपने जानकारी

0: जानकारी दी हमारे श्रोताओं को, और हम अपने उन तमाम श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने फोन लाइन और डिजिटल माध्यम से कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आर्थिक विश्लेषक शुभमोय भट्टाचार्य जी और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व महाप्रबंधक रमेश कुमार अरोड़ा ने हमारे साथ इस कार्यक्रम में शिरकत की। आप दोनों विशेषज्ञों का भी धन्यवाद।
1: धन्यवाद
0: दोस्तों। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आपकी ये जो प्रतिक्रियाएं हैं वो हम हमेशा उनका इंतज़ार करते हैं, और आप हमें ज़रूर लिखिए AIRNSDtalks@gmail.com पर। और इसके साथ ही दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
2: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश। समय है फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम आपकी फरमाइश का। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं कुमार सानू अनुराधा पौडवाल की आवाज में, फिल्म सूर्यवंशम से। गीत को लिखा है समीर ने, संगीत है अनु मलिक का। सुनना चाहा है आप सभी ने। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से इस गीत को सुनना चाहते हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप। इसी गीत की फरमाइश कालका से करते हैं शुभचंद्र बजाज, साहिल बिट्टा बजाज। इसी गीत की फरमाइश रामनगर रोड शांतिनगर इंदौर से सुनना चाहते हैं खुशी खर्चे, ब्रोनो खर्चे, गणेश, कार्तिक खर्चे, संजना, परी, ललिता नारायण, स्वाति, प्रयाग चौधरी और मालती चौधरी। तो आइए आप सभी की फरमाइश पर सुनवा रहे हैं आपको फिल्म सूर्यवंशम का ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं कविता कृष्णमूर्ति और सोनू निगम की आवाज में। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने, संगीत है नदीम श्रवण का। फिल्म का नाम है दिल है तुम्हारा। सुनना चाहा है आप सभी ने। सरला स्टेट अवधपुरी भोपाल से इस गीत को सुनना चाहते हैं सारांश धाम ने, समीक्षा धाम ने, किरण धाम ने। गौरीनगर इंदौर से इसी गीत की फरमाइश करते हैं आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस, तपस्या और करिश्मा कामले। इसी गीत को सुनना चाहते हैं शाहू नगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल मनवर, चेतन, रोशनी, स्वीट बेबी, प्रियांशी। तो आइए आप सभी को सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये खूबसूरत नगमा।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश और आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म वीर जारा से, उदित नारायण की आवाज में। गीत के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने, संगीत है मदन मोहन का। सुनना चाहा है आप सभी ने। छबड़ा राजस्थान से इस गीत को सुनना चाहते हैं आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो। इसी गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है एरोड्रम थाना लक्ष्मीबाई अनाज मंडी रोड वंदना नगर इंदौर से राम लक्ष्मण, भरत, ललिता नाखर्चे, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे, मालती स्वाति, प्रयाग चौधरी और कुमारी देविका चौधरी ने। तो आइए हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये खूबसूरत नगमा।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म टशन से, उदित नारायण और महालक्ष्मी अय्यर की आवाज में। गीत को लिखा है कौसर मुनीर ने, संगीत है विशाल शेखर का। सुनना चाहा है आप सभी ने। रिंगनी छत्तीसगढ़ से इस गीत की फरमाइश करते हैं दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। घंटाघर चौक खंडवा से इसी गीत को सुनना चाहते हैं संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। बेरड़ी से इस गीत की फरमाइश भेजी है हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक करमरकर, प्राची करमरकर और तनु करमरकर ने। तो आइए आप सभी की फरमाइश पे आपको सुनवा रहे हैं फिल्म टशन का ये गीत।

फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म विरासत से, कुमार सानू और चित्रा की आवाज में। गीत के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने, संगीत है अनु मलिक का। सुनना चाहा है आप सभी ने। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभय नंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज प्रमोद, रोहित व मोहित ने। इसी गीत की फरमाइश करते हैं आशा रेडियो श्रोता संघ मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवहानकर राही, श्रीमती सरिता गवहानकर, एकांश गवहानकर। बदलापुर मुंबई से इसी गीत को सुनना चाहते हैं सिद्धांत, प्रणीता और अर्जुन गवहानकर। आकारा हाइट्स बहादुरा नागपुर से इस गीत की फरमाइश लिख भेजी है वैशाली शैलेश गवहानकर, सुमित कुमारी ध्वनि गवहानकर ने। छत्तीसगढ़ से इस गीत को सुनना चाहते हैं भागवत वर्मा, गुलाबदास मानुकरी, विश्वनाथ साहू और दुर्गाराम साहू। तो आइए, आप सभी की फरमाइश पर आपको सुनवा रहे हैं फिल्म विरासत का ये खूबसूरत नगमा।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत संपन्न होता है। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में आज हम आपको सुनवा रहे हैं।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सुमति मुटाटकर का ध्रुपद धमार गायन राग खमाज में। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश। कुछ ही समय में आप दिल्ली से समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में 26वें वार्षिक शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों व्यापार और निवेश, ऊर्जा और रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और रूस के बीच सहयोग का नई ऊंचाइयों तक पहुंचना बहुत संतोष का विषय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यह दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
1: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा।
1: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देता है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कुछ ही दिनों में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
1: कुछ दिनों बाद भारत ब्रिक्स समिट का आयोजन कर रहा है। सभी भारतवासी भारत में आपका स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। आपकी यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को भी बल मिलेगा और ब्रिक्स के अंतर्गत संवाद और सहयोग भी सशक्त होगा।
0: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिजिश्कियन के साथ भी बिश्केक में द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री ने बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग हुई बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने भारत के रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। बाद में प्रधानमंत्री ने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जाफरोव से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। ये समझौता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद बचाव अभियान में लगे सुरक्षा कर्मियों को आधुनिक उपकरणों और हेलीकॉप्टरों की कमी के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के ढहने और हिमस्खलन के कारण आई इस बाढ़ ने भोटेकोशी नदी के किनारे के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घर, सड़कें और पुल नष्ट हो गए और पनबिजली परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गईं। AFC अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप 2027 के क्वालिफायर में भारत ने आज सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। ताशकंद के दस्तलिक स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सिंगामियुम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने आज अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। मेसी ने अर्जेंटीना के लिए रिकॉर्ड 207 मैच खेले। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।